रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज में आपका स्वागत है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ भक्ति में दिव्य दर्शन में। ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सुनते रहें रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम।

परम विरक्त संत राम सुखदास जी कहा करते थे कि जो व्यक्ति मान अपमान की भावना को छोड़कर भगवान की शरण में चला जाता है उसे कोई अभाव हो ही नहीं सकता। एक साधक ने स्वामी जी से प्रश्न कर लिया, मैं रोजी रोटी जुटाने के लिए इतना व्यस्त रहता हूं कि भक्ति उपासना कर ही नहीं पाता, मेरा कल्याण कैसे होगा? स्वामी जी ने कहा, आप चार संकल्प ले लीजिए। पहला, किसी का जीना दुखाइए। दूसरा, यथासंभव असहाय और रोगियों की सेवा कर दीजिए। तीसरा, सत्य बोलिए। और चौथा, सवेरे शैया त्यागने से पहले और रात में सोने के समय भगवान को याद कर लीजिए। कपट चालाक और छल से दूर रहिए। कपट चालाकी और छल से दूर रहिए, भगवान खुद ही मिल जाएंगे। कुछ देर रुककर उन्होंने कहा, वास्तव में भगवान ने सबको अपना मान रखा है, लेकिन हम अपनी असीमित इच्छाओं के लालच में चलकर झूठ कपट वगैरह की शरण लेते हैं और ये कहने लगते हैं कि बिना झूठ कपट के सफलता ही नहीं मिलेगी। अब ये भ्रम ही हमारा पतन का कारण है। छल कपटी और दुराचारी को भगवान कदापि सहन नहीं करते, जबकि निर्मल हृदय वाले सदाचारी भक्त भगवान की कृपा के लिए हमेशा ही प्रस्तुत रहते हैं।

सब का मालिक वो एक कुल परमात्मा है। उसका अपना कोई निजी नाम नहीं है, पर सारे नाम उसी के हैं। उसे किसी भी नाम से पुकारो, वो जरूर जवाब देता है।

अजमेर में स्वामी दयानंद जी का निर्वाण अर्ध शताब्दी समारोह चल रहा था। देश भर के आर्य सन्यासी और विद्वान समारोह में थे। महान शिक्षा सेवी महात्मा हंसराज जी भी लाहौर से समारोह में भाग लेने के लिए आए थे। स्वामी सर्वदानंद जी ने कुटिया में कुछ आर्य समाजी संतों को बुलाया और उनसे कहा, स्वामी जी, हम सभी की इच्छा है कि महात्मा हंसराज जी जैसी दिव्य विभूति से संन्यास ग्रहण करने की प्रार्थना की जाए। इससे आर्य समाज को बहुत बल मिलेगा। स्वामी सर्वदानंद जी ने उनसे कहा, जिन महात्मा हंसराज जी ने अपना पूरा जीवन आर्य समाज के प्रचार और जगह जगह विद्यालयों की स्थापना करने के लिए समर्पित कर दिया है, क्या उन्हें आप गेरुआ वस्त्र न पहनने के कारण सन्यासी नहीं मानते? कुछ देर रुककर स्वामी जी ने कहा, केवल कपड़े रंग लेने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। जिसका मन परोपकार और सेवा के कार्यों में लगा हो, वो तो खुद ही सन्यासी हो जाता है। कपड़े रंगने के बाद भी अपना जीवन सेवा और धर्म प्रचार में नहीं लगाता, उसे साधु कैसे कहा जा सकता है? सन्यासी की वास्तविक व्याख्या सुनकर सभी गदगद हो गए।

राजा बालिक ने किसी बात पर नाराज होकर अपने प्रधानमंत्री भद्रजित को पद से हटा दिया। उन्होंने क्रोध में कहा, अब तुम्हें अपनी औकात का पता चल जाएगा। भद्रजित शांति और शालीनता के साथ राजा का अभिवादन करके राज दरबार से चले गए। वो ईश्वर भक्त और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। अपने नगर लौटकर वो अपना समय भगवान की आराधना, शास्त्राध्ययन और जनसेवा में लगाने लगे। कुछ ही समय में वो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गए। एक दिन राजा बालिक की इच्छा हुई कि प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद भद्रजीत की कैसी दयनीय हालत है, इसे चलकर देख लें। वो वेश बदलकर नगर में पहुंचे। उन्होंने देखा कि भद्रजीत अनेक लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। कुछ ही समय में राजा को भद्रजीत की लोकप्रियता का पता चल गया। तभी अचानक भद्रजीत ने राजा को पहचान लिया और खड़े होकर उनसे कहा, राजन, यदि आप मुझे पद से नहीं हटाते तो मुझे लोगों की सेवा का और भगवान की भक्ति का मौका ही नहीं मिलता। ये सब तो आपकी ही कृपा का प्रताप है। मैं आजन्म आपका आभारी रहूंगा। भद्रजीत की विनम्रता और धैर्य देखकर राजा हतप्रभ रह गए।

90.8 FM रेडियो टेंटिया भील पर आप हैं आरजे समीर के साथ भक्ति में दिव्य दर्शन प्रोग्राम में।

सुगंधपुर के राजा बज्रबाहु हर क्षण प्रजा की सुविधा और सेवा के लिए तत्पर रहते थे। एक बार कोई महान संत उनके राज्य में आए। वो जंगल में एक वृक्ष के नीचे ठहरे। राजा को पता चला तो उन्होंने अपने मंत्री और पुत्रों को उनके पास भेजा। राजकुमार ने प्रार्थना की, महात्मन, महाराज ने आपको सादर राजमहल में आमंत्रित किया है। संत ने उत्तर दिया, राजकुमार, संतों को एकांत में ही रहकर साधना करनी चाहिए। आप वापस लौट जाइए, राजा को हमारा आशीर्वाद पहुंचा दीजिए। राजा वज्रबाहु संत के विरक्त स्वभाव से प्रभावित हुए और सुबह स्वयं ही रथ में सवार होकर जंगल आ गए। उन्होंने संत को प्रणाम करके कहा, महात्मा, मैंने यथासंभव प्रजा की सेवा की है, फिर भी मेरा मन अशांत क्यों रहता है? संत ने समझाया, राजन, आपने तालाब मंदिर बनवाए हैं, लेकिन आपके अनुचरों ने उन पर आपका नाम पट्ट लगाकर आपके पुण्य को हल्का कर दिया है। सेवा कार्यों में अहंकार की प्रदर्शन हो तो मन की अशांति भला कहां से आएगी? अहम और शांति दोनों एक साथ रहते ही नहीं। उसी शाम राजा बज्रबाहु ने सभी नामपट्ट उखड़वाने के आदेश दे दिए। उनका हृदय अहंकार से मुक्त हो चुका था।

भक्ति में दिव्य दर्शन में आज इतना ही। कल हम फिर नए भजनों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM।

दमादम मस्त कलंदर, एक गीत जो सिर्फ सुना नहीं बल्कि महसूस किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपके तरानों की हमसफर RJ तनुषा। आज की बातें इधर की उधर की में हम बात करेंगे एक ऐसे गीत की जिसे शायद आपने कम से कम 1000 बार सुना होगा। कभी कवाली में, कभी दरगाह पर, कभी किसी शादी में, कभी किसी महफिल में, और कभी बस यूं ही रेडियो या फोन पर। और जैसे ही आवाज आती है ना, दमादम मस्त कलंदर, बस फिर पैर अपने आप हिलने लगते हैं, थिरकने लगते हैं। लेकिन कभी सोचा है आपने इस मस्त का मतलब क्या है और ये कलंदर कौन है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक स्पिरिचुअल सूफी कलाम का ऐसा क्या जादू है कि उसकी धुन पर लोग सिर्फ सुनते नहीं झूमते हैं। जी हाँ, झूमते हैं। तो आज जरा गाने के पीछे की छुपी हुई कहानी को सुनते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, शायद इसी आंसर का इंतजार था आपको इस गाने के पीछे का। मस्त का मतलब सिर्फ मजाक नहीं है। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल है कि अगर मैं आपसे कहूं यार आज तो मैं बहुत मस्त हूं, तो आप क्या समझेंगे? मूड अच्छा है, टेंशन नहीं है, चिल कर रहा हूं, यही ना? लेकिन सूफी परंपरा में मस्त का अर्थ सिर्फ हैप्पी या केयरफ्री होना नहीं होता। यहाँ मस्त एक ऐसी हालत की तरफ इशारा करता है जहां इंसान दुनिया के शोर से बहुत दूर, बहुत परे हो जाता है और इश्क के हकीकी यानी डिवाइन लव में डूब जाता है। मतलब दुनिया के हिसाब से शायद आदमी होश में हो लेकिन अंदर से इश्क में बेहोश है। क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ना? हम लोग तो नॉर्मली किसी के प्यार में पड़ते हैं तो बस फोन ही चेक करते रहते हैं, ऑनलाइन है, यासीन क्या है, मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया अभी तक। बट सूफी कहते हैं जिस इश्क में खुद को ही भूल जाओ वही असली मस्त है। अब आते हैं दूसरे एक और इंटरेस्टिंग शब्द पर, कलंदर। जी हाँ, कलंदर एक ऐसे फकीर या दरवेश के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो दुनियावी बंधनों से परे है और स्पिरिचुअल राह पर जीने वाला है। और इस कलाम में जिस कलंदर का नाम बार बार आता है वो है लाल शाहबाज कलंदर। उनका संबंध सिंध के सहवान शरीफ से है और उनकी दरगाह आज भी बड़े ही स्पिरिचुअल सेंटर के रूप में जानी जाती है। उनका नाम आते ही एक तस्वीर दिमाग में आ जाती है, एक फकीर, एक दरवेश, एक ऐसा इंसान जिसके लिए इंसानियत सबसे बड़ी पहचान है। और शायद इसीलिए उनके नाम से जुड़ा ये कलाम इतनी दूर तक पहुंच गया। दमादम क्यों? अब एक और सवाल, दमादम का मतलब, इसमें दम को सांस या ब्रेथ के अर्थ में समझा जाता है। तो जब बार बार कहा जाता है दमादम मस्त कलंदर तो भावना कुछ ऐसी बनती है, हर सांस में उस मस्त फकीर का जिक्र है। सोचिए हम दिन भर कितनी सांसें लेते हैं और हर सांस के साथ अगर किसी के दिल में ग्रैटिट्यूड, फेथ और इश्क हो तो फिर स्पिरिचुअलिटी के लिए अलग से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत है क्या? सुबह 5 बजे मेडिटेशन, 7 बजे प्रेयर्स, 8 बजे स्पिरिचुअलिटी खत्म। नहीं जी, सूफी सोच कहती है सांस चल रही है तो याद चल रही है। और यहां कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। दमादम मस्त कलंदर की रचना को लेकर एक ही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कहानी नहीं मिलती। लोक रिवायतों में इस कलाम को अलग अलग सूफी पोएट्स और परंपराओं से जोड़ा गया है। कुछ रिवायतें इसे अमीर खुसरो से जोड़ती हैं और बाद में बुल्ले शाह के योगदान की बात करती हैं।
लेकिन इसके लिखित प्रमाण और एग्जैक्ट ओरिजिन्स को लेकर स्कॉलर्स में अनसर्टेनिटी है। मुझे लगता है शायद इसी में इस कलाम की सबसे खूबसूरत बात छुपी है। कुछ गीत किसी एक इंसान के नहीं रह जाते, वो लोगों के हो जाते हैं, उनके बन जाते हैं। एक ने लिखा, दूसरे ने बदला, तीसरे ने गाया, चौथे ने उसमें अपना दर्द डाल दिया और पांचवी पीढ़ी ने उसे अपनी दुआ बना लिया। क्या कला का इससे खूबसूरत सफर हो सकता है? सोच के देखिए। लाल मेरी पथ रखियो, अब आती है वो लाइन जो बहुत लोगों ने सुनी है। लाल मेरी पथ रखियो, यहाँ एक भावना है, मेरी लाज रखना, मेरी रक्षा करना। एक भक्त अपने पीर, अपने स्पिरिचुअल गाइड के सामने खड़ा है। उसके पास शायद ना कोई बड़ी फिलॉसफी है, ना कोई कॉम्प्लिकेटेड मंत्र है, ना कोई लंबी स्पीच है, बस एक सिंपल सी बात है, दिल से निकली हुई बात, मेरी लाज रख लेना। और सच बताइए, इंसान की सबसे बड़ी दुआ अक्सर होती भी तो यही है। भगवान से हम क्या मांगते हैं? थोड़ा सुकून, थोड़ी रक्षा, अपनों की खुशी और मुश्किल वक्त में बस इतना सहारा कि मैं अकेला नहीं हूँ। इस कलाम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सिर्फ एक जगह का गीत बनकर नहीं रहा। सिंध से निकली स्पिरिचुअल परंपरा ने पंजाब, इंडिया और पाकिस्तान के कई सूफी और लोकगीत परंपराओं में अपनी जगह बनाई है। नुसरत फतेह अली खान से लेकर अबिदा परमीन, सबरी ब्रदर्स, वडाली ब्रदर्स और कई अन्य कलाकारों ने इसे अपने अपने ही अंदाजों में गाया है। और देखिए कमाल, आवाज अलग, सुर का अंदाज अलग, जमाना अलग, लेकिन जज्बा, जज्बा वही। इसीलिए जब कव्वाल गाता है दमादम मस्त कलंदर, तो सामने बैठा आदमी ये नहीं सोचता कि ये किस लैंग्वेज का गाना है, वो बस महसूस करता है और शायद असली म्यूजिक वही होता है दोस्तों, जिसे समझने के लिए कोई डिक्शनरी नहीं, सिर्फ आपका दिल चाहिए। वैसे एक कन्फेशन करूं, मस्त शब्द का सफर भी कमाल है।

अच्छे कंट्रोल में फोन की बैटरी भी 100% चाहिए हर समय। लेकिन जिंदगी किसी के कंट्रोल में नहीं होती। कभी ट्रेन लेट होती है, कभी फ्लाइट लेट होती है, कभी प्रमोशन लेट होता है, कभी शादी लेट होती है, कभी रिप्लाई भी लेट होते हैं, और कभी तो समझ ही नहीं आता कि लाइफ का डेस्टिनेशन कहाँ है। शायद सूफी सोच वहीं पर एक अलग रास्ता दिखाती है। हर चीज को पकड़ कर रखना जरूरी नहीं, कभी कभी थोड़ा छोड़ देना जरूरी है। थोड़ा भरोसा, थोड़ा इश्क, थोड़ा समर्पण, और थोड़ा जो होगा देखा जाएगा। तो आज जब आप दोबारा दमादम मस्त कलंदर सुने, सिर्फ बीट मत सुनिएगा, एक बार उसके शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। दमादम मतलब हर सांस, और मस्त मतलब इश्क में डूबना। कलंदर एक ऐसा फकीर जो दुनियावी बंधनों से बहुत परे है, और फिर खुद से एक सवाल पूछना, हम अपनी जिंदगी में किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? और अगर एक दिन के लिए सब कुछ साइड में रख दिया जाए, तो क्या हम अपनी सांसें, अपनी सांसों की आवाज सुन पाएंगे? शायद, शायद इसी को कहते हैं मस्त होना। दोस्तों, आज की बातें इधर की उधर की में बस इतनी सी बात। कुछ गीत गानों तक पहुंचते हैं, कुछ दिल तक पहुंचते हैं, और कुछ सीधे रूह में उतर जाते हैं। दमादम मस्त कलंदर शायद उन्हीं में से एक गीत है। आप सुन रहे हैं SN रेडियो, और मैं हूं आपके तरानों की हमसफर, आपकी आरजे तनुषा।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और मैं हूं आपकी आरजे दोस्त, आपकी होस्ट, आपके तरानों की हमसफर, आपकी आरजे तनुषा। आज की बातें इधर की उधर की शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर से एक सवाल पूछना चाहती हूं। अगर किसी स्टूडेंट ने एग्जाम में कुछ नहीं लिखा हो, एकदम ब्लैंक पेपर छोड़ा हो, तो आप उसे कितने मार्क्स देंगे? जीरो, ऑब्वियसली, क्योंकि भाई पेपर ब्लैंक है तो मार्क्स ब्लैंक ही होने चाहिए। लेकिन जरा एक बार सोचिए, अगर मैं कहूं कि एक जगह ऐसे ब्लैंक पेपर

पेपर को भी 2 मार्क्स मिलते हैं तो आप क्या कहेंगे? मैडम, ये कौन सा बोर्ड है? ये कौन सी मैथमेटिक्स है? ये कैसा एग्जामिनर है? और शायद हमारे स्कूल में ऐसा होता तो हम भी टॉपर होते। लेकिन आज की कहानी का असली सवाल मार्क्स का नहीं है, असली सवाल है क्या किसी इंसान को 0 कहा जा सकता है। कहानी है एक इंडियन प्रोफेसर की जो रशिया की एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए वहां गए थे। वहां उन्होंने एक अजीब सी बात देखी। एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर था 5। ये तो समझ में आता है, लेकिन उन्होंने जब देखा कि अगर स्टूडेंट ने आंसर शीट पे कुछ भी नहीं लिखा, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा, तब भी उसे मिलते थे 2 मार्क्स, प्रोफेसर को तो यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, 1 मिनट, ब्लैंक पेपर को भी मार्क्स दिए जा रहे हैं? ये तो हमारे यहाँ टीचर्स को बता दिया जाए तो बच्चों की लॉटरी लग जाएगी। उन्होंने वहां एक सीनियर एजुकेशन से बात की। सर, जो स्टूडेंट कुछ लिखता ही नहीं, उसको मार्क्स क्यों दे रहे हैं? और उस एजुकेशन का जवाब सच में सोच बदलने वाला था। एजुकेटर ने कहा, 0 का मतलब होता है नॉन एग्जिस्टेंस, यानी कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने पूछा, जब एक स्टूडेंट मेरे सामने खड़ा है तो मैं उसे 0 कैसे कह सकता हूं? बस एक लाइन, लेकिन कितनी गहरी बात है इस एक लाइन में। हम अक्सर मार्क्स देखकर इंसान की वैल्यू डिसाइड कर देते हैं। विद इन सेकेंड्स 90 आए, वाह, 75 आए, अच्छा है लेकिन मेहनत करो। 50 आए, तुमसे नहीं होगा। 30 आए, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और 0 वाले को, बस तुम तो जैसे हो ही नहीं। लेकिन क्या रिपोर्ट कार्ड पर लिखा हुआ नंबर इंसान की पूरी कहानी होता है? उस रशियन एजुकेटर ने कहा, हो सकता है वो बच्चा सुबह बहुत जल्दी उठा हो सकता है वो बहुत दूर से आया हो सकता है उसने बर्फ और ठंड में सफर किया हो सकता है उसने पढ़ाई की हो लेकिन एग्जाम हॉल में जाकर नर्वस हो गया, हो सकता है उसने कोशिश भी की हो लेकिन फेल हो गया। क्या उस एक दिन की हार उसकी पूरी मेहनत मिटा देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी हम किसी इंसान का सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, उसकी जर्नी नहीं देखते। हम देखते हैं कितने मार्क्स आए, लेकिन ये नहीं पूछते तुमने कितनी कोशिश की थी। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में एक बहुत अजीब आदत है, हम मार्कशीट को सिर्फ एग्जाम का रिजल्ट नहीं समझते, हम उसे बच्चे का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना देते हैं। अच्छे मार्क्स, बच्चा इंटेलिजेंट है। कम मार्क्स, इसका दिमाग कमजोर है। एग्जाम में फेल, लाइफ में क्या ही करेगा। और कंपैरिजन तो हमारा नेशनल हॉबी है। शर्मा जी का बेटा देखा, वर्मा जी की बेटी तो 95 लाई है, तुम्हारे कितने आए? और बच्चा सोच रहा होता है, मम्मी मेरे मार्क्स पूछ रही हो या मेरी औकात। एक बच्चा दूसरे बच्चे से कम मार्क्स ला सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदगी में कम है। उस एजुकेटर ने एक और बहुत ही खूबसूरत बात कही, टीचर का काम ये नहीं है कि बच्चे को ये यकीन दिला दे कि वो कुछ नहीं है। टीचर का काम इनफैक्ट ये है कि उसे ये यकीन दिलाना है कि तुम दोबारा खड़े हो सकते हो। क्या बात है, ये सिर्फ टीचर पर लागू नहीं होता, पेरेंट्स पर भी, फ्रेंड्स पर भी, बॉसेस पर भी, और हम सब पर। कभी कभी किसी इंसान को लेक्चर नहीं चाहिए होता, उसे सिर्फ एक इंसान चाहिए होता है जो कहे, ठीक है गिर गए, अब बताओ दोबारा कब ट्राई करना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपको याद है, कभी आप किसी एक एग्जाम में फेल हुए, किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए, किसी कंपटीशन में हार गए, किसी जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं हुए, किसी रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक हुआ,
या कोई ऐसा काम था जिसमें आपको लगा मुझसे तो नहीं होगा। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए, क्या वो मोमेंट आज भी आपकी पूरी जिंदगी है? नहीं ना, आप आगे बढ़े, उससे बहुत आगे बढ़े और जीवन में बहुत कुछ अचीव करा। वो बस एक चैप्टर था, आपकी कहानी वहां खत्म नहीं हुई थी। तो दोस्तों, लाइफ भी ना थोड़ी अजीब राइटर है, कभी हीरो को बिना रीजन के गिरा देती है, कभी विलेन को अननेसेसरीली इम्पोर्टेंस दे देती है, कभी एक चैप्टर इतना बोरिंग होता है कि लगता है बस भाई बुक बंद, लेकिन फिर अगला पेज खुलता है और कहानी ही बदल जाती है। इसलिए एक एग्जाम तुम्हारी इंटेलिजेंस डिसाइड नहीं करता, एक रिजेक्शन तुम्हारी कैपेबिलिटी डिसाइड नहीं कर सकता, एक मिस्टेक तुम्हारा कैरेक्टर डिसाइड नहीं कर सकता, एक फेलियर तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, और सबसे इंपॉर्टेंट, आज की सिचुएशन तुम्हारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं हो सकती। दुनिया में बहुत लोग टैलेंटेड हैं, लेकिन हर टैलेंटेड इंसान सक्सेसफुल नहीं होता, और हर सक्सेसफुल इंसान हर बार सक्सेसफुल नहीं रहता। डिफरेंस कई बार सिर्फ इतना सा होता है, किसी ने उनसे कहा चलो एक बार और ट्राई करते हैं। सोचिए, अगर किसी बच्चे को हर बार कहा जाए तुमसे नहीं होगा, तो धीरे धीरे वो बच्चा खुद ही मान लेगा शायद मुझसे नहीं ही होगा। लेकिन अगर कोई कहे गलती हुई, कोई बात नहीं, समझ नहीं आया फिर समझाएंगे, फेल हो गए फिर से पढ़ेंगे, तो बच्चा सिर्फ सब्जेक्ट नहीं सीखता, वो ये सीखता है कि गिरकर हर समय उठना है, वहीं नहीं रहना। एक कन्फेशन करूं, हम बड़े लोग भी मार्कशीट वाले बच्चों से बहुत अलग नहीं हैं। हमारे बस एग्जाम्स के नाम बदल जाते हैं। उनका एग्जाम होता है मैथ साइंस इंग्लिश, हमारा एग्जाम होता है जॉब इंटरव्यू, ईएमआई, रिलेशनशिप, बिजनेस, बच्चे, फैमिली, और कभी कभी मंडे मॉर्निंग। कभी इंटरव्यू खराब हो गया तो हम सोचते हैं करियर खत्म, एक बिजनेस लॉस हुआ सब खत्म, एक रिलेशनशिप टूट गया अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा। लेकिन जिंदगी का एक बहुत सिंपल रूल है, जब तक सांस है तब तक नेक्स्ट अटेम्प्ट जारी है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम कितने आंसर्स याद रखते हैं, एजुकेशन शायद ये भी है कि हम फेलियर को कैसे देखते हैं, अपनी गलती को कैसे समझते हैं, दूसरे की गलती को कितनी दया से देखते हैं, और किसी गिरते हुए इंसान को धक्का देते हैं या हाथ बढ़ाते हैं। अगली बार जब कोई बच्चा कम मार्क्स लाए तो उसे तुरंत ये मत पूछना शर्मा जी के बेटे के कितने आए, पहले पूछना कि तुम ठीक हो, फिर पूछना कहां दिक्कत हुई, और फिर चलो मिलकर देखते हैं। तो आज की बातें इधर की उधर की एक बात अपने पास रख लीजिए, अगर आपका कोई एग्जाम खराब हुआ है तो आप फेल नहीं हुए, आपको रिजेक्शन मिला है, आपका बिजनेस नहीं चला, आपकी जॉब चली गई, या आपका कोई रिश्ता टूट गया, तो प्लीज खुद को जीरो मत समझिए। आपका रिजल्ट जीरो हो सकता है, आपका स्कोर जीरो हो सकता है, आपका अटेम्प्ट जीरो हो सकता है, लेकिन आप जीरो नहीं हैं, आप अभी भी यही हैं, और जब तक आप यहां हैं कहानी बाकी है। जैसे कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो दोस्तों, अगली बार किसी स्ट्रगलिंग इंसान को देखें तो ये मत पूछिए तुम फेल क्यों हुए, कभी कभी बस इतना पूछ लेना कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं। हर इंसान को हर वक्त सल्यूशन नहीं चाहिए होता, कभी कभी उसे सिर्फ एक मौका चाहिए होता है एक बार फिर से खड़े होने का, एक बार फिर से कोशिश करने का। और शायद ऐसा इंसान जो उसे गिरने के बाद भी जीरो ना कहे। मैं हूं आपकी आरजे दोस्त, आपकी तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे SN रेडियो पर बातें इधर की उधर की।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: मम्मी ने पूछा, बेटा कहाँ गए थे? बेटा बोला, वो मम्मी फिल्म देखने गया था। मम्मी बोली, कौन सी? बेटा बोला, माँ की ममता। मम्मी बोली, अच्छा जा ऊपर नई फिल्म लगी है वो भी देख ले। बेटा बोला, ऊपर कौन सी? मम्मी बोली, बाप का कहर।

90s का वो एक रुपया जिसकी कीमत आज भी हजारों से ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और मैं हूं आपकी आरजे दोस्त, आपकी तनुषा, आपके तरानों की हमसफर। आज की बातें इधर की उधर की में बात ना किसी बड़ी सक्सेस की है, ना किसी करोड़ों की प्रॉपर्टी की, ना किसी एक्सपेंसिव गिफ्ट की। आज की बात है सिर्फ एक रुपये की। हाँ जी, एक रुपया। आज के जमाने में जिसे हम शायद वॉलेट में रखना भी पसंद नहीं करें, लेकिन एक वक्त था जब एक रुपया मिलना मतलब खुशी का एक पूरा पैकेज था। और अगर वो एक रुपया पापा की जेब से नहीं, पापा की हथेली से मिले, तो फिर उसकी कीमत बस कैलकुलेटर से नहीं निकाली जा सकती। आप में से कितने लोगों को याद है कि 90s का या उसके आसपास का वो बचपन? रात को खाना खाने के बाद पापा चारपाई पर लेट गए और फिर आवाज आई, बेटा जरा पैर दबा दे। और बच्चा पहले तो मन में सोचता था यार अभी, लेकिन फिर पैर दबाने लगता था, कभी 10 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी आधा घंटा। और पापा आंखें बंद, चेहरे पर हल्का सा सुकून, और फिर कुछ देर बाद जेब में हाथ जाता था और निकलता था एक चमकता हुआ 1 रुपए का सिक्का, हथेली पर रखते हुए एक छोटी सी मुस्कान, और बच्चे की आंखों में जैसे कोई लॉटरी लग गई हो। अब सोचिए, आज अगर किसी एक बच्चे को 1 रुपया देकर बोले, बेटा जाओ मन करे जो खरीद लो, बच्चा शायद हमें देखेगा, फिर सिक्के को देखेगा और फिर बोलेगा, पापा इससे क्या आएगा? और हम कहेंगे, बेटा हमारे जमाने में तो इससे दुनिया आ जाती थी। और शायद सच में हमारे जमाने में 1 रुपए का मतलब था ऑप्शंस। टॉफी लेनी है? हाँ। इमली? हाँ। बिस्किट? हाँ। संतरे वाली गोली? हाँ। और अगर थोड़ा स्मार्ट बच्चा हुआ तो 1 रुपया खर्च भी नहीं करता था, जेब में रखता था और अगले दिन स्कूल में प्राउडली दिखाता था, देख मेरे पास पैसा है। और उस वक्त बैंक बैलेंस का मतलब था जेब में कितने सिक्के खनक रहे हैं। अब जरा गौर करिए, उस 1 रुपये की कीमत सिर्फ इसीलिए नहीं थी कि उससे टॉफी आ जाती थी, उसकी असली कीमत थी पापा का प्यार। वो 1 रुपया एक छोटा सा इनाम था, एक बच्चे को ये बताने का तरीका कि तुमने मेरा ख्याल रखा, तुम मेरे पास बैठे, तुमने मेरे थके हुए पैर दबाए, और बदले में पापा ने सिर्फ पैसा नहीं दिया, उन्होंने अपनी खुशी का एक टुकड़ा निकाल कर दिया। बच्चा शायद उस वक्त इकोनॉमिक्स नहीं समझता था, लेकिन इमोशंस वो खूब समझता था। उसके लिए वो सिक्का कह रहा था, पापा खुश हैं। और बचपन में इससे बड़ी सैलरी क्या होती? अब थोड़ा सवाल अपने आप से पूछिए, आज हमारी जेब में पैसे ज्यादा हैं, UPI है, कार्ड्स हैं, ऑनलाइन शॉपिंग है, वॉलेट नोट्स हैं, फोन में बैंक है, और कभी कभी तो फोन में इतने पेमेंट एप्स होते हैं कि खुद हमें याद नहीं रहता कि किसका पासवर्ड, किसका OTP क्या है, पैसा है कहाँ? लेकिन क्या आज वो 1 रुपए वाली खुशी है? कभी हम बच्चे को 100 रुपए देते हैं, 500 देते हैं, बर्थडे पर बड़ा सा गिफ्ट देते हैं, लेकिन क्या हम उसके साथ वो 10 मिनट बैठते हैं? क्या हम उसके बाल सहलाते हैं? क्या हम उससे पूछते हैं स्कूल में आज क्या हुआ? नहीं, हम ऐसा आज कुछ नहीं पूछते। और क्यों नहीं पूछते? क्योंकि आज जब कोई सवाल पूछा जाए तो बच्चा जवाब देने के बजाय अपना फोन देख रहा होता है, और पापा भी तो फोन ही देख रहे होते हैं सवाल पूछते समय। दोनों हैं तो एक ही रूम में, लेकिन दोनों अपनी ही अपनी दुनिया में हैं।
पहले बच्चा पापा के पास जाता था, बोलता था, पापा 1 रुपया दो। आज बच्चा कहता है, पापा UPI कर दो। और पापा कितना? 500। क्यों? बस चाहिए। और ट्रांजैक्शन कंप्लीट। टिंग टिंग टिंग, पैसा ट्रांसफर हो गया, लेकिन क्या प्यार भी ट्रांसफर हुआ? जरा कभी अपनी UPI ऐप से पूछ के देखिए। यही तो सवाल है, पहले 1 रुपये के साथ पापा की उंगली पकड़ने का रिश्ता था, आज कभी कभी 500 के साथ भी सिर्फ नोटिफिकेशन आता है, पेमेंट सक्सेसफुल। मुझे लगता है हमने पैसे तो संभालना सीख लिया, लेकिन पैसों से जुड़ी जो यादें थी वो बनाना बहुत दूर छोड़ा है। 1 रुपया, 1 टॉफी, 1 इमली, 1 गोला, 1 छोटा सा बिस्किट का पैकेट, ये सब चीजें आज शायद बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन बचपन में यही तो बड़े पल थे। और अजीब बात देखिए ना, आज हम बच्चों को बड़ी बड़ी चीजें देना चाहते हैं, महंगे महंगे टॉयज, नए नए फोन्स, फैंसी फैंसी वेकेशंस, लेकिन बच्चे को अक्सर क्या याद रहता है? पापा मेरे साथ पार्क गए थे, पापा ने मुझे साइकिल चलाना सिखाया था, मम्मी ने मेरे लिए आलू के पराठे बनाए थे, दादी ने मुझे कहानी सुनाई थी। यानी यादें महंगी नहीं होती, बस उनमें वक्त लगता है। अब एक पल के लिए उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पापा अब इस दुनिया में ही नहीं है। हो सकता है उनकी जेब में आज बहुत पैसे हो सकता है उनके पास अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, लेकिन कभी कभी दिल के किसी कोने में एक अजीब सी कमी रह जाती है, जो कभी पूरी नहीं होती, कैसे भी पूरी नहीं होती। और बस मन कहता है कि काश काश एक बार पापा फिर से आवाज लगा दें, काश एक बार मैं फिर पापा बोल पाऊं, काश एक बार वो कह सके कि बेटा जरा पैर दबा दे, जरा चंपी कर दे। और हम कहते, पापा आज पूरा 1 घंटा दबाऊंगी। और फिर जेब से वही पुराना सिक्का निकलता, 1 रुपया। शायद आज वो 1 रुपया किसी दुकान से कुछ ना खरीद पाए, लेकिन वो पापा की याद, उससे ज्यादा कीमती क्या होगा? आज की बातें इधर की उधर की में एक छोटा सा यादों का खेल करते हैं। आप अपने मन में सोचिए, आपके बचपन में 1 रुपये में क्या मिलता था? टॉफी, इमली, गोला, बिस्किट या स्कूल के बाहर वाली कोई ऐसी चीज जिसका नाम आज भी सुनते ही बचपन जवान हो जाता है। और दूसरा सवाल, आपको बचपन में सबसे ज्यादा पैसे कौन देता था? पापा, मम्मी, दादा, दादी, नाना, नानी? और अगर वो इंसान आज आपके पास नहीं है, तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके उनका चेहरा याद कीजिए। हो सकता है आपको 1 रुपया याद ना आए, लेकिन उनकी हथेली की गर्माहट जरूर याद आएगी। सच कहूं, हमारे बचपन का सबसे बड़ा ATM पापा की जेब थी, और सबसे ट्रस्टेड बैंक मम्मी की अलमारी, और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट दादा दादी की वो कहानियां, और सबसे बड़ा इंश्योरेंस घर के बड़े लोगों का वो साथ। तो हम फाइनेंशियली रिच नहीं थे शायद, लेकिन इमोशनली हम बहुत अमीर थे। आज पैसा बढ़ गया, सुविधाएं बढ़ गईं, चीजें बढ़ गईं, लेकिन वो छोटी छोटी खुशियां वो कम हो गई। दोस्तों, आज अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, तो उनके साथ थोड़ा वक्त बिता लीजिए, उनसे बात कीजिए, उनकी पुरानी कहानियां सुन लीजिए, उनके साथ चाय पी लीजिए। और अगर कभी वो कहें बेटा जरा पैर दबा दे, तो प्लीज मोबाइल साइड में रख दीजिए और पैर दबा ही दीजिए। हो सकता है उनकी जेब से 1 रुपया ना निकले,
लेकिन उनकी आंखों की वो छोटी सी मुस्कान आपको जिंदगी भर का इनाम दे जाएगी, क्योंकि आखिर में एक रुपये की कीमत उस सिक्के में नहीं होती, उस हथेली में होती है जिसने वो रुपया आपकी हथेली पर रखा है। और कुछ रिश्ते पैसे से नहीं, वक्त से अमीर होते हैं। तो आज थोड़ा वक्त बचाइए किसी अपने के नाम, किसी पुरानी याद के नाम, और शायद अपने बचपन के उस 90s वाले एक रुपये के नाम। मैं हूं आपकी तरानों की हम सफर आरजे तनुषा, और आप सुन रहे थे SN रेडियो पर बातें इधर की उधर की। मिलते हैं फिर एक और कहानी के साथ, कुछ बातें होंगी दिल की और कुछ इधर उधर की। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: भैया प्यार भी एकदम शतरंज जैसा होता है, एक चाल गलत चली नहीं कि सीधे शादी।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

0: आइए दोस्तों, आपको बताते हैं अमर के बारे में, जो अपने आप में एक प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। गरीबी और आर्थिक विषमता के दर्दनाक हालात ने दशकों पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को इस कदर व्याकुल कर दिया था कि उनकी कलम से विपथगा कविता निकली थी। श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिबक ठिठुर जाड़ों की रात्रि बिताते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। दुर्योग से अमीरी गरीब की खाई चौड़ी ही हुई है, इसलिए तमाम कानूनी उपायों के बावजूद बाल श्रम बाल विवाह की समस्या खत्म नहीं हो पाई है। कई बार किसी ढाबे या रसूखदार के घर के बाल श्रमिक हमें यूं देखते मिल जाते हैं, मानो कह रहे हो हमें उबार लो, हमारा हाथ थाम लो, हम भी कुछ बनना चाहते हैं। अमरलाल ऐसी ही अभिलाषाओं के प्रतिनिधि हैं। राजस्थान के बंजारा समुदाय में पैदा हुए अमर का बचपन भी उन अनगिनत बच्चों जैसा था, जिन्हें सुबह सुबह ये सवाल सताता था कि आज घर में खाने को कुछ मिलेगा भी या नहीं। इस बुनियादी चिंता ने अमर से भी उनका लड़कपन छीन लिया। उसमें स्कूल और किताबों का कोई जिक्र क्या होता। होश संभालते ही पेट भरने की मजबूरी ने अमर को भी पत्थर तराशों के बीच पहुंचा दिया। उनके परिवार पर स्थानीय महाजन का कर्ज ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं लेता था, इसलिए परिवार के सारे सदस्य बंधुआ मजदूरी करने को बाध्य थे। छोटे छोटे बच्चे से भी पत्थर ढुलवाने में साहूकार सामंतों को शर्म नहीं आती थी। साल 2001 की बात है, अमर की उम्र भी 6-7 साल की रही होगी। उनका खानाबदोश परिवार उन दिनों जिस गांव की पत्थर की खान पर काम कर रहा था, वहां बचपन बचाओ आंदोलन एक शिक्षा रैली लेकर पहुंचा। खदान के करीब से गुजरते हुए रैली के अगुआ कैलाश सत्यार्थी ने जब नन्हे अमर के हाथों में पत्थर का बड़ा टुकड़ा देखा तो वो ठिठक गए। वो फौरन अमर के माता पिता से बात करने के लिए पहुंचे ताकि उन्हें समझा सकें कि ये जुल्म है, ये तो इस बच्चे के खेलने कूदने पढ़ने लिखने के दिन है। अब जिनके पुरखों ने कभी स्कूल न देखा हो तो वो भला क्या समझेंगे शिक्षा की कीमत। उनके लिए तो बाल मजदूरी कोई अनहोनी बात थी नहीं, क्योंकि वो सब यही तो करते हुए बड़े हुए थे। मगर कैलाश सत्यार्थी उन्हें समझाने में जुटे रहे कि उनका बेटा किसी बड़े काम के लिए बना है। उन्होंने अमर के पिता से कहा कि यदि वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर सकते तो जयपुर में एक बाल आश्रम है जो इसकी जिम्मेदारियां उठा सकता है। गरीब माता पिता भी बेटों का भला चाहते थे और उनके दिल में भी तरह तरह की तमन्नाएं थीं। कैसे अपनी संतान को नजरों से इतना दूर भेज दें। बिछो के ख्याल से ही उनका दिल कांप उठा। लरजती हुई आवाज में अमर के पिता ने सत्यार्थी जी से बस यही कहा कि वो पहले जयपुर आश्रम जाकर वहां रह रहे बच्चों को देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। माता पिता दोनों जयपुर बाल आश्रम आए। असंतोष की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जैसी जिंदगी वे अपने बच्चों को दे रहे थे उससे आश्रम के जीवन की कोई तुलना ही नहीं थी। अमर अपने दो बड़े भाइयों के साथ जयपुर आश्रम आ गए। वो सब बेहद खुश थे क्योंकि वहां वे अपनी मर्जी से खेल सकते थे, पढ़ लिख सकते थे। 6 महीने तक आश्रम में पढ़ने के बाद अमर और उनके भाइयों का औपचारिक शिक्षा के लिए एक सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। अमर ने वहीं से 12वीं की अपनी शिक्षा पूरी की। बालाश्रम ने अमर और उनके भाइयों को एक नई जिंदगी दी, बल्कि अमर के नेतृत्वकारी गुण को भी बहुत अच्छी तरह से निखारा। वो कई बार बाल आश्रम बाल सभा के अध्यक्ष चुने गए। आश्रम में ही उन्होंने सत्यार्थी के बेटे भुवन से संवाद करने का मौका मिला, जो पेशे से वकील है। जैसे जैसे अमर बड़े और शिक्षित हुए, उनका यकीन पुख्ता होता गया कि कानून ही वो जरिया है जिसकी मदद से बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाई जा सकती है। साल 2013 में उन्होंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और 2018 में कानून में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद 2019 में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। करीब 6 महीने तक दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकालत करने के बाद 1.5 साल तक अमर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील के साथ काम भी किया और उसके बाद वो अपनी संस्था के लिए काम करते रहे। वो न सिर्फ बाल मजदूरों के मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बल्कि जिस किसी गांव के बारे में उन्हें पता चलता है कि वहां बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा। अमर वहां पहुंचकर अपनी कहानी सुनाते हैं और परिजनों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने बच्चों का भविष्य बचा लें। अमर को स्वीडन और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को संबोधित करने का भी मौका मिला, जहां उन्होंने
1: सब्जी हमारी बेकार जा रही थी, खेत में हमें जोत के फेंक
0: दुनिया का
2: इस हौसले की दास्ता।
0: अमर के माता पिता के पास
3: पहले आपको एक अब अपना दो पंक्तियों के माध्यम से उनकी कहानी कोई बताने की कोशिश करते हैं।
0: आपका बेटा दिल्ली में वकील है, अमर के अभिभावकों के लिए ये गौरव का क्षण होता है। उनके दूसरे बेटा बेटी भी अब नौकरी करते हैं, मगर इन वर्षों में अमर बार बार अपने समुदाय के बीच लौटते हैं। नतीजन उनके बंजारा समुदाय के अब लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। इलाके के खानाबदोश समुदायों के सामने मिसाल के तौर पर उनकी कहानी पेश की जाती है। मानना होगा कि अमर ने हाशिए पर जीने वाले हरेक बच्चे के हक की लड़ाई लड़ी है। अब अपने बचपन को उन्होंने हमेशा अपने भीतर जिंदा रखा है, ताकि वो उन्हें याद दिलाता रहे हजारों बाल श्रमिकों को अमर की तलाश है।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ। बने रहिए मेरे साथ। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता। हरी हरी दूब पर ओस की बूंदें अभी थीं, अभी नहीं है। ऐसा खुशियां जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी, कहीं नहीं है। कंक्यार की कोख से फूटा बाल सूर्य जब पूरब की गोद में पांव फैलाने लगा, तो मेरी

बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से भाप बनी उसकी बूंदों को ढूंढूं? सूर्य एक सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। ये बात अलग है कि ओस क्षणिक है, क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं, कण कण में बिखरे सौंदर्य को पीऊं। सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीची की हरी हरी दूब पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: हमारे देश में भयंकर वाली टेक्नोलॉजीज चलती हैं। अमेरिका के दो साइंटिस्ट एक बात सुनकर हमारे देश की बेहोश हो गए जब उन्हें पता चला कि घर में अगर चप्पल उल्टी रखती जाए तो लड़ाई हो जाती है।
0: दोस्तों, मैं हूं आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले आइए ना एक गीत सुन लेते हैं।

मदर टेरेसा की वो सात बातें जो हर पीआर प्रैक्टिशनर्स के लिए मददगार साबित होती हैं। मदर टेरेसा एक ऐसी महिला हैं जिन्हें दुनिया भर में उनकी करुणा, सहानुभूति और निस्वार्थता के लिए जाना जाता है। उनके मृत्युपरांत आज भी लोगों और समाज के प्रति समर्पण के लिए उन्हें दिल की गहराइयों से याद किया जाता है। आज के ब्रांड्स ऑडियंस के बीच एक लंबे समय तक चलने वाली छवि बनाने का लक्ष्य रखते हैं। मदर टेरेसा के निम्नलिखित उदाहरणों से पीआर प्रैक्टिशनर्स कई सीख ले सकते हैं जो उन्हें अपने क्लाइंट्स के लिए एक लंबे समय तक चलने वाली छवि बनाने में मदद करेंगे। यहां सात बातें बताई गई हैं जिनका प्रत्येक पीआर प्रैक्टिशनर को पालन करना चाहिए। एक, ऑडियंस को अपनी प्राथमिकता बनाएं। मदर टेरेसा ने एक बार कहा था, आपके पास आने वाला हर व्यक्ति मुस्कुराकर ही वापस जाना चाहिए। ब्रांड्स का वजूद अपने कस्टमर्स की वजह से होता है। आखिरकार पब्लिक ही है जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीदती है। अपने संपूर्ण जीवन के दौरान मदर टेरेसा अनेक लोगों की भलाई के लिए काम करती रहीं और खुद को दान, गरीबी और सादगी के साथ जीने के लिए समर्पित कर दिया। इसी तरह ब्रांड्स को भी जनता के प्रति केंद्रित होना चाहिए और उनके हित में मानवता का आदान प्रदान होना चाहिए। मदर टेरेसा की अपने से पहले अन्य लोगों के हित में सोचने की उदारता को हर एक ब्रांड को भी निश्चित तौर पर अपनाना चाहिए। दो, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जैसा कहा वैसा करना। ब्रांड्स की अपनी एक पहचान होना चाहिए जिससे कि व्यक्ति उन पर भरोसा कर सके। उस ब्रांड से बदतर कुछ भी नहीं है, जो कहता कुछ है और करता कुछ है। मदर टेरेसा ने अपने पूरे जीवन में एक ही बात सिखाई कि हमें अपना जीवन दूसरों की भलाई करने में ही व्यतीत करना चाहिए। वह स्वयं गरीबी में रहती थी लेकिन फिर भी दूसरों की सहायता करने के लिए भोजन और आपूर्ति की व्यवस्था करती ही रहती थी। पीआर प्रैक्टिशनर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जैसा कहें वैसा करें। तीन, कड़ी मेहनत करें भले ही कोई नहीं देख रहा हो। मदर टेरेसा को गति प्राप्त करने में बहुत समय लगा। डिजिटल युग के विकास के साथ सफलता की धारणा बदल जाती है। आजकल ऐसा माना जाता है कि सफलता रातों रात प्राप्त की जा सकती है, लेकिन यह पूर्णतः गलत धारणा है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कड़ी मेहनत और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। कई बार आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है या आप हतोत्साहित महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका ध्यान अपने लक्ष्यों से हटना नहीं चाहिए। कई बार हमें कड़ी मेहनत का फल उतना अच्छा नहीं मिलता जितनी हमने मेहनत की थी, लेकिन इसके प्रति अपना दृढ़ विश्वास बनाए रखें, क्योंकि देर से ही सही फल अवश्य मिलेगा। चार, दूसरों के नक्शे कदम पर चलने के बजाय अपना रुझान बनाएं। दुनिया भर में पहचान हासिल करने के बाद भी मदर टेरेसा ने इसकी चिंता किए बिना कि लोग क्या सोचते हैं, हमेशा ही एक साधारण जीवन जीना जारी रखा। उन्होंने खुली बाहों से लोगों को स्वीकार किया, उन्हें आजीवन प्यार किया और उनकी देखभाल की। प्रति सांस्कृतिक होने की क्षमता रखने वाले ब्रांड्स भी अपनी ऑडियंस के जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। ये एक जोखिम है लेकिन साथ ही साथ प्रभावी भी है। अपने कस्टमर्स को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न रुझान अपनाएं। ये आपकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाएंगे और आपको भीड़ से बिल्कुल अलग पहचान दिलाएंगे। पांच, अपने आप पर विश्वास करें। मदर टेरेसा ने गरीबों की मदद करने और उन्हें ईश्वर के करीब लाने के लिए आजीवन बखूबी कार्य किए। संपूर्ण जीवन काल के दौरान उनका आत्म बलिदान उन्हें अन्य सभी लोगों से अलग स्थान देता है। इसी तरह पीआर प्रैक्टिशनर्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए
कि ब्रांड्स को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जीवंत रखने की आवश्यकता है जो वो समाज को दे रहे हैं। उन्हें स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। ये न केवल उन्हें काम में उद्देश्य स्थापित करने की भावना देगा, बल्कि ये भी सुनिश्चित करेगा कि प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना वास्तविक है। ब्रांड्स अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं यदि उन्हें अपने लक्ष्यों पर पूरा भरोसा है और वो इन लक्ष्यों के लिए कार्य करने को तैयार हैं। 6. आप जैसे हैं वैसे ही रहें। एक बात जो मदर टेरेसा को उल्लेखनीय व्यक्ति बनाती है वो ये है कि वे कभी भी अपने काम से नहीं भटकी। प्रसिद्ध होने के बाद उन्हें एक आरामदायक जीवन जीने का अवसर मिला, लेकिन वे कभी भी अपनी राह से नहीं भटकी। गरीबों और लाचारों की जीवन को बेहतर बनाने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहीं। ब्रांड्स को भी अपनी डिमांड्स और पॉपुलैरिटी को देखते हुए भटक नहीं जाना चाहिए। उन्हें अपनी प्रसिद्धि का आदि नहीं होना चाहिए और अपने वजूद को कभी नहीं भूलना चाहिए। राह में कई ध्यान भटकाने वाले कारणों से अलग, ब्रांड्स को अपनी लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सटीक विकल्प बनाना चाहिए। 7. साधन संपन्न बने। इस विषय को लेकर मदर टेरेसा का मार्ग प्रशस्त था कि उनके पास जो कुछ भी है उसका उपयोग दूसरों की मदद के लिए किस तरह किया जाए। स्ट्रेटजीज बनाने से पहले पीआर प्रैक्टिशनर्स की अंतर्दृष्टि भी स्पष्ट होनी चाहिए और उन्हें इस बात का विश्लेषण करना चाहिए कि समाज में उनके ब्रांड का क्या प्रभाव है। मदर टेरेसा ने हमें सिखाया कि हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। समाज को वापस देने के लिए विभिन्न परोपकारी कारणों के रूप में हर ब्रांड को इसे स्वीकार करना चाहिए। अपने सभी संसाधनों के उपयोग के साथ उन लोगों की मदद करने और समर्थन करने के विभिन्न तरीके खोजें जो इस दुनिया को जीने के लिए एक बेहतर जगह बनाने की वजह बने। देखिए कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? दोस्तों, हम जिंदगी में चलते चलाते सभी के बारे में राय बनाते रहते हैं। कभी कभी ये राय बड़ी खोखली भी हो सकती है। हम गलत सोच सकते हैं किसी के बारे में। आइए, इसी से संबंधित आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं, आपके बात समझ में आ जाएगी। चलिए, मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे थे, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिल रहा। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए बस यूं ही खड़े हो जाते हैं। पसीना पहुंचते हैं, रुमाल निकालते हैं, रुमाल से अपने को हवा करने की कोशिश करते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक आदमी से आंखें मिलती हैं। आपकी ऐसी स्थिति देखकर वो आदमी हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। अब आपने फौरन उस

आदमी के लिए एक राय बनाई। बड़ा ही सहृदय व्यक्ति है, न जान न पहचान, फिर भी पानी के लिए पूछ रहा है। अब उस व्यक्ति के लिए आपकी ये पहली राय है, क्यों? अब वो आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर लेता है। आप पानी लेने तेज कदमों से उसके दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस आदमी के बारे में आपकी क्या राय है भाई? आप उसे गालियां देने लग जाते हो, क्यों? बेवकूफ है, उल्लू का पट्टा है, ढीला है, आलसी है, पता नहीं क्या क्या बोल डालते हो उसको आप। अब ये आपकी दूसरी राय है, देखिए। लेकिन थोड़ी सी देर बाद दरवाजा खुलता है और वो आदमी बाहर आता है और कहता है, आई एम रियली सॉरी, उसे थोड़ी देर हो गई, उसके लिए बहुत बहुत खेद है, लेकिन आपकी हालात देखकर उसने आपको पानी के बजाय नींबू पानी देना जरा ज्यादा अच्छा समझा, इसलिए थोड़ा सा लंबा वक्त लग गया। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब आपकी क्या राय है? कितना अच्छा आदमी है ये, कितना सोचा उसने मेरे बारे में। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि शरबत में चीनी तो है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय बनाना चाहते हैं आप? अरे यार, बड़ा बेवकूफ आदमी है, नालायक है, बेहद कंजूस भी है। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उस समय उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी ले आया, जिससे आप जितनी चाहें उतनी डाल लें। अब उस व्यक्ति के बारे में क्या विचार है आपका? है ना मजेदार? अब आप मनन कीजिए, एक सामान्य स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली हो जाती है और लगातार बदलती जा रही है, तो क्या हम किसी के बारे में भी राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से राय ना बनाएं। पता नहीं कौन किस परिस्थिति या स्थिति में ऐसा काम कर रहा है, अब ये तो वही बेहतर जानता होगा ना। हो सकता है अपनी अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और दूसरा भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को बस इतना सा समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। क्यों दोस्तों, बात में दम है ना? सोचिएगा। दोस्तों, मैं हूं आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले आइए ना एक गीत सुन लेते हैं।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना?
1: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
2: पंडित जी ने कुंडली मिलाई, 36 के 36 गुण मिल गए। लड़के वालों ने फिर भी मना कर दिया शादी से। लड़की वालों ने पूछा, भला ये क्या बात हुई, 36 के 36 गुण मिल गए हैं, फिर क्या परेशानी है? लड़के वालों ने कहा, हमारा लड़का बिल्कुल एक नंबर का निकम्मा है। अब आप चाहते हो बहू भी वैसे ही ले आए?

सीख तो हम कहीं से भी सकते हैं। कहते हैं कि जिंदगी से बड़ी पाठशाला और समय से बड़ा शिक्षक कोई नहीं, लेकिन अगर हम अपनी कल्पनाओं को और विस्तार दें तो पाएंगे कि प्रकृति ने हमारे लिए इतने सारे शिक्षक उपलब्ध कराए हैं कि हम सारी जिंदगी सभी से कुछ ना कुछ सीखते रह सकते हैं, बशर्ते कि हम में ज्ञान की प्यास हो और हमारी चेतनाएं जागरूक हों, जो हमें सुनने, देखने, स्पर्श करने, महसूस करने और सोचने में मदद करती हैं। अगर हम सब चीजों को नए नजरिए से देखना शुरू करें तो पाएंगे कि हर रोज हमारे जीवन में कुछ तो ऐसा नया जरूर आता है जो हमें कुछ ना कुछ सिखा ही जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रह्मांड की, नितांत अवर्णनीय, हमारे समस्त ज्ञान और कल्पनाओं से भी कहीं ज्यादा रहस्यमय। लेकिन जब बात कुछ सीखने की आती है तो यह हमें इस बात की समझ देता है कि हम क्या हैं और वास्तव में कहां हैं। यह कोई इकाई नहीं बल्कि अरबों खरबों इकाइयों का विस्तार है। हम इसकी एक इकाई से भी बहुत ज्यादा कम हैं। यह हमें सिखाता है कि हमारे पास जो कुछ भी है उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मांड के बाद बारी आती है समय की। यह हमारे जीवन में बहुल प्रकार की भूमिकाएं निभाता है। हर क्षण खास और शिक्षाओं से भरा हुआ होता है। इसका पूर्वानुमान, सही पूर्वानुमान हमेशा असंभव प्रायः ही है। यह हमें अनपेक्षित के प्रति तैयार रहने की शिक्षा देता है। यह हमें जिंदगी के सभी पक्षों में अच्छे और बुरे की समझ विकसित करने में मदद करता है। जीवन हमें मिला हुआ एक और शिक्षक है। यह अनुभवों और आश्चर्यों से भरपूर होता है। हर अनुभव एक नए पाठ के समतुल्य है। हम अपनी गलतियों और सफलताओं से सीखते हैं। जीवन हमें जिंदगी के महत्व, इसकी उपयोगिता, इसे कैसे उपयोग करें, इसे कैसे अमूल्यता दें और कैसे इसे अधिकतम पाएं जैसी बातों के बारे में सिखाता है। नदी प्रवाह का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है, पारदर्शिता का प्रतीक है। अपने प्रवाह को शाश्वत बनाए रखने के लिए चिर कटिबद्ध नदी कभी किसी से नहीं पूछती कि कहां जाऊं, कैसे जाऊं। यह हमें आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ बढ़ते जाना सिखाती है। नदी की बात चले और पानी की याद ना आए, ऐसा संभव है क्या? जीवन की एक अनिवार्यता के रूप में पानी हमें सामंजस्य की कला और विज्ञान दोनों सिखलाता है। यह क्षण भर में स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेता है, लेकिन कभी भी उन्हें स्वयं पर हावी नहीं होने देता। अब पेड़ों की बारी। कभी सोचा है आपने कि पेड़ हमें हमारे जीवन में कितना कुछ देता है? यह बहुत सारी मूर्त और अमूर्त चीजें हमें देता है, जिनमें लकड़ियां, फलों, फूलों, सौंदर्य, ऑक्सीजन, छांव, सुकून और न जाने कितना कुछ शामिल है। पेड़ हमें किसी से कुछ भी अपेक्षा किए बिना जीने की कला सिखाते हैं। इसी तरह किताबें हैं। किताबें महज समय काटने की चीजें नहीं होती। ये हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं, जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती। हम किताबों से अपने अपने जीवन के, हमारे परिवेश के, समाज के, संसार के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। वे हमें सिखाती हैं कि एक अच्छा, अनूठा और सफल व्यक्ति कैसे बने। मां, यदि पेड़ इंसान होते तो यकीनन मां जैसे ही होते। मां हमें स्वरहित प्रेम, दयालुता, कोमलता, ख्याल रखना, संसार को समझाना, समझौता किए बिना सामंजस्य स्थापित करना, वह सब कुछ सिखाती है जो हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों और नियामतों को सही ढंग से स्वीकार करना सिखाती है। लोग, हम एक ऐसे समाज में रहने के लिए बने हैं जो लोगों द्वारा या लोगों से बनता है। हमारे पूरे जीवन में लोग अलग अलग रूप में हमारे सामने आते रहते हैं। वो हमारे मित्र हैं, संबंधी हैं, सहकर्मी हैं, साथी हैं, पड़ोसी हैं, अजनबी हैं, लेकिन हम उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। वे हमें जीवन के विभिन्न स्वरूपों का मतलब और उन्हें समझने की कला सिखाते हैं। इतिहास,
हीगल ने कहीं कहा था कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। कुछ वर्ष पश्चात स्पेनी दार्शनिक जॉर्ज सांतियाना ने इसमें जोड़ा कि जो अतीत को याद नहीं रख सकते वे ही उसे दोहराते हैं। इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमें इससे सीखना चाहिए ताकि हम अपने भविष्य को बचा सकें और एक आकार दे सकें।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना? आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: अचानक वाईफाई बंद हो गया है। चेक किया तो पता चला पड़ोसी ने बिल नहीं भरा था 2 महीने से वाईफाई का, इंटरनेट का। कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: इस जाबाज सेना के पराक्रमी कप्तान को करगिल युद्ध के समय असाधारण शौर्य दिखाने के कारण
2: मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
3: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
4: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
5: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
4: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
5: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं, उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
4: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
6: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
7: क्या बात है,
6: सुनकर ही जोश आ गया।
7: हाँ
6: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
7: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
3: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा।

0: विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया, कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशो, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशो, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी।

0: जा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
1: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
2: 1 घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
1: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था? उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया।
3: हमला करो!
0: और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 5.5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
4: कैप्टन विक्रम, 5.5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
2: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
5: क्या बात कही है?
4: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
2: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
3: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
3: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
3: जी सर।
4: हमला करो दुर्गा माता की जय। भारत माता की जय।
0: दुश्मन उनके

0: खूंखार हमले से घबरा कर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
1: साहब जी, साहब जी आप मत जाइए, मैं जाता हूँ।
2: नारायण, तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
1: नहीं, लेकिन साहब जी,
2: मैंने कहा ना पीछे हट जाओ, मैं जा रहा हूँ।
1: साहब जी, साहब जी।
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
2: क्या हुआ तुम्हें? नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया, तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजयी तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: सपना हुआ सच।
2: जी हाँ।
3: राम राम भाई।
4: राम राम भाई। राम राम। अरे हरिया, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे?
3: अरे भाई, मुझे अपने बच्चे का आपके स्कूल में दाखिला जो करवाना है।
4: देखो भाई, मैं यहाँ गेट कीपर हूँ, सब जानता हूँ। यहाँ तो बड़े बड़े अफसर, सेठ, साहूकारों के बच्चे पढ़ते हैं, बहुत फीस लगती है।
3: हैं? पर मैंने तो कुछ और ही सुना है।
4: क्या सुना है भाई, जरा मुझे भी तो बताओ।
3: अरे भाई, मेरे पार्षद जी कह रहे थे कि काका, अब तुम अपने बच्चे को भी इस पास के बड़े स्कूल में भर्ती करवा देना है, फीस वगैरह सारा खर्चा सरकार देगी।
4: अच्छा?
3: बस तुम अपना गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण पत्र या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र साथ ले जाना है। अगर उम्र का प्रमाण पत्र ना हो तब भी किसी बच्चे को दाखिला लेने से रोका नहीं जा सकता।
4: अरे वाह भाई, तुमने तो हमें नई बात बताई है। यदि ये सही है तो मैं भी अपनी 6 साल की बिटिया को इसी स्कूल में भर्ती करवा दूंगा। अब ऐसा करते हैं, प्रिंसिपल मैडम के पास चलते हैं। चलो चलो
3: चलो।
4: मैडम जी नमस्ते।
5: नमस्ते। नमस्ते शंभू।
3: नमस्ते मैडम जी।
5: नमस्ते। आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए।
3: जी धन्यवाद।
5: कहो शंभू, कैसे आना हुआ?
4: मैडम जी, ये हरिया है, अपने बच्चे का इस स्कूल में नाम लिखाना चाहते हैं। मैंने समझाया भी, पर ये कह रहे हैं कि अब गरीबों के बच्चों को भी इन स्कूलों में दाखिला मिल सकता है।
5: अरे शंभू, तुम्हें नहीं मालूम, हरिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून बनाया है, जिसमें गरीब छात्रों के लिए भी प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों का आरक्षण रखा है।
4: अच्छा, तो मैडम जी, क्या मैं भी अपने बिटिया को दाखिला दिला सकता हूँ?
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं। और हाँ, आजकल हमारे यहाँ दाखिला चल भी रहा है, आप दोनों आज ही फॉर्म भरकर दे दीजिए, क्योंकि जो पहले आएगा उसका दाखिला पहले किया जाएगा। बस तुम अपना BPL कार्ड या फिर SC/ST का प्रमाण पत्र साथ जरूर लेकर आना।
3: देखा, मैंने कहा था ना।
4: आज मेरा सपना सच हो गया। मैडम जी धन्यवाद। और हरिया, तुम्हारा भी धन्यवाद।
3: और शिक्षा के अधिकार कानून का भी धन्यवाद।
5: बिल्कुल ठीक, शिक्षा का अधिकार हमारा,
6: हर सपना सच हुआ हमारा।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: हसरत मोहानी।

0: आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है।
1: सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस 1875 में कस्बा मोहान जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बास किताबों में उनका सने पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिदे आजादी भी थे। अरबी फारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1898 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद 1899 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हजरत ने 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। 1903 का साल हसरत की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया। इसी साल वो अपने बागियाना ख्यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए। अब हसरत अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में किराए पर मकान लेकर रहने लगे। 1903 ही में हसरत ने एक इल्मियो अदबी रिसाला उर्दूए मौल्ला जारी किया। ये सिलसिला आखिर उम्र तक जारी रहा। उर्दूए मौल्ला में अदबी और सियासी दोनों तरह के मजामीन शाये हुए थे। हसरत मोहानी ने इसके जरिए कौमी इत्तेहाद, सेकुलरिज्म और कामिल आजादी की आवाज बार बार बुलंद की। वो आजादी के मतवाले थे। अंग्रेजी हुकूमत की उन्होंने खुलकर मुखालफत की और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल 1908 के उर्दूए मौल्ला में एक मजमून की इशाअत पर मुकदमा चला। अदालत ने उन्हें 2 साल कैदे बामशक्कत की सजा सुनाई और 500 रुपए जुर्माना किया। जेल में हसरत ने किस तरह शबो रोज गुजारे उनके इस शेर से अंदाजा किया जा सकता है।
2: कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, घर से सामान शहर का था ना इफ्तारी का।
1: कैद से रिहाई के बाद हसरत के सियासी ख्यालात में और शिद्दत पैदा हो गई। हसरत मोहानी के मिजाज में सादगी बहुत थी। उनके लिबास और रहन सहन को देखकर गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो बुलंद पाया शायर, अदीब और सियासतदान हैं। एक मर्तबा कानपुर के एक सौदागर जो हसरत से अकीदत रखते थे उनसे मिलने आए तो देखा कि वो कुछ लिख रहे हैं।
3: जी आदाब, बजा लाता हूँ जनाब मोहानी की खिदमत में।
2: अरे आप, आदाबर्स, आइए आइए, तशरीफ रखिए।
3: जी जी, शुक्रिया शुक्रिया।
2: माफ कीजिएगा, जरा एक मजमून लिख रहा था, बस अभी आपसे मुखातिब होता हूँ।
3: कोई बात नहीं जनाब, कोई बात नहीं, आप आराम से अपना काम करें।
2: जी बस
1: जी। हसरत लिखते जाते और बीच बीच में उन सौदागर से बात भी करते जाते। हसरत की पुश्त पर एक फटा पुराना पर्दा लटक रहा था। वो पर्दे के पीछे से कुछ निकालते और मुंह में रख लेते और डेस्क पर रखी गुड़ की डली से थोड़ा गुड़ खा लेते। सौदागर साहब खामोशी से देखते रहते।
2: जनाब बस जरा सी देर और, बस यूं समझिए खत्म ही हुआ चाहता है।
3: जी जी, आप इत्मीनान से काम करें, बाखुदा मैं मजे में हूं।

0: ये थोड़ा सा अजीब है। लिख भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, कैसे पूछूं?
1: जब जब्त ना हुआ तो अर्ज किया,
0: मोहानी साहब
2: जी,
0: ये पर्दे की ओट से निकालकर आप क्या खा लेते हैं? कुछ खादिम को भी आता हो?
2: चलिए फटी हुई बनियान दिखा ही देते हैं आपको।
0: क्या मतलब?
1: हसरत ने पर्दे के पीछे से मिट्टी की हंडिया निकाली जिसमें सूखी रोटियां पानी में भीगी हुई थी।
2: ये लीजिए, खा लीजिए मियां, फकीरों का खाना तुम रईस ना खा पाओगे।
0: क्या सूखी रोटी पानी में भीगी हुई?
2: आज तीसरा फाका है, शुक्र है सूखी रोटी मयसर हो गई, बड़ी तस्कीन हो गई।
0: या खुदा,
2: नौश फरमाइए मियां,
0: लाइए।

0: बहुत ज्यादा हो गया।
1: आपने कुछ खाया ही नहीं?
2: कुछ नहीं खाया, यहाँ गला कह रहा है कि माफ करो भाई, खाना गले तक आ गया। वैसे आज ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ रही?
1: जी बजा फरमाया आपने, आज तो भला की ठंड है। मैं अभी आपको कंबल देता हूँ, ये लीजिए। आपका सोने का इंतजाम यहाँ कर दिया है, अब आप आराम करें।
0: इतना खूबसूरत और मुलायम कंबल।
1: जी और काफी गर्म भी है। इसको ओढ़ के चैन से सोइए।
0: शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी शब्बा खैर।
0: शब्बा खैर।
1: बला की ठंड है, लेकिन इतना कीमती और मुलायम कंबल, लगता है विदेशी माल है।
0: नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं ओढ़ सकता। मैं मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ देसी चीजें ही इस्तेमाल करने का हक है, और यही मेरा फर्ज भी है। तो जनाब कंबल जी, आप तशरीफ उधर ले जाए।
3: अरे हसरत, तू रात बेकंबल ही गुजार ले।
4: हसरत रात भर सर्दी में कांपते रहे, मगर वो कंबल नहीं ओढ़ा। इस ख्याल से नहीं ओढ़ा कि ये विदेशी माल है। हसरत एक सच्चे मजहबी इंसान थे। उन्होंने नात और मनकबत के अलावा श्री कृष्ण की शान में भी अशार लिखे हैं।
0: मथुरा कि नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू उसी का, बरसाना ओ नंदगांव में भी, देख आए हैं जलवा हम किसी का। पैगाम हयात जाविदा था, हर नगमा कृष्ण बांसुरी का।
4: अंग्रेज हुकूमत को हसरत मोहानी की सियासी सरगर्मियां कतई पसंद नहीं थी। 1913 में उनका प्रेस जब्त कर लिया गया। 1916 में उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। 1918 में रिहाई मिली तो आजादी की जिद्दोजहद में फिर मसरूफ हो गए। हसरत मुकम्मल आजादी का मुतालबा करने वाले हिंदुस्तान के पहले मुजाहिदे आजादी थे। हसरत मोहानी को तीसरी बार 22 अप्रैल 1922 को 2 साल के लिए जेल भेजा गया। 1942 में हसरत कानपुर से यूपी असेंबली के मेंबर चुने गए और फिर पार्लियामेंट के मेंबर हुए। तहरीके आजादी के सिलसिले में उन्हें रईसुल एहरार के लकब से याद किया गया। उनका इंतकाल 13 मई 1951 को लखनऊ में हुआ। आज वो फिरंगी महल लखनऊ के कब्रिस्तान अनवारे बाग में दफन है। लेकिन सच पूछिए तो उनकी जगह हर सच्चे मुहिब्बे वतन के दिल में है।
0: हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजिरी, हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजिरी, सुनते हैं आशिकों पे तुम्हारा करम है आज।
5: भगत सिंह।
6: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार

0: अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
1: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
0: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
2: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
3: कौन है?
4: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहाँ आंगन में बैठी क्या कर रही है?
3: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहाँ चले गए थे तुम?
4: तीर्थ करने चला गया था, अमृतसर।
3: अमृतसर? अच्छा अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
4: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख,
3: ये इस शीशी में क्या है?
4: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
3: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
4: मैं इसकी पूजा किया करूंगा अमरो। ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़े।
3: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
4: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में।
0: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
2: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया।
5: जय!
2: पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाई। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
4: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
5: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
4: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
0: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
2: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
6: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
7: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
6: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
8: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
9: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में मनुष्य के शरीर में शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
10: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
9: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है, फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
10: यानी कि आपके कहने के आधार पर क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
9: एक बार जब विसंगति आ जाती है जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है।
10: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
9: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूर होता है उससे। जी
10: डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
9: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
10: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर, उनके मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
9: जी, ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
11: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
10: जी बताइए।
9: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
10: जी डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की गोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है?
9: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभावों से रोका जा सकता है और जिसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
10: तो दोनों को ही खानी चाहिए।
9: और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
10: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
9: जी
10: और डॉक्टर साहब,
12: क्या फाइलेरिया की दवाई एक बार खा लेने से साल में पूरे साल इससे बचा जा सकता है?
9: बताइए जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
10: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है, इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
9: ये जब अभियान चलता है, हम सभी यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें। जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग, उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें। इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
10: जी, और डॉक्टर साहब, एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
9: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता, इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में दस बजे से लेके दो बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं। अच्छा। तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
10: अच्छा। जी जी, रात के 10 बजे से 2 बजे तक ज्यादा
9: वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
12: जी, और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फिलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
10: जी बताइए।
9: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहाँ पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
10: जी
7: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ पर।
6: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
7: हूँ से आरजे राकेश,
13: अने हूँ से आरजे कमता डामोर,
7: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती बाड़ी, आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत से तमारो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबवानी आवाज पर। हूँ से आरजे राकेश, अने रोजनी जेम तमारी वस मा आज फेर कार्यक्रम खेतीवाड़ी लीने हाजिर थायो से। अने किसान भाइयों, हूँ रोज तमारी वस मा खेतीवाड़ी देखा जोड़ायला मुद्दा, खेतीवाड़ी नी समस्याओं अने तिना समाधान नी वातो लीने रोज इना समय पर हाजिर थातो रू से। किसान भाइयों, आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम मा आपु वात्यो हामलवाना से बोकड़ा पालवानी वात्यो। किसान भाइयों, बोकड़ी ने गरीबोनी गाय के से, अने पशुपालन मा बोकड़ी एक एवो पशु से त्यो कम थी कम समय मा अधिक मुनाफो आपड़ा किसान भाइयों ने आले से। किसान भाइयों, आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम मा विस्तृत रूप देखी बोकड़ा पालवानी वात्यो वताड़वा हारू आपड़ी हाथे स्टूडियो मा मौजूद थाया से पशु विशेषज्ञ श्री डॉक्टर KL डामोर, अतिरिक्त उपसंचालक पशुपालन अने डेयरी विभाग झाबुआ मध्य प्रदेश देखी। तो सालो किसान भाइयों, हाँ वार नहीं करिए, शुरुआत करिए आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में बोकड़ा पालवानी वातियों ने।
14: पशु विशेषज्ञ जो कि डॉक्टर साहब KL डामोर साहब, जो कि अतिरिक्त उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग जिला झाबुआ से हैं। तो सर जी नमस्कार।
15: नमस्कार।
14: सर जी ये बताइए कि बकरी पालन के लिए किसान भाइयों को आवास कैसा रखना चाहिए?
15: अच्छी बात है ये, जैसे हमारा पशुपालन विभाग शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पशुपालकों तक सुविधाएं अधिक से अधिक लाभ देने के लिए तत्पर हैं। बकरी हमारे यहाँ किसान को गरीब की गाय कही गई है। बकरी
14: जी जी,
15: किसानों के लिए
14: जी
15: बकरी को गरीब की गाय कहा गया है। अब स्वाभाविक है कि केवल हम गाय पालन या भैंस पालन करें, उसके साथ साथ में हम बकरी पालन भी करें
14: जी,
15: क्योंकि हमारे यहाँ झापा जिले में एक तो खूब बड़े बड़े किसान नहीं है, रकबा जमीन का छोटा है
14: जी,
15: तो कम संसाधन में अधिक से अधिक हम उसकी आय को बढ़ा सके ऐसा कोई प्रयोजन हो तो उसके लिए लाभदायक।
14: जी जी।
15: तो बकरी के लिए कोई चारा पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है।
14: जी जी।
15: है ना?
14: जी सर।
15: घर में ही अपन रख सकते हैं।
14: जी सर।
15: और बकरी के लिए खासकर हम लोग पालन करते हैं, बकरी पालना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे झाबुआ जिले के हर किसान के घर में बकरियां पाई जाती है।
14: जी जी।
15: हर किसान हमारा बकरी पालता है क्योंकि वो उसकी एक प्रकार से छोटी सी बैंक है, उसको जब आर्थिक कोई परेशानी होती है तो तुरंत बकरी पकड़ के ले जाता है और बेच के
14: हाट में बेच के अपना रोजगार अपना पैसा।

0: साल की उसी से होती है।
1: जी जी।
0: पर कुछ चीजें ऐसी है जिसमें जो हमारा पशुपालक बकरी पाल रहा है उसमें और बेहतर हो सकता है, उसको अधिक आमदनी हो सकती है उसी में।
1: हाँ,
0: कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत।
1: जी जी।
0: उसके लिए सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो मैंने देखा है जो बकरियों का रख रखाव है वो तो काफी अच्छे तरीके से लोग करते हैं, क्योंकि दूसरी जगह तो लोग बाहर बाड़ों में बांध देते हैं, एक तरफ रखते हैं। हमारे यहाँ तो किसान भले बाहर सोएगा और उसको घर के अंदर रखे,
1: बकरी को घर में रखे।
0: कुछ तो परिवेश, हमने यहाँ की स्थितियां भी ऐसी है कि रात में कोई चोरी चमारी भी हो जाती, इससे सेफ्टी के उद्देश्य भी, सुरक्षा के उद्देश्य भी रखता है।
1: जी जी।
0: इसलिए वो बढ़िया सूखी जगह में रखता है, मैंने देखा, कच्ची जगह में भी रखता है। और दूसरा हमें ये पहलू एक दूसरा देखें तो वर्तमान में हमारे पास चरणों की भूमि का रकबा बिल्कुल खत्म होता जा रहा है।
1: हाँ।
0: अतिक्रमण हो गया है सभी जमीनों पे।
1: जी जी।
0: तो बड़े पशु चराने की जगह नहीं है।
1: हाँ।
0: तो ये छोटे पशु क्या है, छोटे मोटे पेड़ पौधे के खाके पत्तियां खाके।
1: हाँ।
0: ये बकरियों का हम पालन कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: ये तो इसलिए ये हमारे लिए काफी उपयोगी है।
1: जी जी।
0: अब हमें किसान को एक चीज बताने की आवश्यकता है।
1: जी।
0: कि जो पशुपालन में जो हम साथ साथ में जो बकरी पालन कर रहे हैं तो हम जो देशी नस्ल की पशु कर रहे हैं या जो हमारी बकरी की नस्ल है वो कोई विशेष अच्छी नस्ल नहीं है।
1: हाँ, जो उत्पादन
0: स्थानीय है। तो अभी अब जो है फील्ड में भी हम देखते हैं कि कुछ क्रॉस बकरियां हुई है नस्ल।
1: जी जी।
0: जैसे आपको बताऊं मैं कि हमारी योजनाओं में हम सिरोही बकरे जमुनापारी बकरे देते हैं।
1: जी जी।
0: कुछ योजनाओं में सिरोही बकरियां भी दी है।
1: जी जी।
0: अब धीरे धीरे इन नस्लों का क्रॉस हुआ है।
1: जी सर।
0: तो जमुनापारी और सिरोही जो नस्लें हैं वो काफी बड़ी बड़ी बकरियां होती है।
1: जी जी।
0: और एक बार में दो दो तीन तीन बच्चे देती है।
1: जी।
0: दो तो देती ही।
1: जी।
0: और दूध भी इतना अच्छा देती है कि वो उनके बच्चों का भी लालन पालन हो जाता है।
1: जी।
0: और हमारे छोटे परिवार में उसके बच्चों के लिए या चाय के लिए दूध की व्यवस्था
1: भी हो जाती है।
0: और बकरी हमारी ऐसी है कि जब जैसे पकड़ो उसको पेड़ पकड़ के दूध निकाल।
1: जी सर।
0: गाय बैल भैंस तो एक समय पे दूध देते हैं सुबह शाम।
1: जी।
0: बकरियां ऐसी है हमारी की वो कभी भी दूध पकड़ा और दूध निकाल लिया। तो अब क्या होता है कि जैसे हम इससे अधिक से अधिक लाभ कैसे ले सकते हैं।
1: जी सर।
0: तो एक तो इसमें कोई बड़ा ही लागत चारे पानी घुसे की नहीं
1: है, ज्यादा काटी नहीं
0: है ना। दूसरा एक ये है कि हम जो हमारे घर में जो बकरियां हैं उसको अच्छी नस्ल की पाले, जमुनापारी सिरोही आदि नस्लें जो अच्छी है, उससे क्या होगा कि हमको आमदनी ज्यादा होगी। और दूसरा दो दो बच्चे देगी।
1: हाँ, डबल आमदनी।
0: दूसरी बात ये है कि जैसे अभी हमारे यहाँ जागरूकता अब धीरे धीरे फैल रही है कि जैसे ही बकरे होते हैं बच्चे जो, एक तो बकरा या बकरी होता है।
1: हाँ।
0: तो बकरों को हमारे यहाँ चिमटा लगवाने की परंपरा कम है।
1: हाँ, हाँ, वाद्या
0: नहीं करते।
1: जी जी।
0: क्योंकि उतनी समझदारी
1: नहीं। जी जी।
0: जो समझदार है गोटरी फार्म चला रहे हैं वो तो कर ही देते हैं, हमको तो कुछ कहने की जरूरत पड़ती
1: है। जी, जी।
0: पर हमारा ये संदेश हम चाहते हैं घर बकरी पालक तक जाए।
1: जी सर।
0: क्योंकि अगर वो उसको चिमटा लगवा लेगा, वाद्या करवा देगा,
1: जी,
0: तो वो कम समय में अधिक से अधिक वजन कर लेगा,
1: कवर कर लेगा और उसका मूल्य
0: अगर, हाँ, अगर ज्यादा वजन अच्छा फेटी बकरा बना वजनदार तो उसको कीमत उसकी अच्छी मिलेगी।
1: अच्छी मिलेगी
0: तो उसको अधिक से अधिक लाभ होगा।
1: जी।
0: दूसरा एक ये है कि जो बकरियों का रखरखाव के साथ साथ
1: जी जी
0: कुछ इनकी बीमारियां जो है।
1: हाँ।
0: इससे भी हमने देखा कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है।
1: जी।
0: कई कई कई बार क्या होता है कि पूरे घर में बकरियां पूरे पूरा
1: एक साथ
0: खत्म हो जाती।
1: जी जी।
0: तो उसमें मेन जो इनकी संक्रामक बीमारी है वो है हमारी पीपीआर पीपीआर नामक बीमारी है, जिसमें दस्त भी लग जाते हैं, निमोनिया भी हो जाता है, आवाज भी बैठ जाती है, आंखों में सूजन आ जाता है, ऐसे
1: लक्षण
0: दिखते हैं और खत्म हो जाते हैं।
1: जी जी।
0: तो ये पीपीआर नाम की जो बीमारी है
1: जी जी।
0: इसका टीका हमारे यहाँ पशुपालन विभाग की ओर से निःशुल्क रूप से किया जाता है।
1: जी जी।
0: और इसका टीका एक बार जीवन में लगा लिया दूसरी बार जरूरत ही नहीं पड़ती।
1: जी जी।
0: तो
1: सर, ये टीका जो लगता है जो बकरियों में कौन सी आयु में लगता है सर?
0: ये तो हम 4 महीने 5 महीने के बाद

0: रोक्समिया का वैक्सीन आ गया है
1: जी जी जी,
0: तो वो भी हर 6 महीने में लगता है,
1: 6 महीने में एक बार।
0: हाँ, तो वो भी हमारे जो बकरियां हैं उनको हम बिल्कुल अपने पास जो भी नजदीकी अस्पताल है वहां जाके संपर्क करके इस वैक्सीन को लगवा लें।
1: जी सर,
0: वैक्सीन बहुत बड़ी सुरक्षा है
1: जी,
0: ये हमें बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि हम समझते हैं नहीं, और कभी जब ऐसी बीमारियां चलती है तो फिर हमारा बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो
1: जी, एक साथ मर जाते,
0: एक साथ मर जाते
1: जी।
0: तो वैक्सीनेशन हमें बहुत जरूरी करवाना है। बाकी दूसरा जो सीजनली कुछ चीजें हैं, जैसे अभी बारिश में जैसे ये मुंह में होठों पे घाव हो जाते हैं,
1: पांव में भी हो जाता है,
0: वो जिसको कंटीजियस एक्थाइमा कहते हैं
1: जी जी।
0: तो इसमें क्या है, जैसे हमारा पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह से मुंह धो, एंटीसेप्टिक मलम आते हैं उनसे अपन लगाओ करो, तो वो
1: पका मुंह पका,
0: तो उसमें अपन जाके अस्पताल के पास जो भी नजदीक है वहां जाएंगे तो अपना इलाज बराबर हो जाएगा। अभी जैसे बरसात के समय में इसके साथ साथ में पैरों की सड़न हो जाती है
1: जी जी,
0: गीले में चलती है कीचड़ में बकरी, तो उसमें भी घाव वगैरह हो जाते हैं, कभी कभी वो जंतु वंतु रख जाते हैं, वो दिक्कत आ जाती है
1: जी जी।
0: तो उसके लिए भी हम पोटेशियम परमैंगनेट से उसको पेट को धोके सूखी जगह में
1: लाल दवाई
0: के
1: जी जी,
0: और जो भी अस्पताल में जाके एंटीसेप्टिक मलम वगैरह लेके उसका इलाज करवा लेंगे तो वो भी कवर हो जाए, वो संक्रामक नहीं
1: मतलब फैलने वाला नहीं।
0: जो कॉन्टेजियस संक्रामक बीमारियां ऐसी रहती जो एक के दूसरे से संपर्क से,
1: हाँ, उनके टीके लगते हैं
0: जो पीपीआर और इंट्रोटॉक्सिन, ये अपने जीवन काल में पशुओं को बहुत जरूरी है
1: जी जी।
0: अगर इससे हम बचा लेंगे तो हमारा कोई नुकसान आर्थिक नहीं होगा।
1: सर, बकरियों को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देने के लिए और उनको आहार कैसा देना चाहिए प्रतिदिन? जैसे
0: आहार के लिए ऐसा है, हमारे यहाँ क्या है, वैसे तो बकरियों को खूब बड़ा दाना पानी लगता नहीं है, पर जैसे हमारा कोई बकरी गाभिन है तो कम से कम हमारे यहाँ बकरियों का जो गर्भकाल होता है वो 5 महीने का
1: होता है,
0: 5 महीने 150 दिन का
1: जी जी,
0: 150 से 160 दिन ज्यादा 55 दिन, तो हाँ, कम से कम जो हमारा गाभिन पशु है उसको हम कम से कम 2 महीने पहले
1: चरने जाने से रोक लेना चाहिए,
0: हाँ, उसको अलग रख ले
1: जी,
0: उसका बांधना बैठना उठना अलग करें और उसको दाना चालू कर दे 200-250 ग्राम
1: प्रतिदिन
0: के हिसाब
1: जी,
0: तो वो जो हमारा उसका जो आने वाले बच्चों के लिए वो जो उसके उसका अडर बनेगा उसका दूध की वो जो तैयारी है उस हिसाब से उसका दूध का उत्पादन बढ़ेगा, उसके शरीर की आवश्यकता पूरी होगी
1: जी जी,
0: तो बच्चे भी अच्छे बनेंगे उसके, तो वो जरूरी है अपने उससे अपने को उत्पादन अच्छा मिलेगा
1: जी सर।
0: और प्रोजनी जो आएगी बच्चे वो वजन भी अधिक समय में कम समय अधिग्रहण करेंगे
1: जी जी,
0: तो आर्थिक लाभ भी हमको अच्छा होगा उससे।
1: तो सर जी ये बताइए कि अगर हमारे किसान भाई पशुपालन विभाग से, अगर जिनके पास आर्थिक स्थिति से कमजोर है, तो ऐसे किसानों को जैसे हितग्राही को पशुपालन विभाग या सरकार से क्या क्या दिया जाता है सर?
0: हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका
1: जी।
0: पशुपालन विभाग से हमारी बकरी की योजना लागू है जिसमें 10 बकरी देसी
1: जी
0: और एक बकरा उन्नत नस्ल का,
1: उन्नत नस्ल,
0: तो 10 बकरी और एक बकरे की एक इकाई कही
1: जी जी,
0: और इसकी कीमत कम से कम पूरी इकाई लागत जो है वो 77,000 रुपए के लगभग
1: है।
0: तो इसमें हमारे आदिवासी और हरिजन जो किसान है उनके लिए 60% की सब्सिडी
1: अनुदान है,
0: अनुदान
1: जी जी,
0: करीब 45,000 के आसपास है
1: जी,
0: 77,000 के ऊपर जो भी बने उसका 60%, और सामान्य वर्ग के लिए 50%।
1: तो सर जी ये बताइए कि उसमें हमारे किसान भाई के पास क्या क्या होना चाहिए या जमीन होना चाहिए क्या?
0: नहीं, इसके लिए कोई ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं है, पर ये जो योजना है
1: जी
0: वो बैंक से संबंधित है
1: जी जी,
0: हमारी सब्सिडी के साथ साथ
1: बैंक का लोन देगी।
0: अब अगर हमारे हितग्राही का कोई कहीं से खाता वाता डिफॉल्टर हो,
1: हाँ,
0: कोई कर्ज बाकी हो,
1: हाँ,
0: तो ये हमें इसका लाभ लेने में दिक्कत
1: आएगी,
0: हाँ। इसीलिए हमारे बैंक का कोई लोन ना हो, हमारा बैंक का क्रेडिट अच्छा हो,
1: ऐसा किसान उसका लाभ ले,
0: ऐसा किसान इसका बराबर लाभ ले सकता है, बिना बैंक के सेंक्शन किए इस योजना का लाभ उसको हम नहीं दे सकते।
1: सर, बकरी पालन के अलावा भी हमारे यहाँ पे पशुओं पे जो दुधारू पशुओं को बढ़ावा देने के लिए जैसे डेयरी पालन है या अन्य छोटे जो इकाई है ऐसी कोई दी जाती है?
0: हाँ, उसमें दी जाती है ना, 4 पशु पांच पांच पशु या दस पशु, दो इकाई है आचार विद्या सागर योजना,

0: जी जी
1: उसमें गाय पालन और भैंस पालन दोनों का है
0: जी जी।
1: गाय में अपन जर्सी एचएफ भी पाल सकते हैं, गीर साहिवाल वगैरह देसी नस्ल की भी पाल सकते हैं
0: जी जी।
1: तो भैंसों में भैंसों का ही वो भी 5 और 10 की इकाई
0: जी जी।
1: तो अपन जो चाहे 5 पशु की इकाई के लिए उसमें 1 एकड़ जमीन की जरूरत है
0: हाँ।
1: और 10 पशु के लिए 2 एकड़ जमीन
0: 2 एकड़।
1: और जो हितग्राही जिसके नाम से अपन योजना का लाभ लेना चाहे
0: हाँ।
1: जमीन उसी के नाम की
0: होना चाहिए
1: और वही है वो बैंक से संबंधित है
0: हाँ।
1: जब तक फिर उसका बैंक का व्यवहार अच्छा होगा
0: हाँ,
1: तो बैंक उसको लोन कर देगी
0: जी जी।
1: इसमें आदिवासी हरिजन लोगों के लिए 2 लाख के लगभग है अधिकतम
0: जी जी।
1: और इसमें सामान्य वर्ग के लिए 1.5 लाख
0: जी।
1: ये हमारी लिमिट है
0: जी।
1: और जब तक बैंक सेंक्शन नहीं देगी तब तक इसका लाभ किसी पशुपालक को नहीं मिल पाएगा।
2: सर जी बताइए कि जैसे हमारे किसान भाई अधिकतर लोन लेकर करते हैं या फिर किसानों के पास में घर पे भी देसी गाय और बैल भैंस होते हैं और बकरियां भी होती है, तो क्या सर इनका बीमा करवाने के लिए शासन के पास कोई इसकी योजना है?
1: हाँ, शासन के पास बीमा की भी योजना है
0: जी जी।
1: क्योंकि आजकल हमारा पशु काफी महंगा हो गया
0: जी,
1: इसलिए शासन ने पशुधन बीमा योजना लागू करी है
0: जी जी।
1: जिसमें सब्सिडी 70% तक
2: 70% तक
1: 1 साल का बीमा होता है
0: जी।
1: और 3 साल का बीमा होता
0: जी जी।
1: ये उसका प्रावधान है
0: जी।
1: और इसकी जो वो लगती है अपनी प्रीमियम
2: जो राशि है
1: राशि लगेगी हाँ बीमा राशि लगेगी
0: जी जी।
1: उसका
2: किसान भाई को देना,
1: किसान भाई को उसकी कीमत के अनुसार
0: जी जी
1: जो राशि बनेगी उसके केवल 70% उसकी राशि उसको देना है, बाकी 30% उसको खुद को देना। मतलब ये है कि जैसे 100 रुपए की मान लो बीमा की किस्त बन रही
0: हाँ।
1: उसका प्रीमियम बन रहा
0: जी जी,
1: तो 30 रुपए उसको देना है, 70 रुपए गवर्नमेंट मिलेगी,
2: 70 रुपए गवर्नमेंट देगी,
1: तो उसमें अपनी रिस्क कवर हो जाती
0: जी जी।
1: तो उसमें हम हमारे पशु को बीमित रखें
0: हाँ।
1: उसमें 10 बकरियों की 1 इकाई गिनी गई
0: जी जी,
1: तो हम 50 बकरी तक का बीमा कर सकते हैं
0: जी जी।
1: और पशु बढ़ा लेंगे तो केवल 5 लाख
0: जी जी।
1: तो ये भी बहुत अच्छी स्कीम है और ये भी सभी को पता होना चाहिए
0: जी जी।
1: क्योंकि समय निकल जाता है और मान लो जैसे हमारे पास 10 पशु है, 10 बकरियां है
0: जी जी।
1: अब मान लो कोई 2 बकरी भी मर गई तो हमारा बीमा उससे कवर हो जाता है, हमारी लागत यूं भी वसूल हो जाती
0: जी जी।
1: तो जानकारी के अभाव में हम बीमे का भी लाभ नहीं ले पाते
2: हैं। तो सर जी हमारे यहाँ पे बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि उनके पास 2 बैल तो होते ही हैं लेकिन उन 2 बैलों का भी बीमा नहीं करवाते हैं, तो सर जी बीमा करवाने की जो प्रक्रिया क्या है?
1: बीमा प्रक्रिया कोई ज्यादा जटिल नहीं है
0: जी जी।
1: आजकल सब क्या है ऑनलाइन ऐप के माध्यम से होता है
0: जी।
1: इनके बकरी वो बीमा के एजेंट रहते हैं
0: हाँ।
1: उनके द्वारा नियुक्त होते हैं
0: जी,
1: जो प्राइवेट कंपनियां करती है
0: जी जी।
1: जो शासन से बीमे के लिए अनुबंध करते हैं साल के लिए, 2 साल के लिए, जो भी हो जैसा भी अनुबंध शासन से हो जाए
0: जी जी।
1: वो उनके एजेंट रखती है और जो हमारे विकास खंड स्तर पर जो पशु चिकित्सक है
0: जी जी,
1: पशु चिकित्सा अधिकारी है
0: जी जी जी।
1: वो इनका बीमा करते हैं
0: जी सर।
1: या पशु चिकित्सालय जहाँ पर है वहाँ पे हमारे पशु चिकित्सक सर्जन की पोस्ट होती है
0: हाँ।
1: वो बीमा करते हैं,
0: बीमा करते हैं।
1: और नहीं तो अपने विकास खंड में जाए सीधे
0: जी।
1: और वहाँ जो अपने चिकित्सक है उनसे बात करें
0: हाँ।
1: तो अपना आधार कार्ड नहीं है, आजकल आधार कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट
0: है,
1: और अपने बैंक की पासबुक
0: जी,
1: ये चीजें लगती है। और उसमें एक अपना जैसे आदिवासी या जो भी हो अपनी कैटेगरी के लिए एक वो प्रमाण पत्र मिल जाए
0: हाँ,
1: उसमें क्या सब्सिडी कुछ अंतर रहता
2: है स्थायी जाति प्रमाण पत्र से
1: हाँ, तो वो मिल जाए तो वो उसका लाभ हम ले सकते
0: हैं।
1: तो ये मेरा सभी से अपील है कि अपन सभी अपने पशुओं का अधिक से अधिक बीमा करवाएं और अपने नजदीकी जो भी अस्पताल है वहां जाके अपन संपर्क करें और इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लें
0: जी जी।
2: तो किसान भाइयों अभी बकरी पालन एवं पशुपालन के संबंधित हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर के एल डामोर साहब, और डामोर साहब ने बहुत अच्छी पशुपालकों को हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी। तो किसान भाइयों ऐसी जो जानकारी जो आपको दी है ज़रूर आप उनका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। और सर जी हमारे स्टूडियो में आए श्री डामोर साहब को और रेडियो पर सुनने वाले सभी किसान भाइयों को नमस्कार।
1: नमस्कार,
3: हूँ से आरजे राकेश
4: अने हूँ से आरजे कमता डामोर
3: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती वाड़ी आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। તો ચાલો કિસાન ભાઈઓ હાવ લઈએ એક નાનો બ્રેક, અને બ્રેકમાં આપું હામળવાના છે આપણા આદિવાસી ભીલ સમુદાયમાં જબ લાડ લાડિયા પૈણે અને તીનમાં જો ગાવે તું ઘણું મજાનું, અને અસલ ગીત હામળીને પાછા ભેળા થા હું કાર્યક્રમ ખેતીવાડીમાં જાજુ મધી કહીતા હામલતા રેજો ઝાબવાની આવાજ પર સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM.

0: किसान साथियों, मुर्गी पालन हारू पोल्ट्री फार्म गांव या शहर थी थोड़ी दूर बनावानो तिनथी कईना भी लोगों या किसी आसपासना मोहल्ला वालान भी परेशानी नहीं थाई सके। कड़कनाथ पोल्ट्री फार्म हारू नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कईना भी कड़कनाथ मुर्गी पालन केंद्र थी प्रशिक्षण प्राप्त करी सके। अगर आप इना बारा मा बिल्कुल ही नी जानकारी राखी सके तो स्वच्छ सुजान ने भी आप मुर्गी फार्म शेड मा राखी सके। कहीं भी बीमारी ग्रस्त सुजान ने मुर्गियों ने अलग राखी सकी। कड़कनाथ मुर्गी फार्म शेड मा ऊंचाई पर बनाओ जाए ताकि पानी नो जमाव इनमा इनी समस्या नहीं आवी सके। बारिश या अन्य कारण कड़कनाथ मुर्गी फार्म मा प्रकाश अने पानी नी उचित व्यवस्था राखवानी अने समय समय पर कड़कनाथ मुर्गी नी कार्रवाई करतु रेवानु वैक्सीनेशन इने हारू कईना भी प्रकार ना डॉक्टर या कृषि विज्ञान केंद्र थी जानकारी लेवानी अने केरे अने केतरा समय बाद इनान वैक्सीन लगाड़वाना से अने आपड़ो फार्म बड़ो थाया बाद मा इनी आवश्यकता ने अनुसार कर्मचारी थी भी आपनु संपर्क राखी सकी। तो किसान साथियों, में हमने तुमन कड़कनाथ मुर्गी ना बारा में जानकारी हमला भी। तो किसान साथियों, हाँ आर जे कमता डामोर ने इजाताल जो अने हमला वाला हगला किसान भाई ने कमता डामोर की तरफ थी नमस्कार।
1: तो किसान भाइयों, यो तो आज नो कार्यक्रम खेतीवाड़ी। आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में आपकी बात हमली बोकड़ा पालवानी अने कुकड़ा पालवानी। जेवी रीते आपड़ा झाबवा जिला नो जो भौगोलिक क्षेत्रफल से इनी जगह में पशुपालन घणी आसानी देखू पड़े से, केम की इना क्षेत्र में सरवानी असल जगह से अने जलवायु पण ताजी मळे से। तो किसान भाइयों, आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में आपुन जो बोकड़ा पालवानी वातो वताड़ियो डॉक्टर श्री एकेल डामोर, पशु विशेषज्ञ अने अतिरिक्त उपसंचालक पशुपालन अने डेरी विभाग झाबवा देखी। हाथे हाथ आपु कुकड़ा पालवानी वातो हामळियो कृषि विज्ञान केन्द्र झाबवाना सहयोग देगी। बड़ी बातें बताड़ियो मारा सहयोगी भाई कमता डामोरे। किसान भाइयों, हम रोज तमारी हारू एवा असल थी असल खेतीवाड़ी ना कार्यक्रम लावी से अने आशा पण करी से कि हमारा झाबवा जिला ना किसान भाई ये बड़ी बातें हामले अने आपड़ी खेतीवाड़ी मा आगाड़ी बढ़े अने असल मोटो मुनाफो कमाई सके। आज हारू बस एतरी वात, केम की हाव समय थाई गयो से बीजा कार्यक्रमो नो। हूँ आरजे राकेश लू से तमारी देखी इजाजत, पण तमु जाजो मती कहता हामलता रहेजो झाबवानी आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM पर तमारा रेडियो हतवार आरजे राकेश नी हाते।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, जहां हम आपको मिलवाते हैं उन व्यक्तित्वों से जिन्होंने अपने हुनर, मेहनत और संवेदनशील सोच के साथ समाज में अपनी अलग पहचान बनाई है। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी युवा और बहुआयामी मीडिया प्रोफेशनल जिन्होंने रेडियो जॉकी, वीडियो एंकर, कंटेंट राइटर और कॉपी राइटर के रूप में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। अपनी आवाज, शब्दों और रचनात्मकता के माध्यम से इन्होंने न सिर्फ लोगों तक जानकारी पहुंचाई बल्कि भावनाओं को भी खूबसूरती से अभिव्यक्त किया है। मीडिया, डिजिटल कंटेंट, रेडियो और सामाजिक मुद्दों पर इनकी समझ बेहद गहरी और प्रभावशाली है। तो आइए स्वागत करते हैं संध्या यदुवंशी का। संध्या जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। इट्स अ ऑनर फॉर मी कि मैं यहाँ आई हूँ और मैं अपनी कुछ बातें शेयर कर पाऊंगी आपके साथ में।
1: तो चलिए संध्या जी, ऐसा करते हैं, शुरुआत से शुरुआत कर लेते हैं। कुछ मैं सोचता हूँ कुछ छोटी सी संध्या से मिलाइए हमें, जो थोड़ी नटखट थी, चंचल थी या शैतान थी बचपन में, कुछ अपने बचपन के जीवन के बारे में बताइए।
2: सर, बचपन से ही मेरा जो है स्वभाव बहुत ज्यादा मतलब चंचल नहीं था, मैं थोड़ी सी शांत और उस तरह की ज्यादा थी। और अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो शुरुआत से ही मेरा रेडियो और फिल्म्स में, इन चीजों में मेरा ज्यादा मन लगता था। मेरे मम्मी पापा भी कहते थे कि अरे दिन भर टीवी ही देखती रहती है, और तो हाँ बचपन से ही कह सकती हूँ कि इस चीज में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट था।
1: अच्छा, तो मतलब बचपन में बोलना, लिखना, रेडियो सुनना, टीवी देखना या कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह में भी आपको इंटरेस्ट था? स्कूल या कॉलेज में कभी कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है?
2: हाँ हाँ, मतलब मैं किया करती थी, जैसे कि नाटक जो हमारे स्कूल में पहले हुआ करते थे, हम 26 जनवरी 15 अगस्त ऐसे टाइम पे जब नाटक किया करते थे, उन चीजों में। उसके बाद में कॉलेज में आने के बाद तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया था, जयपुर में थिएटर मंच है, रंगमंच है, तो मैं वहां पे भी मैंने काम किया है कुछ टाइम तक। तो हाँ, इन चीजों में मेरा शुरुआत से काफी ज्यादा इंटरेस्ट था।
1: अच्छा अच्छा, तो जयपुर में कोई खास ऐसी याद आपको अपने थिएटर के दिनों की, कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा साथ है, कोई ऐसा साथी जिसके साथ आपने थिएटर किया हो, कोई ऐसी घटना याद है तो बताइए।
2: सर, जयपुर में जब मैं थिएटर में थी तब शुरुआत ही थी, मैं कॉलेज में थी और ऐसे रहता है कि हाँ भाई कुछ नई चीजें सीखनी है, कुछ नई चीजें करनी है। तो जयपुर का जो वहाँ का जवाहर कला केंद्र है, हम वहाँ के कुछ में ग्रुप से जुड़ी, राजीव आचार्य सर हैं जो वहाँ पे एक ग्रुप चलाया करते थे, थिएटर ग्रुप, तो उनके साथ मैंने काम किया, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और बहुत सारे लोग और भी मिले, एक नई इंडस्ट्री वहाँ पे मुझे जानने को मिली, तो हाँ वो एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था मैं कह सकती हूँ।
1: नहीं, जवाहर कला केंद्र हमेशा से ही थिएटर का और कल्चरल एक्टिविटीज का एक सेंटर रहा है जयपुर में।
2: रविंद्र मंच पे भी बहुत नाटक होते हैं, तो वहाँ पे भी मैंने कई सारे नाटक उन्हीं के ग्रुप के साथ में परफॉर्म किए हैं।
1: अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब थोड़ा चलते हैं अपनी रेडियो की दुनिया की तरफ। तो मीडिया या रेडियो की दुनिया में आने की इंस्पिरेशन आपको कैसे मिली? कोई ऐसा घटना थी या कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट था जिससे आपको लगा कि मैं रेडियो से जुड़ जाऊं या मीडिया की दुनिया से जुड़ जाऊं?
2: सर, बचपन से ही मेरे मम्मी पापा भी कहते हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी तब से ही मुझे टीवी देखना बहुत पसंद था। मतलब मैं दिन भर टीवी देखा करती थी बैठ के। फिर मैं जैसे जैसे बड़ी हुई तो टीवी के साथ साथ फिर घर में रेडियो था, तो फिर मैं रेडियो भी सुनने लगी। तो वो एक मतलब वो एक ऐसा इंटरेस्ट था जो मुझे पता नहीं था कि ये आपके जॉब में भी बदल सकता है शुरुआती दिनों में, क्योंकि मैं बरेली के एक छोटे से गांव से हूँ, तो वहां पे एजुकेशन के जो नई चीजें हैं वो इतना नहीं पहुंची थी उस टाइम पे। अब तो फिर भी काफी इम्प्रूवमेंट है। तो मुझे ये नहीं पता था कि इस शौक को, इसको आप अपना एक काम भी बना सकते हैं। तो वो बस इंटरेस्ट था। और इसके पीछे एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है कि मैं इस लाइन में आई कैसे। मैं स्कूल में थी, 12th क्लास में थी, तो किसी नए कॉलेज का ऐसे होता है अक्सर कि लोग प्रमोशन करने स्कूल्स में जाते हैं, क्योंकि जो 12th के बच्चे होते हैं उन्हें आगे ग्रेजुएशन करना होता है।
1: सही बात।
2: तो उन्होंने वहां पे वो रैंडम बता रहे थे कि हमारे यहाँ ये कॉलेजेस हैं, आप आगे ये करियर ऑप्शंस ले सकते हैं। तो वहां उन्होंने मुझे बताया कि मास कम्युनिकेशन जैसा कुछ होता है।
1: अच्छा।
2: और आप इसमें मीडिया की चीजें सीखते हैं, न्यूज चैनल सीखते हैं, फिल्मों के बारे में आप सीखते हैं, रेडियो होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे ये मेरे लिए ही बना है, कि मतलब मुझे ये सारी चीजें बहुत पहले से ही पसंद थी और मुझे बस पता नहीं था कि इसको आप एज करियर ऑप्शन भी ले सकते हो। तो वहां से ये चीज मुझे पता चली। और फिर उसके बाद मैंने फिर पापा को बोला कि मुझे ये करना है, तो फिर पापा ने मुझे उस चीज के लिए, मास कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे जयपुर भेजा। तो ऐसे करके मेरे इस जर्नी की शुरुआत हुई। तो ये एक कोइंसिडेंस ही है, आप जो भी आप कह सकते हैं। तो हाँ,
1: तो चलिए आप, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आप बरेली की रहने वाली हैं। बरेली का तो हर तरह से नाम भी है, तो ऐसा करते हैं बरेली के नाम पे एक गाना सुन लेते हैं हम, और आपकी मीडिया की शुरुआत भी हो गई और आपके पापा ने आपको जयपुर भी भेज दिया। तो पहले बरेली के नाम पे गाना सुनते हैं और फिर आगे बातचीत को जारी रखते हैं।

0: कैसे जुड़ा हुआ रेडियो से आपका, रेडियो कैसे आपकी जिंदगी में आया?
1: सर, रेडियो मेरी जिंदगी में पहले ही था। जब मैं अपने घर पे थी तो आप ऐसे कह सकते हो कि जब जितनी देर मुझे सोना रहता था या जितनी देर मैं स्कूल में हूँ उतनी ही देर मैं रेडियो से दूर थी। घर आने के बाद सोने से पहले तक मैं सारे शोज उस टाइम पे सुना करती थी। अन्नू कपूर जी का शो आया करता था और भी बहुत सारे शोज थे उस टाइम पे आते थे तो मुझे बहुत पसंद थे सब सुनना। तो लेकिन जब मैं कॉलेज में आई और मैं वहां पे जब ये सारा एजुकेशन मेरा चल रहा था तो वहां पे मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेडियो की तरफ ही था। और वहीं पे मैंने पहली बार रेडियो को एक होता है ना टेक्निकल वे में समझना शुरू किया। तो ऐसे करके मेरा रेडियो से कनेक्शन शुरू हुआ था।
0: चलो, अच्छा, आप हमें क्या अपनी उस अनुभव को बता सकती हैं, या जब आपने पहली बार माइक के सामने बैठी होंगी, आपने कुछ बोला होगा, माइक में वो रिकॉर्ड हुआ होगा या ब्रॉडकास्ट हुआ होगा, तो कोई कोई वो अनुभव है आपका, ऐसा माइक के सामने बैठने का पहला अनुभव कैसा था?
1: सर, पहला अनुभव बहुत ही नर्वसनेस वाला था
0: अच्छा,
1: और मैं कह सकती हूँ फेल्ड भी था, क्योंकि आप किसी चीज को सुनते हो, पसंद करते हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वो चीज कर भी सकते हो। तो ऑब्वियसली पहला अटेम्प्ट काफी नर्वसनेस और वो, तब मेरे टीचर्स ने मुझे गाइड किया, समझाया, वॉइस से रिलेटेड चीजें बताई, कॉन्फिडेंस दिया, तो उसके बाद में ये चीज शुरू हुई। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस है तो कॉलेज रेडियो का ही था, जहाँ पे हम सब अपना एक प्रैक्टिस किया करते थे और अपना एक कॉलेज वाला रेडियो स्टेशन चलाया करते थे। ऐसा
0: अच्छा, कॉलेज में रेडियो स्टेशन था। ओके,
1: जी।
0: तो वैसे अब थोड़ा बताओ, रेडियो जॉकी के लिए क्या क्या क्या खास चीजें हैं जो आपको बताई, आपने अनुभव से सीखी है? आवाज अच्छी होनी चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए, या जो भाषा बोलते हैं वो, इनमें क्या किस तरह का सामंजस्य होना चाहिए, कुछ इसके बारे में बताइए।
1: सर, ये जो भी आपने बताया ये इन सारी चीजों का एक मिक्स एंड मैच ही होता है। अगर आप रेडियो जॉकिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले आप एक जो बेसिक स्किल है वो ये होना चाहिए कि आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो भी आप कह रहे हैं वो आपके शब्द हैं वो क्लियर हो, आपकी भाषा हिंदी है या अंग्रेजी है। वैसे रेडियो में जो है एकदम क्लियर भाषा नहीं चलती, हमारी बोलचाल की भाषा में ही हम बात करते हैं, पर आपके शब्द क्लियर होने चाहिए। और दूसरा ये कि समझ आज के टाइम पे क्या चल रहा है, अब तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, लोग हर छोटी बड़ी चीज पे अपना ओपिनियन रखते हैं, तो अगर आप रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं तो आपका ओपिनियन उनसे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा बिगर पर्सपेक्टिव आपका होना चाहिए। तो और भावनाएं तो सच में जरूरी है, क्योंकि जब आप कोई बात कहें तो वो दूसरे के दिल तक पहुंचे, तो आपकी जानकारी और आपकी भाषा के साथ आपकी भावना भी बहुत जरूरी है, ताकि वो जो भी आप कह रहे हैं वो लोगों के दिल तक पहुंच सके, लोग उसको माने कि हाँ जो आप कह रहे हो उन्हें मानना चाहिए या जो आप कह रहे हो वो सही है।
0: बहुत बढ़िया बात कह दी श्रोताओं, कितना खास अच्छी तरह से इन्होंने समझाया हमें कि रेडियो जॉकी की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर विशेषताएं होनी चाहिए। तो भावनाएं जिस फील के साथ वो कह रहा है वो संप्रेषित होनी चाहिए श्रोताओं के लिए, ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बताई है। और अच्छा, चलिए आप थोड़ा सा हम शिफ्ट करते हैं, आपने वीडियो एंकरिंग भी की है, तो इन दोनों में
1: जी
0: क्या फर्क है, रेडियो और वीडियो एंकरिंग में आपको क्या सबसे ज्यादा फर्क नजर आता है?
1: रेडियो इट्स ऑल अबाउट योर वॉइस, मतलब यहाँ सब कुछ आपकी आवाज के बारे में है। आप अपनी आवाज से ही लोगों को एक इमेजिनेशन देते हैं, जो भी आप कह रहे हैं लोग उसे इमेजिन करते हैं। लेकिन जब आप स्क्रीन के सामने होते हैं तब आप खुद एक विजुअल होते हैं उनके लिए, तो उस वक्त आपको अपनी आवाज के साथ साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी दूसरी चीजों पे भी ध्यान देना होता है, ताकि लोग आपसे बेटर तरीके से कनेक्ट कर पाए। और मेन तो यही है कि आपको अपनी पर्सनालिटी

0: और इन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जब आप वीडियो के थ्रू लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, और आवाज के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं तो फिर वहां पे सिर्फ आपको आपकी आवाज से लोगों को इमेजिन कराना है जो भी आप कह रहे हैं।
1: बिल्कुल सही बात। तो आपको तो जब वीडियो एंकरिंग करती होगी तो आपको अपनी ड्रेस का, अपने हाव भाव का, अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस का, इन सब का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा ना।
0: जी जी बिल्कुल, इसमें आपका ग्रूमिंग जो भी आपकी है वो बहुत जरूरी है। और मेरे को लगता है कि अगर आप वीडियो के लिए काम कर रहे हैं तो आपकी ग्रूमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके अलावा आपको कैमरा एंगल्स का भी पता होना चाहिए कि जब आप एक कैमरा पे बात कर रहे हो तब आप कहाँ देख रहे हो, क्योंकि उस वक्त आप यहाँ वहां नहीं देख सकते, जहाँ कैमरा है आपको वहीं देखना है ताकि ऑडियंस को लगे कि आप उनसे ही बात कर रहे हैं। तो कैमरा आपके लिए एक तरीके से उस वक्त ऑडियंस हो जाता है जिससे आपको कनेक्ट करना होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो वीडियो एंकरिंग में ज्यादा ध्यान रखनी पड़ती हैं।
1: नहीं सही बात है। देखिए हम सब लोग अमीन सयानी साहब के फैन रहे हैं, मैं वैसे ही ऑफ द कफ बात कर रहा हूँ। तो अमीन सयानी साहब की जो आवाज थी वो रेडियो के लिए थी और रेडियो से ही वो पॉपुलर हुए थे। बाद में टीवी आया उनके जमाने में, लेकिन टीवी पे वो दो चार बार आए लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए। वो रेडियो ब्रॉडकास्टर ही उनकी पहचान बना, रेडियो की आवाज ही उनकी पहचान बनी। टीवी पे वो उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, हालांकि स्टेज शो वगैरह करते थे लेकिन टीवी पे उनको वो पॉपुलरिटी नहीं मिली, जबकि रेडियो के तो एक तरह से वो भीष्म पितामह माने जाते हैं। तो फर्क तो है वास्तव में। तो चलिए इसी वीडियो एंकरिंग की बात पे और इसी बात पे हम लोग रुक के एक गाना सुनते हैं और फिर बातचीत को आगे जारी रखते हैं।

0: हाँ, वेलकम बैक संध्या जी। अब हमने बात कर ली एंकरिंग की। अब थोड़ा सा आपका जो एक अलग सा फील्ड है, रेडियो से कंटेंट राइटिंग की तरह आपका सफर कैसे आगे बढ़ा, इसमें आपको इंटरेस्ट कैसे जागा, किसी ने कोई खास आपको एडवाइस दी या किस तरह से आप कंटेंट राइटिंग की तरफ आए?
1: सर, आप तो इस चीज से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे ही कि अगर आप रेडियो में हैं तो आप अपने आप में एक राइटर भी होते हैं। आप अपनी स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, सामने वाले लोगों से बात करते हैं, तो एक राइटिंग स्किल बहुत जरूरी है रेडियो के लिए। तो वो पहले से ही था जब मैं रेडियो में काम किया करती थी, बट जब कोविड का टाइम था तब उसके बाद में मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी जयपुर से।
0: अच्छा।
1: और यहाँ आके कोविड के बाद बहुत सारी चीजें हमारी जो है वो ऊपर नीचे हो गई थी बहुत सारे लोगों की।
0: सही बात।
1: तो मेरी फैमिली ने भी कहा कि तुम मतलब बहुत जयपुर उन्हें लगता था कि दूर है बरेली से, तो बोले कि नहीं तुम दिल्ली ही शिफ्ट हो जाओ। और उस तरीके का कुछ सिचुएशन था, तब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई। और यहाँ पे क्योंकि राइटिंग मुझे पसंद थी तो फिर मैंने राइटिंग शुरू की। और मैंने फिर कई अलग अलग तरीके की राइटिंग की। सबसे पहले एक हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी थी, तो वहां पे उन लोगों को राइटर्स चाहिए होते हैं फॉर योर उनके पॉलिटिकल कैंपेन्स, तो फिर मैंने वहां पे काम किया।
0: अच्छा।
1: और फिर अलग अलग तरीके के लाइक टेक इंडस्ट्री में भी कुछ टाइम काम किया उनके लिए। और फिर मैं आ गई ये जो हमारी आजकल की मॉडर्न जो राइटिंग चल रही है फॉर यूट्यूब और सोशल मीडिया, तो फिर इस चीज में मैं आजकल काम करती हूँ। और मुझे लगता है कि ये एक अलग तरीके की राइटिंग है जो अब एक डेवलप हो गई है, जो हम पहले किया करते थे उससे काफी अलग है अभी ये। तो इस तरीके से मेरा राइटिंग के फील्ड में आना हुआ और ये मुझे अच्छा लगता है। मतलब मुझे लगता है कि जितना पसंद मुझे रेडियो था उतनी ही पसंद मुझे राइटिंग भी है।
0: बड़ा इंटरेस्टिंग है ये यूट्यूब राइटिंग। और ये आप क्या करती है, कुछ थोड़ा सा हमें बता सकती है इसके बारे में, कुछ एग्जांपल देके किस तरह की चीजें लिखते हो आप, हमें भी बताइए।
1: सर, यूट्यूब और सोशल मीडिया राइटिंग की जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे जरूरी चीज है, वो ये है कि उसमें आपको वीडियो की आप शुरुआत कैसे कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। आज के टाइम पे हम कोई भी वीडियो स्क्रिप्ट हो या कोई भी सोशल मीडिया स्क्रिप्ट हो, उसके शुरुआत में हम कभी भी इंट्रोडक्शन या इस तरीके की चीजें इन्वॉल्व नहीं करते। हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि कोई एक हुक लाइन उठाएं, कोई बर्निंग लाइन उठा लें और उस पर हम शुरुआत करें और फिर हम अपना एक रेगुलर स्क्रिप्ट पे जाएं। तो ये बहुत ही चेंजेस है, वो ट्रेडिशनल राइटिंग अब यहाँ नहीं है, पर ये एक अलग तरह की राइटिंग है जो अब जाके डेवलप हो गई है।
0: अब इसी से रिलेटेड एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है, कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग, ये दो शब्द बहुत ज्यादा सुनने में आते हैं, तो कुछ बता सकती हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है एंड क्या सिमिलैरिटी है दोनों के अंदर?
1: कंटेंट राइटिंग है कि हमने किसी भी चीज के बारे में एक अच्छे से रिसर्च किया और उसकी हमने एक स्क्रिप्ट बना दी या फिर कोई आर्टिकल लिख दिया।
0: अच्छा
1: बेसिकली इट्स अ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट किसी भी चीज का। पर
0: अच्छा
1: कॉपी राइटिंग हमारी होती है एक तरीके की एड या फिर सीटीए जैसी चीजें, कि हमने कोई एड बनाया तो वो कॉपी राइटिंग में आता है बेसिकली। और जो हमारा कंटेंट होता है वो हमारी किसी भी कंटेंट की बॉडी है एक तरीके से, जिसपे पूरा प्रोग्राम जो है वो चलेगा। लेकिन कॉपी राइटिंग जो है उसका पर्पस होता है कि उस कंटेंट से किस तरीके से सेल्स की जाए, किस तरीके से चीजों को मार्केट किया जाए। तो ये डिफरेंस है कंटेंट राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग।
0: ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल। तो अच्छा, आप जैसे लिखते हो तो आपको इमोशनल, सोशल, इंस्पिरेशनल, प्रमोशनल किस तरह का कंटेंट लिखना सबसे ज्यादा पसंद है, क्या क्या आपका फेवरेट क्या है इसमें?
1: सर अगर मैं पर्सनल लेवल पे बताऊं तो मुझे इमोशनल और मोटिवेशनल चीजें लिखना पसंद है जो कि पोएटिक वे में होती हैं, और एक अपने विचार हो गए, वन लाइनर्स होते हैं, मुझे वो लिखना शुरुआत से बहुत पसंद है, रेडियो के टाइम से पसंद है। पर अब क्योंकि मैं इसको प्रोफेशनली करती हूँ तो फिर मुझे सभी तरीके की चीजें लिखनी होती हैं, मतलब इट्स लाइक अ टास्क कि आपको जो भी बताया गया है उस पर आप रिसर्च करते हैं और उस पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। अब वो सामाजिक भी हो सकता है, वो टेक्निकल भी हो सकता है, वो इमोशनल हो सकता है और वो फनी या क्रिएटिव भी हो सकता है।
0: तो अच्छा, एक मेरे को तो बड़ा डिफिकल्ट सा काम लग रहा है ये। अच्छा आप ये बताओगे, जैसे आपके सामने कोई भी चीज आएगी भाई इस पे आपको लिखना है, तो आप उसके बारे में सोचते रहते होगे हर टाइम, मतलब थोड़ा विचार चलता रहता होगा, घर भी जाते हो तो सोचते होगे, रास्ते में भी सोचते होगे, तो कभी कोई ऐसा स्पार्क आता है कि अरे ये चीज सही है, ऐसा क्या कैसे करते हो ये?
1: सर हाँ ऑब्वियसली ये एक प्रोसेस है, राइटिंग हमेशा एक प्रोसेस ही रहेगी, लेकिन आजकल एआई ने उस चीज को काफी आसान कर दिया है। आप आज एक छोटा सा आइडिया अगर अपने दिमाग में लेके आते हो और आप एआई की मदद से जो चीज सोचने में हम पहले शायद 2 घंटे लगा दिया करते थे या 3 लगा दिया करते थे, अब वो छोटा सा भी आइडिया अगर हमारे दिमाग में है, हम एआई से बात कर सकते हैं, वो हमारे पास 100 आइडियाज लेके आ जाता है।
0: अच्छा,
1: तो मेरे ख्याल से ये इस चीज को बहुत ही इजी कर दिया है एआई ने। पर हाँ, आज भी हम ये नहीं कह सकते कि हम एआई से सब कुछ करा सकते हैं, उसे वो थॉट आपको देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो उस चीज को इम्प्रूव कर सकता है। तो आजकल जो राइटिंग है वो ह्यूमन थॉट्स का और एआई की एफिशिएंसी का एक मिक्स है।
0: बहुत बढ़िया, मैं अगला सवाल ये पूछने वाला था कि आज एआई और कॉपी पेस्ट के बारे में आप जो अपना मौलिक लेखन कहते हैं या जो बेसिक लेखन कहते हैं वो कितना इम्पोर्टेंट रह गया है? हाँ, तो आपका मतलब है इंस्ट्रक्शन तो देनी पड़ेगी आपको सोच के अपने आप?
1: बिल्कुल देनी पड़ेगी, अगर आप और आपको आपके एआई को पूरा ट्रेन करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी रैंडम ऐप पे जाकर उससे कुछ बात करेंगे तब आपके पास में वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आप चाहते हैं, या फिर कोई भी कहे कि अरे हम ये कर सकते हैं, नहीं, करना ये है कि थॉट्स तो आपको अपने ही रखने पड़ेंगे। अभी एआई उतना भी वो नहीं हुआ है, जो वो आपको लिख के देगा उसमें भी आपको करेक्शंस करने पड़ेंगे। पर हाँ ये है कि वो आपका टाइम बचा लेता है, आपको जो काम करने में 2 घंटे लगते थे अब वो आप 2 मिनट में कर सकते हैं या फिर उससे भी कम टाइम में शायद, और ये अभी के लिए तो वो चीज भी बिल्कुल अप्लाई नहीं होती कि हाँ भाई एआई आपकी जॉब ले सकता है, क्योंकि अभी आपको एआई सीखना है और उसे भी सिखाना है बहुत कुछ, तो ये अभी थोड़ा थोड़ा दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है।
0: बड़ा हाँ, मतलब यू आर राइट कि एक ट्रांजिशनल सा फेज चल रहा है अभी तो। हाँ। अब इसके बाद में आगे जाके क्या होगा ये पता नहीं। और ये सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी जो हमारी लेखन की पुरानी शैली थी उसको भी काफी बदल दिया है। आपका जो पहले अपना लेखन का, जैसे आपने अभी बताया कि इंट्रोडक्शन देते थे ऐसे लिखते थे, वो अब तो जो भी बात कहनी है डायरेक्ट कहनी है और ऐसी कहनी है कि वो बिल्कुल आदमी के जहन में एकदम टच कर जाए, उतर जाए।
1: अच्छा नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ये इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, क्लिकबेट।
0: ओके, क्लिकबेट।
1: पूरी चीज, पूरा सोशल मीडिया आज क्लिकबेट पे चलता है, चाहे थंबनेल हो, आपकी वीडियो की लाइन का हुक हो, सब कुछ क्लिकबेट है। आपके वीडियो के अंदर अगर वो बात नहीं भी है तो भी आप देखते होंगे कि वो थंबनेल पे लोग लिखते हैं उसे, ताकि उस पे एटलीस्ट लोग क्लिक करें। सेम विद वीडियो है, अगर इंस्टाग्राम पे आपकी रील आती है तो वो 3 सेकेंड के लिए आपको कुछ ऐसा लिखना है या उसमें कुछ ऐसा विजुअल डालना है कि लोगों का अटेंशन ग्रैब हो और वो उसको फिर थोड़ा और देखें। तो हाँ, ये राइटिंग अब पहले होता था कि हम गहराई से लिखते थे, अपनी बात कहने का समय लेते थे, अब हमें वो समय तो लेना ही नहीं है, बस अपनी बात कह देनी है
0: और कहनी भी इस तरह से कि आदमी मजबूर हो जाए उस पर क्लिक करने के लिए किसी तरह से।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो चलिए, ये जो सोशल मीडिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस पे रुक के हम एक गाना सुनते हैं और फिर आगे बातचीत का, अब थोड़ा सा आपके दिल्ली की जिंदगी के बारे में भी बात करना चाहते हैं, हमने ये बातें कर ली, अब एक गाना सुन के और बातें करते हैं।

0: हाँ, वेलकम बैक संध्या जी। आप बरेली की रहने वाली हैं, जयपुर में भी अपनी कॉलेज लाइफ और अर्ली लाइफ रेडियो की व्यतीत कर चुकी हैं और अब दिल्ली जैसे महानगर में रह रही हैं आप। तो ये बताइए कि जो वर्किंग वीमन होती हैं दिल्ली में, आपको क्या चैलेंजेस नजर आ रहे हैं?
1: वर्किंग वुमेन के लिए आई थिंक हर जगह, मेरे ख्याल से वुमेन के लिए हर जगह एक ये चैलेंज यही है, अगर वो काम कर रही है तो, कि उसे काम तो करना ही है, साथ के साथ उसे फैमिली भी बैलेंस करनी है। तो चाहे अब जैसे मैं सिंगल, अगर मान लो मैं यहाँ रहती हूँ तो भी मुझे आने के बाद में एक अपना पर्सनल टाइम है, मुझे अपना घर संभालना है, तो वुमेन के साथ ये चीज एक हमेशा रहेगी। पर वुमेन की अच्छी बात यह है कि वो ये सब चीजें बहुत ही एफिशिएंटली कर भी लेती है।
0: मल्टीटास्किंग होती है महिलाएं। अच्छा ये बताइए, जैसे आप मीडिया के क्षेत्र में काम कर रही हैं या फील्ड में, तो मीडिया में आपके किस तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है या महिलाओं को कुछ आपको ज्यादा अपने आप को प्रूव करना पड़ता है वर्किंग एनवायरनमेंट में, क्या होता है?
1: सर, मुझे जहाँ जिस माहौल में अभी तक मैं रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं को फेस करना पड़ता है, क्योंकि महिलाएं इतनी कैपेबल हो गई हैं आज की डेट पे कि वो अपने टैलेंट से वो जगह हासिल कर रही हैं। तो नहीं, मुझे अभी तक मेरी जर्नी में भी डिस्क्रिमिनेशन मुझे महसूस नहीं हुआ। और जो मैं अपने आसपास और भी देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारी पावरफुल लीडर्स हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, मैं और भी जगह देखती हूँ, और हम मेन स्ट्रीम मीडिया में भी देखते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी एंकर्स हैं वो लेडीज ही हैं आज की डेट पे, उनका नाम है। तो मुझे लगता है कि ये स्किल्स के बारे में ज्यादा है, ये एफिशिएंसी के बारे में ज्यादा है। अगर आपके पास में वो है तो आप शायद डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज आपके बीच में कभी आएगी भी नहीं। तो ये पूरे तरीके से मेरे ख्याल से दिल्ली में, तो यहाँ मुझे लगता है कि हाँ, ये टैलेंट के बारे में ज्यादा है।
0: तो चलिए, कोई कोई खास ऐसा सजेशन आप देना चाहो वर्किंग प्लेस पे महिलाओं के लिए, आप कोई चेंजेस चाहते हो, ऐसा कुछ आपके दिमाग में, ऐसा कोई कभी दिमाग में आता है यार ये होता तो बहुत अच्छा होता, मैं जहाँ काम करती हूँ, ऐसा कोई दिमाग में है चीज?
1: सर, इसको लेके यही है कि क्या होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं।
0: हाँ, मतलब ऐसा कोई चेंजेस आप चाहो अपने वर्किंग प्लेस पे, क्या कुछ ऐसे कोई चेंजेस देखना चाहती हो आपके और इस तरह का अच्छा होगा?
1: सर, महिलाओं को लेके जहाँ मतलब मैं काम करती हूँ वहां तो मुझे तो कभी ऐसा अलग सा महसूस नहीं होता, लेकिन हाँ, कई बार जब महिलाएं जो है, लाइक अभी मैं एक चीज फेस करती हूँ, जैसे हमारे आसपास में थी कि एक लेडीज थी जो प्रेग्नेंट है अभी,
0: ओके
1: और उन्हें एक मैटरनिटी लीव चाहिए कुछ महीनों का। अब वो लीव उन्हें मिल जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, बट उस चीज में एक ये चीज होती है कि वो कहीं ना कहीं जब वो वापस आना चाहती हैं, तब कंपनियां उन्हें उस लेवल पे सपोर्ट नहीं करती। ये चीज मैंने ऑब्जर्व की, तब मैं चाहती हूँ कि वहां पे उनको ज्यादा अच्छे से अगर सपोर्ट किया जाए, क्योंकि वो वापस आती हैं तो वो एक डबल जिम्मेदारी के साथ वापस आती हैं, तो उनको रिप्लेस ना किया जाए बल्कि उनको और बेटर तरीके से वेलकम किया जाए। ये चीज मैं थोड़ी सी और देखना चाहूंगी जो और बेटर तरीके से हो पाए।
0: वेरी गुड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया है, मैं समझ गया।
1: जी
0: क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर तो मैटरनिटी लीव और सेबेटिकल लीव
1: हाँ
0: का बहुत अच्छे प्रोविजंस हैं, बैंकों में भी हैं, सब कुछ है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा इस बारे में दिक्कत हो
1: हाँ,
0: सकती है,
1: वो उन्हें
0: मैं
1: खुद ही अकेले ही सब मैनेज करना
0: सभी
1: पड़ता है
0: मैनेज
1: फिर।
0: करना पड़ता था। चलिए तो हम रुक के एक गाना सुनते हैं, फिर थोड़ा सा रेडियो के बारे में बात करते हैं, संगीत के बारे में बात करते हैं, आपके और शौकों के बारे में बात करते हैं, ऐसा करते हैं, है ना?
1: जी

0: हाँ तो संध्या जी वेलकम बैक। आपने रेडियो या एंकरिंग का कोई ऐसा अनुभव या कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको लगता है जो आज भी याद आता है तो आपको बड़ा मजा आता है, इमोशनल है, कोई ऐसा लाइफ का कोई एक्सपीरियंस ऐसा है?
1: सर, मेरी लाइफ का जो रेडियो वाला, जितने भी टाइम में रेडियो से जुड़ी रही, चाहे जब मैं वो सीख रही थी उस वक्त, या फिर जब मैं रेडियो के लिए काम कर रही थी उस वक्त भी, वो पूरा ही चीज मेरे लिए बहुत ही यादगार है और बहुत ही मेमोरेबल, मतलब मैं उसको कह सकती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी चीज थी जो मैं दिल से किया करती थी उस वक्त।
0: अच्छा
1: तो हाँ, वो पूरा एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत यादगार है। मतलब मैं ऐसी कोई एक याद तो मैं अभी नहीं याद कर पा रही हूँ, पर वो पूरा ही माहौल बहुत अच्छा मुझे लगता था, क्योंकि वहां पे आप हैप्पी फील करते हो उस माहौल में। आप जो चाहते हो वो आप कह पाते हो, एक्सप्रेस कर पाते हो अपनी ओपिनियन, ना सिर्फ खुद तो आपकी ओपिनियन है ही, बल्कि लोगों तक भी वो आप ओपिनियन दे पाते हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत खूबसूरत चीज है कि आप अपनी बात जब कह रहे हैं, तब हजारों हजार लोग आपकी वो बात सुन रहे हैं और वो उस बात पे बिलीव करते हैं कि जो
0: बिल्कुल
1: एक बंदा एक चीज को कह रहा है कि हाँ, वो कुछ अच्छा कह रहा होगा, पे भरोसा करते हैं। तो ये चीज मुझे एक रेडियो के बारे में बहुत खूबसूरत लगती है और बहुत मेमोरेबल भी लगती है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो चलिए फिर ऐसा करते हैं कि अब ये बताइए, संध्या के शौक क्या है, काम के अलावा आपकी हॉबीज क्या है? म्यूजिक से आपको दिलचस्पी है या म्यूजिक अच्छा लगता है? आपकी लाइफ में म्यूजिक की क्या जगह है?
1: सर, मेरी लाइफ में म्यूजिक की जगह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर मैं अपने घर से निकल के ऑफिस तक जा रही हूँ और वो रास्ता 10 मिनट का भी है, तो मैं उसमें म्यूजिक सुनना पसंद करती हूँ। इतनी ज्यादा मेरी लाइफ में म्यूजिक की जगह और इम्पोर्टेंस है। बाकी

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग
1: होता है, तो मैं अपने आसपास या फिर पॉसिबल हो तो आउट ऑफ स्टेशन घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
2: Wonderful.
1: तो ये दो शौक है मेरे जो जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी लगते हैं मुझे खुद को।
2: वेरी गुड। अच्छा, तो कोई लेटेस्ट पिक्चर आपने देखी हो जो आपको बहुत पसंद हो, बताइए उसके बारे में, कौन सी देखी है?
1: लेटेस्ट सर मैं अभी याद कर पा रही हूँ, मैंने जो लास्ट फिल्म नेटफ्लिक्स पे देखी थी इट्स माँ बहन, उस फिल्म का नाम है।
2: अच्छा।
1: और वो प्योर जो है विमेन एम्पावरमेंट को लेके है, कि जिसमें माधुरी दीक्षित है और भी एक दो हीरोइंस हैं। उसका यह है कि कैसे एक समाज महिलाओं को देखता है, नॉर्मल समाज, और कैसे एक महिला होती है, उसका एक बहुत ही साफ साफ उन्होंने दिखाया है डिफरेंस।
2: अच्छा,
1: तो वो फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी।
2: वेरी गुड। और कोई संध्या का अगर कोई गाने का शौक है, अगर आप कोई गुनगुनाना चाहें एक लाइन या कोई गजल, एनीथिंग कोई आप सुनाना चाहें तो स्वागत है आपका।
1: नहीं नहीं सर, गुनगुनाने में मैं काफी बुरी हूँ। और जब हम रेडियो स्टेशन पे जब सीख रहे थे तो मेरे एक मेंटर ने मुझे एक बात कही थी कि जब आरजे को गुनगुनाना ना आए तो उसे नहीं गुनगुनाना चाहिए। तो यस, तो हाँ नहीं, गुनगुनाना मतलब वो मेरी स्पेशलिटी बिल्कुल भी नहीं है।
2: Okay.
1: हाँ, मुझे बात करना पसंद है।
2: कोई शेर व शायरी सुनाना चाहती हो, कुछ एनीथिंग, कोई भी आप, कोई
1: सर शेर व शायरी सर मैं सच कुछ प्रिपेयर करके नहीं आई सर।
2: चलो
1: तो
2: कोई बात नहीं, कोई बात। तो फिर ऐसा करो कि जो महिलाएं खासकर लड़कियां यंग लोग रेडियो या कंटेंट राइटिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, कुछ उनको संदेश आप दे सकती हो, कुछ एडवाइस देना चाहो तो फिर दीजिए।
1: आज की डेट की अगर आप कंटेंट राइटिंग में जाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी एडवाइस यही है कि एआई टूल्स को जितना जल्दी हो सके आप सीख लो और उनको अपने हिसाब से, अपने थॉट के हिसाब से आप ट्रेन करना सीख लो, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है आपको हाथ से बैठ के टाइप करके लिखना नहीं पड़ेगा, आपको एआई को अपना थॉट देना पड़ेगा कि मैं ये आपसे लिखवाना चाहता हूँ और आपको ये लिखना है, मुझे ये रिजल्ट चाहिए। अब जो राइटिंग है वो चाहे रेडियो की कंटेंट राइटिंग हो या मैं कहती हूँ फिल्म्स हो गई, कुछ भी हो गया, सॉन्ग राइटिंग हो गई, कुछ भी हो गया, अब वो सब कुछ आने वाले टाइम में बहुत ही फास्ट पेस्ड करना पड़ेगा राइटर्स को और वो विदाउट एआई होगा ही नहीं। तो अपने थॉट को शार्प करना है आपको, बहुत क्लियर करना है कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए अपनी राइटिंग में, और एआई टूल्स का आपको यूज करना है ताकि आप वो चीज और बेटर तरीके से जल्दी लिख सकें।
2: बहुत बहुत ही

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की।

इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

आइए दोस्तों, आपको बताते हैं अमर के बारे में, जो अपने आप में एक प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। गरीबी और आर्थिक विषमता के दर्दनाक हालात ने दशकों पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को इस कदर व्याकुल कर दिया था कि उनकी कलम से विपथगा कविता निकली थी। श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात्रि बिताते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। दुर्योग से अमीरी गरीब की खाई चौड़ी ही हुई है, इसलिए तमाम कानूनी उपायों के बावजूद बाल श्रम बाल विवाह की समस्या खत्म नहीं हो पाई है। कई बार किसी ढाबे या रसूखदार के घर के बाल श्रमिक हमें यूं देखते मिल जाते हैं, मानो कह रहे हो हमें उबार लो, हमारा हाथ थाम लो, हम भी कुछ बनना चाहते हैं। अमरलाल ऐसी ही अभिलाषाओं के प्रतिनिधि हैं। राजस्थान के बंजारा समुदाय में पैदा हुए अमर का बचपन भी उन अनगिनत बच्चों जैसा था, जिन्हें सुबह सुबह ये सवाल सताता था कि आज घर में खाने को कुछ मिलेगा भी या नहीं। इस बुनियादी चिंता ने अमर से भी उनका लड़कपन छीन लिया। उसमें स्कूल और किताबों का कोई जिक्र क्या होता। होश संभालते ही पेट भरने की मजबूरी ने अमर को भी पत्थर तराशों के बीच पहुंचा दिया। उनके परिवार पर स्थानीय महाजन का कर्ज ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं लेता था, इसलिए परिवार के सारे सदस्य बंधुआ मजदूरी करने को बाध्य थे। छोटे छोटे बच्चे से भी पत्थर ढुलवाने में साहूकार सामंतों को शर्म नहीं आती थी। साल 2001 की बात है, अमर की उम्र भी 6-7 साल की रही होगी। उनका खानाबदोश परिवार उन दिनों जिस गांव की पत्थर की खान पर काम कर रहा था, वहां बचपन बचाओ आंदोलन एक शिक्षा रैली लेकर पहुंचा। खदान के करीब से गुजरते हुए रैली के अगुआ कैलाश सत्यार्थी ने जब नन्हे अमर के हाथों में पत्थर का बड़ा टुकड़ा देखा तो वो ठिठक गए। वो फौरन अमर के माता पिता से बात करने के लिए पहुंचे ताकि उन्हें समझा सके कि ये जुल्म है, ये तो इस बच्चे के खेलने कूदने पढ़ने लिखने के दिन हैं। अब जिनके पुरखों ने कभी स्कूल न देखा हो तो वो भला क्या समझेंगे शिक्षा की कीमत। उनके लिए तो बाल मजदूरी कोई अनहोनी बात थी नहीं, क्योंकि वो सब यही तो करते हुए बड़े हुए थे। मगर कैलाश सत्यार्थी उन्हें समझाने में जुटे रहे कि उनका बेटा किसी बड़े काम के लिए बना है। उन्होंने अमर के पिता से कहा कि यदि वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर सकते तो जयपुर में एक बाल आश्रम है जो इसकी जिम्मेदारियां उठा सकता है। गरीब माता पिता भी बेटों का भला चाहते थे और उनके दिल में भी तरह तरह की तमन्नाएं थीं। कैसे अपनी संतान को नजरों से इतना दूर भेज दें। बिछो के ख्याल से ही उनका दिल कांप उठा। लरजती हुई आवाज में अमर के पिता ने सत्यार्थी जी से बस यही कहा कि वो पहले जयपुर आश्रम जाकर वहां रह रहे बच्चों को देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। माता पिता दोनों जयपुर बाल आश्रम आए। असंतोष की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जैसी जिंदगी वे अपने बच्चों को दे रहे थे उससे आश्रम के जीवन की कोई तुलना ही नहीं थी। अमर अपने दो बड़े भाइयों के साथ जयपुर आश्रम आ गए। वो सब बेहद खुश थे क्योंकि वहां वे अपनी मर्जी से खेल सकते थे, पढ़ लिख सकते थे। 6 महीने तक आश्रम में पढ़ने के बाद अमर और उनके भाइयों का औपचारिक शिक्षा के लिए एक सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। अमर ने वहीं से 12वीं की अपनी शिक्षा पूरी की। बालाश्रम ने अमर और उनके भाइयों को एक नई जिंदगी दी, बल्कि अमर के नेतृत्वकारी गुण को भी बहुत अच्छी तरह से निखारा। वो कई बार बाल आश्रम बाल सभा के अध्यक्ष चुने गए। आश्रम में ही उन्होंने सत्यार्थी के बेटे भुवन से संवाद करने का मौका मिला, जो पेशे से वकील है। जैसे जैसे अमर बड़े और शिक्षित हुए, उनका यकीन पुख्ता होता गया कि कानून ही वो जरिया है जिसकी मदद से बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाई जा सकती है। साल 2013 में उन्होंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और 2018 में कानून में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद 2019 में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। करीब 6 महीने तक दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकालत करने के बाद 1.5 साल तक अमर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील के साथ काम भी किया और उसके बाद वो अपनी संस्था के लिए काम करते रहे। वो न सिर्फ बाल मजदूरों के मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं,
बल्कि जिस किसी गांव के बारे में उन्हें पता चलता है कि वहां बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा, अमर वहां पहुंचकर अपनी कहानी सुनाते हैं और परिजनों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने बच्चों का भविष्य बचा लें। अमर को स्वीडन और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को संबोधित करने का भी मौका मिला, जहां उन्होंने बच्चों के अधिकारों और बाल विवाह के खिलाफ दुनिया का ध्यान खींचा। अमर के माता पिता के पास जोधपुर में अब अपना घर है। जब भी कोई उनसे पूछता है, आपका बेटा दिल्ली में वकील है, अमर के अभिभावकों के लिए ये गौरव का क्षण होता है। उनके दूसरे बेटा बेटी भी अब नौकरी करते हैं, मगर इन वर्षों में अमर बार बार अपने समुदाय के बीच लौटते हैं। नतीजन उनके बंजारा समुदाय के अब लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। इलाके के खानाबदोश समुदायों के सामने मिसाल के तौर पर उनकी कहानी पेश की जाती है। मानना होगा कि अमर ने हाशिए पर जीने वाले हरेक बच्चे के हक की लड़ाई लड़ी है। अब अपने बचपन को उन्होंने हमेशा अपने भीतर जिंदा रखा है, ताकि वो उन्हें याद दिलाता रहे हजारों बाल श्रमिकों को अमर की तलाश है।

ओस की बूंदें अभी थीं, अभी नहीं है। ऐसा खुशियां जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थीं, कहीं नहीं है। कंक्यार की कोख से फूटा बाल सूर्य जब पूरब की गोद में पांव फैलाने लगा, तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से भाप बनी ओस की बूंदों को ढूंढूं? सूर्य एक सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। ये बात अलग है कि ओस क्षणिक है, क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं, कण कण में बिखरे सौंदर्य को पीऊं। सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीचे की हरी हरी दूब पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: हमारे देश में भयंकर वाली टेक्नोलॉजीज चलती हैं। अमेरिका के दो साइंटिस्ट एक बात सुनकर हमारे देश की बेहोश हो गए जब उन्हें पता चला कि घर में अगर चप्पल उल्टी रखती जाए तो लड़ाई हो जाती है।
0: दोस्तों, मैं हूं आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले आइए ना एक गीत सुन लेते हैं।

मदर टेरेसा की वो सात बातें जो हर पीआर प्रैक्टिशनर्स के लिए मददगार साबित होती हैं। मदर टेरेसा एक ऐसी महिला हैं जिन्हें दुनिया भर में उनकी करुणा, सहानुभूति और निस्वार्थता के लिए जाना जाता है। उनके मृत्युपरांत आज भी लोगों और समाज के प्रति समर्पण के लिए उन्हें दिल की गहराइयों से याद किया जाता है। आज के ब्रांड्स ऑडियंस के बीच एक लंबे समय तक चलने वाली छवि बनाने का लक्ष्य रखते हैं। मदर टेरेसा के निम्नलिखित उदाहरणों से पीआर प्रैक्टिशनर्स कई सीख ले सकते हैं जो उन्हें अपने क्लाइंट्स के लिए एक लंबे समय तक चलने वाली छवि बनाने में मदद करेंगे। यहां सात बातें बताई गई हैं जिनका प्रत्येक पीआर प्रैक्टिशनर को पालन करना चाहिए। एक, ऑडियंस को अपनी प्राथमिकता बनाएं। मदर टेरेसा ने एक बार कहा था, आपके पास आने वाला हर व्यक्ति मुस्कुराकर ही वापस जाना चाहिए। ब्रांड्स का वजूद अपने कस्टमर्स की वजह से होता है। आखिरकार पब्लिक ही है जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीदती है। अपने संपूर्ण जीवन के दौरान मदर टेरेसा अनेक लोगों की भलाई के लिए काम करती रहीं और खुद को दान, गरीबी और सादगी के साथ जीने के लिए समर्पित कर दिया। इसी तरह ब्रांड्स को भी जनता के प्रति केंद्रित होना चाहिए और उनके हित में मानवता का आदान प्रदान होना चाहिए। मदर टेरेसा की अपने से पहले अन्य लोगों के हित में सोचने की उदारता को हर एक ब्रांड को भी निश्चित तौर पर अपनाना चाहिए। दो, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जैसा कहा वैसा करना। ब्रांड्स की अपनी एक पहचान होना चाहिए जिससे कि व्यक्ति उन पर भरोसा कर सके। उस ब्रांड से बदतर कुछ भी नहीं है जो कहता कुछ है और करता कुछ है। मदर टेरेसा ने अपने पूरे जीवन में एक ही बात सिखाई कि हमें अपना जीवन दूसरों की भलाई करने में ही व्यतीत करना चाहिए। वह स्वयं गरीबी में रहती थीं, लेकिन फिर भी दूसरों की सहायता करने के लिए भोजन और आपूर्ति की व्यवस्था करती ही रहती थीं। पीआर प्रैक्टिशनर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जैसा कहें वैसा करें। तीन, कड़ी मेहनत करें भले ही कोई नहीं देख रहा हो। मदर टेरेसा को गति प्राप्त करने में बहुत समय लगा। डिजिटल युग के विकास के साथ सफलता की धारणा बदल जाती है। आजकल ऐसा माना जाता है कि सफलता रातों रात प्राप्त की जा सकती है, लेकिन ये पूर्णतः गलत धारणा है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कड़ी मेहनत और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। कई बार आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है या आप हतोत्साहित महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका ध्यान अपने लक्ष्यों से हटना नहीं चाहिए। कई बार हमें कड़ी मेहनत का फल उतना अच्छा नहीं मिलता जितनी हमने मेहनत की थी, लेकिन इसके प्रति अपना दृढ़ विश्वास बनाए रखें, क्योंकि देर से ही सही फल अवश्य मिलेगा। चार, दूसरों के नक्शे कदम पर चलने के बजाय अपना रुझान बनाएं। दुनिया भर में पहचान हासिल करने के बाद भी मदर टेरेसा ने इसकी चिंता किए बिना कि लोग क्या सोचते हैं, हमेशा ही एक साधारण जीवन जीना जारी रखा। उन्होंने खुली बाहों से लोगों को स्वीकार किया, उन्हें आजीवन प्यार किया और उनकी देखभाल की। प्रति सांस्कृतिक होने की क्षमता रखने वाले ब्रांड्स भी अपनी ऑडियंस के जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। ये एक जोखिम है, लेकिन साथ ही साथ प्रभावी भी है। अपने कस्टमर्स को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न रुझान अपनाएं। ये आपकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाएंगे और आपको भीड़ से बिल्कुल अलग पहचान दिलाएंगे। पांच, अपने आप पर विश्वास करें। मदर टेरेसा ने गरीबों की मदद करने और उन्हें ईश्वर के करीब लाने के लिए आजीवन बखूबी कार्य किए। संपूर्ण जीवन काल के दौरान उनका आत्म बलिदान उन्हें अन्य सभी लोगों से अलग स्थान देता है। इसी तरह पीआर प्रैक्टिशनर्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि
कि ब्रांड्स को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जीवंत रखने की आवश्यकता है जो वो समाज को दे रहे हैं। उन्हें स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। ये न केवल उन्हें काम में उद्देश्य स्थापित करने की भावना देगा, बल्कि ये भी सुनिश्चित करेगा कि प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना वास्तविक है। ब्रांड्स अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं यदि उन्हें अपने लक्ष्यों पर पूरा भरोसा है और वो इन लक्ष्यों के लिए कार्य करने को तैयार हैं। 6. आप जैसे हैं वैसे ही रहें। एक बात जो मदर टेरेसा को उल्लेखनीय व्यक्ति बनाती है वो ये है कि वे कभी भी अपने काम से नहीं भटकी। प्रसिद्ध होने के बाद उन्हें एक आरामदायक जीवन जीने का अवसर मिला, लेकिन वे कभी भी अपनी राह से नहीं भटकी। गरीबों और लाचारों की जीवन को बेहतर बनाने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए वो हमेशा तत्पर रही। ब्रांड्स को भी अपनी डिमांड्स और पॉपुलैरिटी को देखते हुए भटक नहीं जाना चाहिए। उन्हें अपनी प्रसिद्धि का आदि नहीं होना चाहिए और अपने वजूद को कभी नहीं भूलना चाहिए। राह में कई ध्यान भटकाने वाले कारणों से अलग, ब्रांड्स को अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सटीक विकल्प बनाना चाहिए। 7. साधन संपन्न बने। इस विषय को लेकर मदर टेरेसा का मार्ग प्रशस्त था कि उनके पास जो कुछ भी है उसका उपयोग दूसरों की मदद के लिए किस तरह किया जाए। स्ट्रेटजीज बनाने से पहले पीआर प्रैक्टिशनर्स की अंतर्दृष्टि भी स्पष्ट होनी चाहिए और उन्हें इस बात का विश्लेषण करना चाहिए कि समाज में उनके ब्रांड का क्या प्रभाव है। मदर टेरेसा ने हमें सिखाया कि हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। समाज को वापस देने के लिए विभिन्न परोपकारी कारणों के रूप में हर ब्रांड को इसे स्वीकार करना चाहिए। अपने सभी संसाधनों के उपयोग के साथ उन लोगों की मदद करने और समर्थन करने के विभिन्न तरीके खोजें जो इस दुनिया को जीने के लिए एक बेहतर जगह बनाने की वजह बने। देखिए कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? दोस्तों, हम जिंदगी में चलते चलाते सभी के बारे में राय

किस्सा बताता हूं, आपके बात समझ में आ जाएगी। चलिए मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे थे, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिल रहा। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए बस यूं ही खड़े हो जाते हैं, पसीना पहुंचते हैं, रुमाल निकालते हैं, रुमाल से अपने को हवा करने की कोशिश करते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक आदमी से आंखें मिलती हैं। आपकी ऐसी स्थिति देखकर वो आदमी हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। अब आपने फौरन उस आदमी के लिए एक राय बनाई। बड़ा ही सहृदय व्यक्ति है, न जान न पहचान, फिर भी पानी के लिए पूछ रहा है। अब उस व्यक्ति के लिए आपकी ये पहली राय है, क्यों? अब वो आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर लेता है। आप पानी लेने तेज कदमों से उसके दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस आदमी के बारे में आपकी क्या राय है भाई? आप उसे गालियां देने लग जाते हो, क्यों? बेवकूफ है, उल्लू का पट्टा है, ढीला है, आलसी है, पता नहीं क्या क्या बोल डालते हो उसको आप। अब ये आपकी दूसरी राय है, देखिए। लेकिन थोड़ी सी देर बाद दरवाजा खुलता है और वो आदमी बाहर आता है और कहता है, आई एम रियली सॉरी, उसे थोड़ी देर हो गई, उसके लिए बहुत बहुत खेद है, लेकिन आपकी हालात देखकर उसने आपको पानी के बजाय नींबू पानी देना जरा ज्यादा अच्छा समझा, इसलिए थोड़ा सा लंबा वक्त लग गया। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब आपकी क्या राय है? कितना अच्छा आदमी है ये, कितना सोचा उसने मेरे बारे में। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि शरबत में चीनी तो है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय बनाना चाहते हैं आप? अरे यार, बड़ा बेवकूफ आदमी है, नालायक है, बेहद कंजूस भी है। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उस समय उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी ले आया, जिससे आप जितनी चाहें उतनी डाल लें। अब उस व्यक्ति के बारे में क्या विचार है आपका? है ना मजेदार? अब आप मनन कीजिए, एक सामान्य स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली हो जाती है और लगातार बदलती जा रही है, तो क्या हम किसी के बारे में भी राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से राय ना बनाएं। पता नहीं कौन किस परिस्थिति या स्थिति में ऐसा काम कर रहा है, अब ये तो वही बेहतर जानता होगा ना। हो सकता है अपनी अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और दूसरा भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को बस इतना सा समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। क्यों दोस्तों, बात में दम है ना? सोचिएगा। दोस्तों, मैं हूं आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले आइए ना एक गीत सुन लेते हैं।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना?
1: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
2: पंडित जी ने कुंडली मिलाई, 36 के 36 गुण मिल गए। लड़के वालों ने फिर भी मना कर दिया शादी से। लड़की वालों ने पूछा, भला ये क्या बात हुई, 36 के 36 गुण मिल गए हैं, फिर क्या परेशानी है? लड़के वालों ने कहा, हमारा लड़का बिल्कुल एक नंबर का निकम्मा है। अब आप चाहते हो बहू भी वैसे ही ले आए?

सीख तो हम कहीं से भी सकते हैं। कहते हैं कि जिंदगी से बड़ी पाठशाला और समय से बड़ा शिक्षक कोई नहीं, लेकिन अगर हम अपनी कल्पनाओं को और विस्तार दें तो पाएंगे कि प्रकृति ने हमारे लिए इतने सारे शिक्षक उपलब्ध कराए हैं कि हम सारी जिंदगी सभी से कुछ ना कुछ सीखते रह सकते हैं, बशर्ते कि हम में ज्ञान की प्यास हो और हमारी चेतनाएं जागरूक हों, जो हमें सुनने, देखने, स्पर्श करने, महसूस करने और सोचने में मदद करती हैं। अगर हम सब चीजों को नए नजरिए से देखना शुरू करें तो पाएंगे कि हर रोज हमारे जीवन में कुछ तो ऐसा नया जरूर आता है जो हमें कुछ ना कुछ सिखा ही जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रह्मांड की, नितांत अवर्णनीय, हमारे समस्त ज्ञान और कल्पनाओं से भी कहीं ज्यादा रहस्यमय। लेकिन जब बात कुछ सीखने की आती है तो यह हमें इस बात की समझ देता है कि हम क्या हैं और वास्तव में कहां हैं। यह कोई इकाई नहीं बल्कि अरबों खरबों इकाइयों का विस्तार है। हम इसकी एक इकाई से भी बहुत ज्यादा कम हैं। यह हमें सिखाता है कि हमारे पास जो कुछ भी है उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मांड के बाद बारी आती है समय की। यह हमारे जीवन में बहुल प्रकार की भूमिकाएं निभाता है। हर क्षण खास और शिक्षाओं से भरा हुआ होता है। इसका पूर्वानुमान, सही पूर्वानुमान हमेशा असंभव प्रायः ही है। यह हमें अनपेक्षित के प्रति तैयार रहने की शिक्षा देता है। यह हमें जिंदगी के सभी पक्षों में अच्छे और बुरे की समझ विकसित करने में मदद करता है। जीवन हमें मिला हुआ एक और शिक्षक है। यह अनुभवों और आश्चर्यों से भरपूर होता है। हर अनुभव एक नए पाठ के समतुल्य है। हम अपनी गलतियों और सफलताओं से सीखते हैं। जीवन हमें जिंदगी के महत्व, इसकी उपयोगिता, इसे कैसे उपयोग करें, इसे कैसे अमूल्यता दें और कैसे इसे अधिकतम पाएं जैसी बातों के बारे में सिखाता है। नदी प्रवाह का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है, पारदर्शिता का प्रतीक है। अपने प्रवाह को शाश्वत बनाए रखने के लिए चिर कटिबद्ध नदी कभी किसी से नहीं पूछती कि कहां जाऊं, कैसे जाऊं। यह हमें आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ बढ़ते जाना सिखाती है। नदी की बात चले और पानी की याद ना आए, ऐसा संभव है क्या? जीवन की एक अनिवार्यता के रूप में पानी हमें सामंजस्य की कला और विज्ञान दोनों सिखलाता है। यह क्षण भर में स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेता है, लेकिन कभी भी उन्हें स्वयं पर हावी नहीं होने देता। अब पेड़ों की बारी। कभी सोचा है आपने कि पेड़ हमें हमारे जीवन में कितना कुछ देता है? यह बहुत सारी मूर्त और अमूर्त चीजें हमें देता है, जिनमें लकड़ियां, फलों, फूलों, सौंदर्य, ऑक्सीजन, छांव, सुकून और न जाने कितना कुछ शामिल है। पेड़ हमें किसी से कुछ भी अपेक्षा किए बिना जीने की कला सिखाते हैं। इसी तरह किताबें हैं। किताबें महज समय काटने की चीजें नहीं होती। ये हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं, जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती। हम किताबों से अपने अपने जीवन के, हमारे परिवेश के, समाज के, संसार के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। वे हमें सिखाती हैं कि एक अच्छा, अनूठा और सफल व्यक्ति कैसे बने। मां, यदि पेड़ इंसान होते तो यकीनन मां जैसे ही होते। मां हमें स्वरहित प्रेम, दयालुता, कोमलता, ख्याल रखना, संसार को समझाना, समझौता किए बिना सामंजस्य स्थापित करना, वह सब कुछ सिखाती है जो हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों और नियामतों को सही ढंग से स्वीकार करना सिखाती है। लोग, हम एक ऐसे समाज में रहने के लिए बने हैं जो लोगों द्वारा या लोगों से बनता है। हमारे पूरे जीवन में लोग अलग अलग रूप में हमारे सामने आते रहते हैं। वो हमारे मित्र हैं, संबंधी हैं, सहकर्मी हैं, साथी हैं, पड़ोसी हैं, अजनबी हैं, लेकिन हम उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। वे हमें जीवन के विभिन्न स्वरूपों का मतलब और उन्हें समझने की कला सिखाते हैं। इतिहास,
हीगल ने कहीं कहा था कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। कुछ वर्ष पश्चात स्पेनी दार्शनिक जॉर्ज सांतियाना ने इसमें जोड़ा कि जो अतीत को याद नहीं रख सकते वे ही उसे दोहराते हैं। इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमें इससे सीखना चाहिए ताकि हम अपने भविष्य को बचा सकें और एक आकार दे सकें।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना? आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: अचानक वाईफाई बंद हो गया है। चेक किया तो पता चला पड़ोसी ने बिल नहीं भरा था 2 महीने से वाईफाई का, इंटरनेट का। कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज हैं द लेजेंडरी एक्टर ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन। जी हां दोस्तों, पेशे खिदमत है अमिताभ बच्चन साहब की ही एक फिल्म का ये गीत।

0: हमारे साथ बने हुए हैं गोपाल रघुवंशी जी अलीगढ़ से। मैं गोपाल जी से पूछना चाहूंगा, आप अमिताभ बच्चन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके बारे में कुछ कहना, सूरज को दीपक दिखाना है, मतलब उनके बारे में इतने लोगों ने इतनी बातें कर दी, मैं कुछ भी बोलूंगा।

0: कुछ भी तो वो बहुत छोटी चीज होगी। अमिताभ बच्चन नेम इज इटसेल्फ, अपने आप में लेजेंडरी कह लो, परसोना कह लो, कुछ भी कह लो आप उस आदमी को। मेरी तो जो मुझे लगता है कि जब से मैंने होश संभाला है फिल्म इंडस्ट्री में या रेस्पेक्टेड फिगर्स में, उनसे ऊपर शायद एक दो लोग ही होंगे लाइक गावस्कर और तेंदुलकर और किशोर कुमार। बाकी आई रेट अमिताभ बच्चन, वेरी रेस्पेक्टेबल फिगर, वेरी एडोरेबल फिगर, एवरीथिंग, मतलब ही मीन्स एवरीथिंग टू मी।
1: बेहतरीन बेहतरीन। गोपाल भाई, तो क्या मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी के ऊपर फिल्माया हुआ आपका पसंदीदा गीत जो आप श्रोताओं को सुनवाना चाहें हमें बताएं?
0: सर, अमिताभ बच्चन पे फिल्माई हुई मुझे हर चीज पसंद है, तो मैं इट इज वेरी हार्ड टू पिक मी वन सॉन्ग, बट स्टिल दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे

0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार। तो गोपाल रघुवंशी जी का जो ये फेवरेट सॉन्ग है, या वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है अमिताभ जी का, वो श्रोताओं आपके लिए पेशे खिदमत है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी हमारे साथ बने रहने के लिए।
1: दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब का जन्म 11 अक्टूबर 1942 1942 में अलाहाबाद में हुआ, जिसे आज प्रयागराज बुलाया जाता है, और इनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

जाना नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं किसी से भी, हारे नहीं हम।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं किसी से भी, हारे नहीं हम।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: ट्रेन में वार्निंग लिखी थी, बिना टिकट सफर करने वाले यात्री होशियार। संता तो ये लाइन पढ़ते ही बिखर गया। वाजी, ये कोई बात हुई? बिना टिकट सफर करने वाले होशियार और हमने टिकट ले लिया तो हम बेवकूफ।
2: बाबूजी मेरा चांसेस दो ना प्लीज। सुनो कितना अच्छा गाना आ रहा है।
3: ऑल इंडिया रेडियो से आ रहा है?
2: हाँ।
3: ऑल इंडिया रेडियो तेरे बाप का नहीं, जितने देर तक तेरे लिए बजता रहेगा। कोई गा रहा होगा। सो जाएगी ना?
2: हाँ।
3: चल सो जा।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। मेरी ओर देखो, हवा में उड़ता ये नष्ट हो जाने वाला सूखा पत्ता कहता है मुझसे, मेरी ओर तो देखो।

0: शायद तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना? मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: पत्नी ने कहा, सुनो जी, डॉक्टर ने मुझे एक महीना आराम करने के लिए स्विट्जरलैंड या पेरिस जाने को कहा है, हम कहाँ जाएंगे? पति ने कहा, दूसरे डॉक्टर के पास।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुहारा।
1: विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, हर बीमारी का आज भी एक ही रामबाण इलाज है।
2: सो जाओ, थोड़ी देर अपने आप ठीक हो जाएगा।

दोस्तों, अमिताभ बच्चन की फिल्में हम हमेशा देखना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन साहब के गाने हम हमेशा सुनना चाहते हैं। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की आवाज में ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम के जो एक्टर हैं उनका नाम है अनिल कपूर। बेहद ही हंसमुख और हमेशा ही जवान दिखने वाले अनिल कपूर बेहद पॉपुलर एक्टर हैं बॉलीवुड के। तो लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

0: शामिल डार्लिंग, तुम हर वीक गाड़ी चेंज करता, क्या गाड़ी के साथ साथ लड़की भी बदलता?
1: ऐसा न कहो।

सब कुछ तुम्हें दे दिया। अब अगर तुमने बेवफाई की तो खुदा कसम हम इन्हीं लहरों में डूब मरेंगे।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: यार तुम्हारा कुत्ता तो टाइगर जैसा दिखता है, क्या खिलाते हो तुम इसको? बंदा ने कहा, अरे भाई ये टाइगर ही है, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है।
2: 1980 के दशक में ढेर सारी फिल्में की अनिल कपूर ने, और हम सभी का भरपूर मनोरंजन किया अपने चुलबुले अंदाज में। लीजिए हो जाए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? अनिल कपूर जी ने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस भी की, जिसमें बधाई हो बधाई, माई वाइफ्स मर्डर, गांधी, माई फादर जैसी फिल्में आती हैं।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। एक बार एक सब्जी वाला सब्जियों पर पानी छिड़क रहा था, छिड़कता जा रहा था। काफी देर हो गई तो ग्राहक ने गुस्से से बोला, सुनो, अब अगर भिंडी होश में आ गई हो तो 1 किलो तौल दो।

अनिल कपूर जी थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं, जैसे उनकी बॉलीवुड कॉमेडी चमेली की शादी में उन्होंने थोड़ा सा गाया भी था। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उनकी ही फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आज के कलाकार अनिल कपूर जी की फिल्म का ये गीत।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।

0: खामोशी क्या चीज है।
1: बहुत खूब बहुत खूब, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं राघवेंद्र, वेरी नाइस। तो चलिए दोस्तों, फिर राघवेंद्र की पसंद तो हमें पता चल गई, तो उनके साथ हम भी सुनते हैं होश वालों को खबर क्या जिंदगी क्या चीज है। राघवेंद्र जी की पसंद हम और आप सब मिलकर सुनते हैं।

वाह, अभी आपने सुनी तलत अजीज की ये बेहद सुंदर पेशकश। दोस्तों, ये थी हमारी एसएन फैमिली से सना शेख, जो कि एक कॉलेज में प्रोफेसर रही हैं और अभी हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट ली है। फोन पर उनसे बातचीत करते हुए मुझे अंदाजा हो गया कि मराठी मौसीकी यानी संगीत और अदब पर उनकी कितनी पुख्ता पकड़ और गहरी समझ है। दोस्तों, आपने सुना सना जी ने कितनी बारीकी से नोट किया कि इस गजल के हर अंतरे को एक अलग ही अंदाज से गाया गया है, जो कि गाते वक्त काफी मुश्किल होता है। वैसे दोस्तों, सना जी के शौहर आसिफ शेख साहब भी बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत जल्दी हम उनसे भी बात करने वाले हैं। सना जी, आपका इस महफिल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हमारी अगली मंजिल की तरफ।

0: और सुनते हैं कि कौन जुड़ा है हमसे फोन लाइन के उस पार। ट्रन ट्रन।
1: हेलो।
2: यस।
1: हेलो मीना।
2: गुड आफ्टरनून।
1: हेलो मीना, दिस इज आरती रॉय फ्रॉम रेडियो SN अल्फाज।
2: हाय आरती।
1: हाय। तो मैं गजलों के प्रोग्राम अल्फाज से एहसास से बात कर रही हूँ मीना
2: जी।
1: तो सिंस आप मेरे प्रोग्राम को सुनती हैं और
2: जी,
1: मुझे मालूम है कि आपको गजलें बहुत अच्छी लगती हैं, तो
2: हाँ,
1: मैं गजलों का एक फरमाइशी प्रोग्राम बना रही हूं, तो मैंने सोचा उन लोगों से फोन पे बात की जाए और उनकी पसंद जानी जाए और उनकी पसंद की गजलें प्ले की जाए, तो इसलिए मुझे आपका ख्याल आया और मैंने आपको फोन किया। तो आप ये बताइए मीना कि
2: हाँ,
1: आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है?
2: फेवरेट गजल सिंगर मेरे जगजीत सिंह हैं, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत काम किया है। मैं HMV में काम करती थी एक जमाने में।
1: Oh, wow.
2: तो लगभग उनकी हर रिकॉर्डिंग और उनके हर रिकॉर्डिंग की प्रमोशन मैंने ही की है।
1: अरे वाह।
2: जितने भी HMV में रिकॉर्डिंग्स हुई हैं उनकी। लेकिन पहले पहले मेरा, मैं जब गजल से मुखातिब हुई वो 1974 में था, जब मेहदी हसन साहब इंडिया विजिट कर रहे थे।
1: अच्छा।
2: और उनका मतलब बंबई में एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है षण्मुखानंदा, वहां पे उनका गजलों का प्रोग्राम था। तो मैंने घर में कहा कि एक्स्ट्रा क्लास है मेरे और मैं गजलें सुनने चली गई। मैंने कहा ये तो सुनना ही पड़ेगा। और तब जो मेरी मतलब क्या मोहब्बत हो गई गजलों से कहना चाहिए, क्योंकि मुझे शायरी अच्छी लगती है। एनी काइंड ऑफ पोएट्री आई जस्ट लव। उसमें थोड़ा वो क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति वाली बात होती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
1: ओके ओके ओके। अच्छा,
2: तब से मैं सुनती आ रही हूँ।
1: हाँ ठीक है मीना, आप
2: हाँ,
1: ये बताइए कि आपके जगजीत सिंह जी, तो अब समझ में आ गया कि आप तो बहुत लकी हैं जो आप उनसे, उनको इतनी बार मिली होंगी और उनको रूबरू देखा होगा। और मुझे ये बताइए कि जगजीत सिंह साहब की कौन सी गजल आपको पसंद है और क्यों?
2: एक इबादत वाली गजल उन्होंने गाई है, दोनों ने मिलके, जगजीत चित्रा ने। मंजिल न दे चराग न दे हौसला तो दे।
1: वाह।
2: मुझे ये बेहद पसंद है।
1: ओके।
2: क्योंकि मैं खुद बड़ी प्रेयरफुल हूँ।
1: ओके ओके ओके।
2: और मैं मोहब्बत का वास्ता भी उस खुदा को ही देती हूँ।
1: वाह क्या बात है।
2: हाँ जी, तो इसलिए मुझे वो गजल मेरी फेवरेट है।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके एहसास की हम कदर करते हैं। और तो सुनते हैं दोस्तों मीना अय्यर की पसंद पर, उनकी बेहद खूबसूरत पसंद। और आप भी सुनिए हमारे साथ। तो ओके मीना।
2: यस, थैंक यू
1: थैंक यू।

0: सी
1: क्या क्या गाती हो यार तुम, कैसे तुमने कैसे कैसे कर लेती हो तुम इतना अच्छा। उफ,
0: मैं तो इतना अच्छा गाती नहीं हूँ, आरटीडी हो जाता है, लेती हूँ।
1: बहुत सुंदर, बिल्कुल वैसे ही आपने वही मुर्कियाँ ली और उसी लहर से गाया, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। तो चलिए फिर आपकी पसंद पे और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुनते हैं, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। ओके।

0: क्या बात है दोस्तों, उस्ताद गुलाम अली साहब की वो मखमली मुर्कियां और हरकतें और हमारी इंदु ने फोन पर हूबहू उसी पाकीजगी से इसे गाकर सुनाया। वाह दोस्तों, ये थी तिनसुखिया से हमारी आरके इंद्रानी और एसएन फैमिली की बेहद खास मेंबर, जिन्हें हम प्यार से इंदु बुलाते हैं। इंदु के गले में वाकई साक्षात सरस्वती का वास है। इतनी लाजवाब गायकी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इंदु डियर। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं आज की महफिल की आखिरी कॉल की तरफ और देखते हैं कि शुरू के इस कारवां का आखिरी पड़ाव कौन सा है। तो सुनते हैं ये आखिरी कॉल। ट्रन ट्रन ट्रन ट्रन।
1: हेलो
2: हेलो रूपा।
1: हेलो आरती जी।
2: हाय, हाउ आर यू डार्लिंग?
1: आई एम फाइन थैंक यू। आरती जी
2: That is so sweet, Rupa. We are going to make one for my hip program.
1: Okay.
2: Alpha se ehsaas tak ke liye. So, since you are very regular in my program and I know that you like ghazals also, so main kaha ki ke main Rupa ki pasand ki ghazal apne program mein play karun, apne doston ko sunaun, hum sab sune. So, Rupa, aap ye bataiye ki aapka favorite ghazal singer kaun hai?
1: मेरा फेवरेट गजल सिंगर यानी गुलाम अली साहब।
2: गुलाम अली साहब मेरे भी बहुत फेवरेट गजल सिंगर हैं। आप ये बताएंगे कि इन साहब की आपको गजल कौन सी पसंद है सबसे ज्यादा?
1: सबसे ज्यादा यानी

0: पागलपन होता है ना, हम सब पागल ही हैं थोड़ा बहुत.
1: थोड़ा पागल हम सबका होता है,
0: हाँ,
1: राइट?
0: सब में एक दीवानापन होता है, सबका दिल दिल में थोड़ा पागलपन होता है ना, तो इसलिए पसंद आ गया होगा, और दूसरा कोई वजह है नहीं.
1: ओके, वेरी नाइस वजह एक्चुअली, आई लाइक
0: हाँ.
1: इट. बहुत सुंदर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा रूपा. तो आपके साथ चलिए फिर हम अपने दोस्तों को भी सुनाते हैं ये गजल, के उनका भी दिल पागल है या नहीं.
0: जरूर होगा.
1: ओके ओके ओके ओके

वाकई सुरों की ये आवारगी जब दिलों को छूती है तो इंसान अचानक थम सा जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, ये थी चेन्नई से हमारी बेहद वर्सेटाइल और खूबसूरत रोमानी दोस्त, हमारी SN फैमिली की रूपा जी, जो SN रेडियोज में तमिल के प्रोग्राम भी कंडक्ट कर चुकी हैं और हमारी इस महफिल की मुस्तकिल यानी रेगुलर सामिया यानी सुनने वाली हैं। रूपा जी, आप ही की तरह आपकी खूबसूरत फरमाइश का बेहद शुक्रिया। तो दोस्तों, बेंगलोर से शुरू हुआ ये सफर, मुंबई से होता हुआ आसाम और फिर चेन्नई पर आकर रुका। हमारी रेडियो SN फैमिली के इन पांचों दोस्तों, रागेश्वर जी, राघवेंद्र जी, सना जी, मीना जी, इंदु और रूपा जी ने आज सुरों और जज्बातों का जो गुलदस्ता सजाया, उम्मीद है उसकी खुशबू आपके जहन में देर तक महकेगी। अब घड़ी की सुइयां हर रोज की तरह टिक टिक टिक कर रही हैं और कह रही है कि अब थम जाओ। तो कल फिर इसी वक्त कुछ नए अदबी अल्फाज और कुछ अनछुए एहसासों के साथ एक बार फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए सुनते रहिए 90.8 FM पर रेडियो SN एंड रेडियो टांटिया भील। अपनी रेडियो दोस्त आरती को अब दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। शब खैर, शुभ रात्रि, रब राखा, फिर मिलेंगे।

दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ।

0: હું છે આરજે રાકેશ
1: અને હું છે આરજે કમતા ડામોર.
0: તમે સાંભળી રહ્યા છે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી, આપણા ઝાબવાના પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ પર. નમસ્કાર કિસાન ભાઈઓ, સ્વાગત છે તમારો સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ પર. હું છે આરજે રાકેશ અને રોજની જેમ તમારી વશમાં આજ ફેર કાર્યક્રમ ખેતીવાડી લઈને હાજર થયો છે. અને કિસાન ભાઈઓ, હું રોજ તમારી વશમાં ખેતીવાડી દેખા જોડાયેલા મુદ્દા, ખેતીવાડીની સમસ્યાઓ અને તેના સમાધાનની વાતો લઈને રોજ એના જ સમય પર હાજર થતો રહું છે. કિસાન ભાઈઓ, આજના ખેતીવાડી કાર્યક્રમમાં આપુ વાતો સાંભળવાના છે બોકડા પાળવાની વાતો. કિસાન ભાઈઓ, બોકડીને ગરીબોની ગાય કહેશે અને પશુપાલનમાં બોકડી એક એવો પશુ છે તેઓ કમથી કમ સમયમાં અધિક મુનાફો આપણા કિસાન ભાઈઓને આલે છે. કિસાન ભાઈઓ, આજના ખેતીવાડી કાર્યક્રમમાં વિસ્તૃત રૂપ દેખી બોકડા પાળવાની વાતો વતાડવા હારું આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં મોજૂદ થયા છે પશુ વિશેષજ્ઞ શ્રી ડોક્ટર KL ડામોર, અતિરિક્ત ઉપસંચાલક પશુપાલન અને ડેરી વિભાગ ઝાબવા મધ્યપ્રદેશ દેખી. તો ચાલો કિસાન ભાઈઓ, હા વાર ની કરીએ, શરૂઆત કરીએ આજના ખેતીવાડી કાર્યક્રમમાં બોકડા પાળવાની વાતોની.
2: પશુ વિશેષજ્ઞ જો કે ડોક્ટર સાહેબ KL ડામોર સાહેબ, જો કે અતિરિક્ત ઉપસંચાલક પશુપાલન એવં ડેરી વિભાગ જિલ્લા ઝાબવા છે. તો સરજી નમસ્કાર.
3: નમસ્કાર
2: સરજી, એ બતાઈએ કે બકરી પાલન કે લીએ કિસાન ભાઈઓ કો આવાસ કેસા રખના ચાહીએ?
3: અચ્છી બાત હૈ યે, જૈસે હમારા પશુપાલન વિભાગ શાસન કી વિભિન્ન યોજનાઓ કે માધ્યમ સે પશુપાલકો તક સુવિધાએ અધિક સે અધિક લાભ દેને કે લીએ તત્પર હૈ. બકરી હમારે યહાં કિસાન કો ગરીબ કી ગાય કહી ગઈ હૈ. બકરી
2: જી જી,
3: કિસાનો કે લીએ
2: જી
3: બકરી કો ગરીબ કી ગાય કહા ગયા હૈ. અબ સ્વાભાવિક હૈ કી કેવલ હમ ગાય પાલન યા ભેંસ પાલન કરેં, उसके साथ साथ में हम बकरी पालन भी करें
2: जी,
3: क्योंकि हमारे यहाँ झाबवा जिले में एक तो खूब बड़े बड़े किसान नहीं है, रकबा जमीन का छोटा है
2: जी,
3: तो कम संसाधन में अधिक से अधिक हम उसकी आय को बढ़ा सकें, ऐसा कोई प्रयोजन हो तो उसके लिए लाभदायक
2: जी जी.
3: तो बकरी के लिए कोई चारा पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है
2: जी जी,
3: है ना
2: जी सर,
3: घर में ही अपन रख सकते हैं
2: जी सर.
3: और बकरी के लिए खासकर हम लोग पालन करते हैं, बकरी पालना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे झाबुआ जिले के हर किसान के घर में बकरियां पाई जाती
2: हैं जी जी,
3: हर किसान हमारा बकरी पालता है, क्योंकि वो उसकी एक प्रकार से छोटी सी बैंक है वो, उसको जब आर्थिक कोई परेशानी होती है तो तुरंत बकरी पकड़ के ले जाता है और बेच के
2: हाट में बेच के अपना रोजगार, अपना पैसा,
3: तात्कालिक व्यवस्था उसकी उसी से होती है
2: जी जी.
3: पर कुछ चीजें ऐसी है जिसमें जो हमारा पशुपालक बकरी पाल रहा है उसमें और बेहतर हो सकता है, उसको अधिक आमदनी हो सकती है उसी में, कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत
2: जी जी.
3: उसके लिए सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो मैंने देखा है जो बकरियों का रख रखाव है वो तो काफी अच्छे तरीके से लोग करते हैं, क्योंकि दूसरी जगह तो लोग बाहर बाड़ों में बांध देते हैं, एक तरफ रखते हैं, हमारे यहाँ तो किसान भले बाहर सोएगा पर उसको घर के अंदर रखे,
2: बकरी को घर में रखे.
3: कुछ तो परिवेश, हमने यहाँ की स्थितियां भी ऐसी है कि रात में कोई चोरी चमारी भी हो जाती, इससे सेफ्टी के उद्देश्य भी, सुरक्षा के उद्देश्य भी रखता है
2: जी जी,
3: इसलिए वो बढ़िया सूखी जगह में रखता है, मैंने देखा कच्ची जगह में भी रखता है. और दूसरा हमें ये पहलू एक दूसरा देखें तो वर्तमान में हमारे पास चरणों की भूमि का रकबा बिल्कुल खत्म होता जा रहा है,
2: हाँ.
3: अतिक्रमण हो गया है सभी जमीनों पे
2: जी जी.
3: तो बड़े पशु चराने की जगह नहीं है,
2: हाँ.
3: तो ये छोटे पशु क्या है, छोटे मोटे पेड़ पौधे के खा के पत्तियां खा के,
2: हाँ.
3: ये बकरियों का हम पालन कर सकते हैं
2: जी जी.
3: ये तो इसलिए ये हमारे लिए काफी उपयोगी
2: है जी जी.
3: अब हमें किसान को एक चीज बताने की आवश्यकता है
2: जी,
3: कि जो पशुपालन में जो हम साथ साथ में जो बकरी पालन कर रहे हैं, तो हम जो देशी नस्ल की पशु कर रहे हैं या जो हमारी बकरी की नस्ल है वो कोई विशेष अच्छी नस्ल नहीं है,
2: हाँ, जो उत्पादन
3: स्थानीय है. तो अभी अब जो है फील्ड में भी हम देखते हैं कि कुछ क्रॉस बकरियां हुई है
2: जी जी.
3: जैसे आपको बताऊं मैं कि हमारी योजनाओं में हम सिरोही बकरे, जमुनापारी बकरे देते हैं।
2: जी जी सर।
3: कुछ योजनाओं में सिरोही बकरियां भी दिए।
2: जी जी।
3: अब धीरे धीरे इन नस्लों का क्रॉस हुआ है।
2: जी सर।
3: तो जमुनापारी और सिरोही जो नस्लें हैं वो काफी बड़ी बड़ी बकरियां होती है।
2: जी जी।
3: और एक बार में दो दो तीन तीन बच्चे देती है।
2: जी।
3: दो तो देती ही।
2: जी।
3: और दूध भी इतना अच्छा देती है कि वो उनके बच्चों का भी लालन पालन हो जाता है।
2: जी।
3: और हमारे छोटे परिवार में उसके बच्चों के लिए या चाय के लिए दूध की व्यवस्था
2: भी हो जाती है।
3: और बकरी हमारी ऐसी है कि जब जैसे पकड़ो उसको पैर पकड़ के दूध निकाल।
2: जी सर।
3: गाय बैल भैंस तो एक समय पे दूध देते हैं सुबह शाम।
2: जी।
3: बकरियां ऐसी है हमारी कि वो कभी भी दूध पकड़ा और दूध निकाल लिया। तो अब क्या होता है कि जैसे हम इससे अधिक से अधिक लाभ कैसे ले सकते हैं।
2: जी सर।
3: तो एक तो इसमें कोई बड़ा ही लागत चारे पानी घोसे की नहीं
2: है। हाँ, ज्यादा काटी नहीं
3: है ना। दूसरा एक ये है कि हम जो हमारे घर में जो बकरियां हैं उसको अच्छी नस्ल की पालें।
2: जी।
3: जमुनापारी सिरोही आदि नस्लें जो अच्छी है।
2: जी।
3: उससे क्या होगा कि हमको आमदनी ज्यादा होगी। और दूसरा दो दो बच्चे देगी।
2: हाँ, डबल आमदनी।
3: डबल आमदनी। दूसरी बात यह है कि जैसे अभी हमारे यहाँ जागरूकता अब धीरे धीरे फैल रही है पशुपालन कि जैसे ही बकरे होते हैं बच्चे जो एक तो बकरा या बकरी होता है।
2: हाँ।
3: तो बकरों को हमारे यहाँ चिमटा लगवाने की परंपरा कम है।
2: हाँ, हाँ, वाद्या करा।
3: वाद्या नहीं करते।
2: जी जी।
3: क्योंकि उतनी समझदारी।
2: जी जी।
3: जो समझदार है गोटरी फार्म चला रहे हैं वो तो कर ही देते हैं,
2: उनको
3: तो कुछ कहने की जरूरत पड़ती
2: जी,
3: है
2: जी, जी।
3: पर हमारा ये संदेश हम चाहते हैं घर बकरी पालक तक जाए।
2: जी सर।
3: क्योंकि अगर वो उसको चिमटा लगवा लेगा वाजिया करवा देगा
2: जी
3: तो वो कम समय में अधिक से अधिक वजन कर लेगा,
2: कवर कर लेगा और उसका मूल्य
3: अगर हाँ अगर ज्यादा वजन अच्छा फेटी बकरा बना वजनदार तो उसको कीमत उसकी अच्छी मिलेगी।
2: अच्छी मिलेगी
3: तो उसको अधिक से अधिक लाभ होगा।
2: जी।
3: दूसरा एक ये है कि जो बकरियों का रख रखाव के साथ साथ
2: जी जी
3: कुछ इनकी बीमारियां जो है।
2: हाँ।
3: इससे भी हमने देखा कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है।
2: जी।
3: कई कई कई बार क्या होता है कि पूरे घर में बकरियां पूरे पूरा
2: एक साथ
3: हाँ खत्म हो जाती।
2: जी जी।
3: तो उसमें मेन जो इनकी संक्रामक बीमारी है वो है हमारी पीपीआर।
2: पीपीआर।
3: पीपीआर नामक बीमारी है जिसमें दस्त भी लग जाते हैं, निमोनिया भी हो जाता है, आवाज भी बैठ जाती है, आंख में सूजन आ जाता है, ऐसे
2: लक्षण
3: दिखते हैं और खत्म हो जाते हैं।
2: जी जी।
3: तो ये पीपीआर नाम की जो बीमारी है
2: जी जी
3: इसका टीका हमारे यहाँ पशुपालन विभाग की ओर से निःशुल्क रूप से किया जाता है।
2: जी जी।
3: और इसका टीका एक बार जीवन में लगा लिया दूसरी

0: जरूरत ही नहीं पड़ती।
1: जी जी, तो सर ये टीका जो लगता है जो बकरियों में कौन सी आयु में लगता है सर?
0: ये तो हम 4 महीने 5 महीने के बाद सब में लगा,
1: सब में लगा सर।
0: बाकी जीवन में एक ही बार लगवा लोगे
1: जी जी
0: तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
1: खतरनाक बीमारियों से एक साथ मरने वाली
0: ये बीमारियां
1: जी जी।
0: और दूसरी हमारी चलती है वो अपना इंट्रोटॉक्सिमिया, जिसको आंत्र विषाक्त कहते हैं
1: जी जी,
0: आंत्र शोक
1: जी। हाँ, पेट में कृमि पाए जाते हैं,
0: हाँ आंत फेफड़ आंतों में सूजन आ जाती है तो दस्त लग जाते हैं
1: जी जी।
0: हमारे यहाँ कहते हैं दस्त लग लग के,
1: हाँ हाँ,
0: रात में शाम को दस्त लगे, शाम सुबह
1: में खत्म हो जाए जी जी।
0: तो वो इंट्रोटॉक्सिमिया है, आंतों की विषाक्तता है
1: जी जी,
0: उसमें दस्त लगते हैं तो उसमें एकदम मृत्युदर होती है
1: जी जी।
0: तो उसके लिए भी हमारे यहाँ इंट्रोटॉक्सिमिया का वैक्सीन आ गया है
1: जी जी।
0: तो वो भी हर 6 महीने में लगता है,
1: 6 महीने में एक बार,
0: हाँ। तो वो भी हमारे जो बकरियां हैं उनको हम बिल्कुल अपने पास जो भी नजदीकी अस्पताल है वहां जाके संपर्क करके इस वैक्सीन को लगवा लें
1: जी सर।
0: वैक्सीन बहुत बड़ी सुरक्षा है
1: जी,
0: ये हमें बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि हम समझते हैं नहीं, और कभी जब ऐसी बीमारियां चलती है तो फिर हमारा बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो
1: जी, एक साथ मर जाते,
0: एक साथ मर जाते
1: जी।
0: तो वैक्सीनेशन हमें बहुत जरूरी करवाना है। बाकी दूसरा जो सीजनली कुछ चीजें हैं, जैसे अभी बारिश में जैसे ये मुंह में होठों पे घाव
1: हो जाते हैं, पांव में भी हो जाता है,
0: हाँ, वो जिसको कंटीजियस एक्थाइमा कहते हैं
1: जी जी।
0: तो इसमें क्या है, जैसे हमारा पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह से मुंह धो, एंटीसेप्टिक मलम आते हैं उनसे अपन लगाव करो, तो वो
1: पका मुंह पका,
0: तो उसमें अपन जाके अस्पताल के पास जो भी नजदीक है वहां जाएंगे तो अपना इलाज बराबर हो जाएगा
1: जी जी।
0: अभी जैसे बरसात के समय में इसके साथ साथ में पैरों की सड़न हो जाती है
1: जी जी,
0: गीले में चलती है कीचड़ में, तो उसमें भी घाव वगैरह हो जाते हैं, कभी कभी वो जंतु वंतु रख जाते हैं, वो दिक्कत आ जाती है
1: जी जी।
0: तो उसके लिए भी हम पोटेशियम परमैंगनेट से उसको पेट को धोके सूखी जगह में रखें,
1: लाल दवाई भी,
0: लाल दवाई भी
1: जी जी।
0: और जो भी अस्पताल में जाके एंटीसेप्टिक मलम वगैरह लेके उसका इलाज करवा लेंगे तो वो भी कवर हो जाए, वो संक्रामक नहीं,
1: संक्रामक नहीं मतलब फैलने वाला नहीं,
0: फैलने वाला नहीं। जो कॉन्टेजियस संक्रामक बीमारियां ऐसी रहती है जो एक के दूसरे से संपर्क से,
1: हाँ, उनके टीके लगते हैं,
0: उनके टीके लगते हैं जो पीपीआर और इंट्रोटॉक्सिमिया, ये अपने जीवन काल में पशुओं को बहुत जरूरी है लगभग
1: जी जी।
0: अगर इससे हम बचा लेंगे तो हमारा कोई नुकसान आर्थिक नहीं होगा
1: सर। बकरियों को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देने के लिए और उनको आहार कैसा देना चाहिए प्रतिदिन? जैसे
0: आहार के लिए ऐसा है, हमारे यहाँ क्या है, वैसे तो बकरियों को खूब बड़ा दाना पानी लगता नहीं है, पर जैसे हमारा कोई बकरी गाभिन है तो कम से कम हमारे यहाँ बकरियों का जो गर्भकाल होता है वो 5 महीने का,
1: 5 महीने का होता है,
0: 5 महीने 150 दिन का
1: जी जी,
0: 150 से 160 दिन ज्यादा 55 दिन। तो हाँ, कम से कम जो हमारा गाभिन पशु है उसको हम कम से कम 2 महीने पहले,
1: हाँ, चरने जाने से रोक लेना चाहिए,
0: हाँ, उसको अलग रख ले
1: जी,
0: उसका बांधना बैठना उठना अलग करें और उसको दाना चालू कर दे 200-250 ग्राम
1: प्रतिदिन,
0: प्रतिदिन के हिसाब
1: जी।
0: तो वो जो हमारा उसका जो आने वाले बच्चों के लिए,
1: हाँ,
0: वो जो उसके उसका अडर अडर बनेगा उसका, दूध दूध की वो जो तैयारी है,
1: हाँ,
0: उस हिसाब से उसका दूध का उत्पादन बढ़ेगा, उसके शरीर की आवश्यकता पूरी होगी
1: जी जी,
0: तो बच्चे भी अच्छे बनेंगे उसके,
1: हाँ,
0: तो वो जरूरी है अपने, उससे अपने को उत्पादन अच्छा मिलेगा
1: जी सर।
0: और प्रोजनी जो आएगी बच्चे,
1: हाँ,
0: वो वजन भी अधिक समय में कम समय अधिक ग्रहण करेंगे
1: जी जी,
0: तो आर्थिक लाभ भी हमको अच्छा होगा उससे।
1: तो सर जी ये बताइए कि अगर हमारे किसान भाई पशुपालन विभाग से, अगर जिनके पास आर्थिक स्थिति से कमजोर है, तो ऐसे किसानों को, ऐसे हितग्राही को पशुपालन विभाग या सरकार से क्या क्या दिया जाता है सर?
0: हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका
1: जी।
0: पशुपालन विभाग से हमारी बकरी की योजना लागू है जिसमें 10 बकरी देसी
1: जी
0: और 1 बकरा उन्नत नस्ल का,
1: उन्नत नस्ल,
0: तो 10 बकरी और 1 बकरे की 1 इकाई कही गई
1: जी जी।
0: और इसकी कीमत कम से कम पूरी इकाई लागत जो है वो 77,000-77,500 रुपए के लगभग
1: लगभग है।
0: तो इसमें हमारे आदिवासी और हरिजन जो किसान है
1: जी,
0: उनके लिए 60% की सब्सिडी
1: अनुदान है,
0: अनुदान
1: जी जी,
0: करीब 45,000 के आसपास है
1: जी,
0: 77,000 के ऊपर ऊपर जो भी बने उसका 60%,
1: हाँ,
0: और सामान्य वर्ग के लिए 50%,
1: 50%। तो सर जी ये बताइए कि उसमें हमारे किसान भाई के पास क्या क्या होना चाहिए या जमीन होना चाहिए क्या?
0: नहीं, इसके लिए कोई ज्यादा जमीन अमीन की जरूरत नहीं है, पर ये जो योजना है
1: जी
0: वो बैंक से संबंधित है।
1: जी जी,
0: हमारी सब्सिडी के साथ साथ
1: बैंक
0: का लोन
1: लोन लोन देगी।
0: अब अगर हमारे हितग्राही का कोई कहीं से खाता वाता डिफॉल्टर हो,
1: हाँ,
0: कोई कर्ज बाकी हो,
1: हाँ,
0: तो ये हमें इसका लाभ लेने में
1: दिक्कत आएगी।
0: हाँ। इसीलिए हमारे बैंक का कोई लोन ना हो, हमारा बैंक का क्रेडिट अच्छा हो,
1: ऐसा किसान उसका लाभ ले,
0: ऐसा किसान इसका बराबर लाभ ले सकता है। बिना बैंक के सैंक्शन किए इस योजना का लाभ उसको हम नहीं दे सकते।
1: सर, बकरी पालन के अलावा भी हमारे यहाँ पे पशुओं पे जो दुधारू पशुओं को बढ़ावा देने के लिए जैसे डेयरी पालन है या अन्य छोटे जो इकाई है ऐसी कोई दी जाती है?
0: हाँ, उसमें दी जाती है ना, चार पशु, पांच पशु या दस पशु, दो इकाई है, आचार विद्या सागर योजना।
1: जी जी,
0: उसमें गाय पालन और भैंस पालन दोनों का है।
1: जी जी,
0: गाय में अपन जर्सी एचएफ भी पाल सकते हैं, गीर साहिवाल वगैरह देसी नस्ल की भी पाल सकते हैं।
1: जी जी,
0: तो भैंसों में भैंसों का ही वो भी पांच और दस की इकाई।
1: जी जी,
0: तो अपन जो चाहे पांच पशु की इकाई के लिए उसमें एक एकड़ जमीन की जरूरत है,
1: हाँ,
0: और दस पशु के लिए दो एकड़ जमीन,
1: दो एकड़।
0: और जो हितग्राही जिसके नाम से अपन योजना का लाभ लेना चाहे,
1: हाँ,
0: जमीन उसी के नाम की
1: होना चाहिए।
0: और वही है, वो बैंक से संबंधित है,
1: हाँ,
0: जब तक फिर उसका बैंक का व्यवहार अच्छा होगा,
1: हाँ,
0: तो बैंक उसको लोन कर देगी।
1: जी जी,
0: इसमें आदिवासी हरिजन लोगों के लिए 2 लाख के लगभग है अधिकतम।
1: जी जी जी,
0: और इसमें सामान्य वर्ग के लिए 1.5 लाख।
1: जी,
0: ये हमारी लिमिट है।
1: जी,
0: और जब तक बैंक सेंक्शन नहीं देगी तब तक इसका लाभ किसी पशुपालक को नहीं मिल पाएगा।
1: सर जी बताइए कि जैसे हमारे किसान भाई अधिकतर लोन लेकर करते हैं या फिर किसानों के पास में घर पे भी देसी गाय और बैल भैंस होते हैं और बकरियां भी होती है, तो क्या सर इनका बीमा करवाने के लिए शासन के पास कोई इसकी योजना है?
0: हाँ, शासन के पास बीमा की भी योजना है।
1: जी जी,
0: क्योंकि आजकल हमारा पशु काफी महंगा हो गया।
1: जी,
0: इसलिए शासन ने पशुधन बीमा योजना लागू करी है।
1: जी जी।

0: 10 बकरियां हैं
1: जी जी।
0: अब मान लो कोई दो बकरी भी मर गई तो हमारा बीमा उससे कवर हो जाता है, हमारी लागत भी वसूल हो जाती
1: जी जी।
0: तो जानकारी के अभाव में हम बीमे का भी लाभ
1: नहीं ले पाते हैं। तो सर जी हमारे यहाँ पे बहुत सारे किसान भाई है जो कि उनके पास दो बैल तो होते ही हैं, लेकिन उन दो बैलों का भी बीमा नहीं करवाते हैं। तो सर जी बीमा करवाने की जो प्रक्रिया क्या है?
0: बीमा प्रक्रिया कोई ज्यादा जटिल नहीं है
1: जी जी।
0: आजकल सब क्या है, ऑनलाइन ऐप के माध्यम से होता है
1: जी।
0: इनके बकरी वो बीमा के एजेंट रहते हैं, उनके द्वारा नियुक्त होते हैं
1: जी।
0: जो प्राइवेट कंपनियां करती है
1: जी जी,
0: जो शासन से बीमे के लिए अनुबंध करते हैं साल के लिए, दो साल के लिए, जो भी हो, जैसा भी अनुबंध शासन से हो जाए
1: जी जी,
0: वो उनके एजेंट रखती है। और जो हमारे विकास खंड स्तर पर जो पशु चिकित्सक है
1: जी जी,
0: पशु चिकित्सा अधिकारी है
1: जी जी जी।
0: वो इनका बीमा करते हैं
1: जी सर।
0: या पशु चिकित्सालय जहाँ पर है वहाँ पे हमारे पशु चिकित्सक सर्जन की पोस्ट होती है,
1: हाँ,
0: वो बीमा करते हैं,
1: बीमा करते हैं।
0: और नहीं तो अपने विकास खंड में जाए सीधे
1: जी।
0: और वहाँ जो अपने चिकित्सक है उनसे बात करें,
1: हाँ,
0: तो अपना आधार कार्ड, नहीं आजकल आधार कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट, और अपने बैंक की पासबुक
1: जी,
0: ये चीजें लगती है। और उसमें एक अपना जैसे आदिवासी या जो भी हो अपनी कैटेगरी के लिए प्रमाण पत्र मिल जाए,
1: हाँ,
0: उसमें क्या सब्सिडी कुछ अंतर रहता
1: है, स्थायी जाति प्रमाण पत्र से,
0: हाँ, तो वो मिल जाए तो वो उसका लाभ हम ले सकते हैं
1: जी जी।
0: तो ये मेरा सभी से अपील है कि अपन सभी अपने पशुओं का अधिक से अधिक बीमा करवाएं
1: जी,
0: और अपने नजदीकी जो भी अस्पताल है वहां जाके अपन संपर्क करें और इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लें
1: जी जी। तो किसान भाइयों, अभी बकरी पालन एवं पशुपालन के संबंधित हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर के एल डामोर साहब, और डामोर साहब ने बहुत अच्छी पशुपालकों को हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी। तो किसान भाइयों, ऐसी जो जानकारी जो आपको दी है, ज़रूर आप उनका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। और सर जी हमारे स्टूडियो में आए श्री डामोर साहब को, और रेडियो पर सुनने वाले सभी किसान भाइयों को नमस्कार।
0: नमस्कार,
2: हूँ से आरजे राकेश
3: अने हूँ से आरजे कमता डामोर
2: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती वाड़ी आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। तो चालो किसान भाइयों, हाव लई एक नानो ब्रेक, अने ब्रेक मां आपू हामलवाना से आपड़ा आदिवासी भील समुदाय मां जब लाड लाडियां पैणे अने तीन मां जो गावे त्यू घणो मजानो अने असल गीत हामली ने पासा भेळा था हूं कार्यक्रम खेतीवाड़ी मां जाजो मती कई था हामल तारे जो झाबवानी आवाज पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM।

0: जाते थे। हमारे गांव के जो ग्रामीण अंचल आदिवासी भाई बहन है इसका पालन करते थे और बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते थे।
1: जी
0: तो इसकी क्या कुछ विशेषताएं थी जिन जब ये शासन तक पहुंची इसकी विशेष जानकारी तथा ये भी मालूम पड़ा कि ये विलुप्त होने वाला है।
1: जी जी।
0: तो शासन ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया क्यों ना इस प्रजाति का हम संरक्षण किया करके इसकी संख्या बढ़ाई जाए और भविष्य में कभी योजनाएं लागू करेंगे तो योजनाओं के माध्यम से किसान भाइयों तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
1: जी सर, ये बताइए कि वैसे तो यहाँ पर देसी मुर्गियां पाली जाती है लेकिन कड़कनाथ और देसी में क्या अंतर है?
0: अंतर तो बहुत कुछ है। आप देख सकते हैं कि जो कड़कनाथ है, कड़कनाथ मूलतः तीन प्रजाति में पाया जाता है। एक होता है गोल्डन ब्लैक स्ट्रेन, एक होता है पेल्सिन ब्लैक स्ट्रेन, एक होता है आपका जेट ब्लैक स्ट्रेन।
1: जेट ब्लैक।
0: अब ये जो कड़कनाथ है इसके अगर मूल लक्षण देखें, शारीरिक विशेषताएं देखें, तो सभी अंग इसके काले होते हैं।
1: जी।
0: और नॉर्मल जो देसी मुर्गा मुर्गी रहते हैं उसके कई प्रकार के कलर होते हैं, लाल, पीला, हरा, व्हाइट, ये सब देसी होते हैं।
1: जी जी।
0: अब इसमें अगर हम अंतर करके देखें किसान भाइयों कि आखिर कड़कनाथ ऊपर क्यों माना जाता है, कुछ तो इसके विशेष गुण हैं जिसके कारण लोग कड़कनाथ के प्रति आकर्षक होते हैं।
1: जी जी।
0: तो इसका कारण क्या है कि ये काले रंग का होता है।
1: जी जी।
0: अब काला रंग जो होता है, काला रंग नॉर्मली ऐसे ही नहीं आता है।
1: जी जी।
0: ये सब कुदरती होता है।
1: जी सर।
0: तो कुदरती मतलब ये होता है सूर्य की किरणों से।
1: जी।
0: तो सूर्य की किरणें ही इसके काला रंग बनाने में मदद करती है।
1: जी जी।
0: और वो किरणें से क्या मिलता है, इसकी चमड़ी में मेलानिन पिगमेंट का सिंथेसिस होता है।
1: जी सर।
0: उस मेलानिन पिगमेंट के कारण ये काला होता है तथा साथ में इसके खाने पीने की जो प्रवृत्ति है।
1: जी सर।
0: अगर ये फार्मिंग करते हैं तो वो एक अलग तरीका होता है, लेकिन अगर हम कुदरती और नेचुरल पद्धति में पालते हैं जंगल में खुले में, तो उसके खाना पीना, इसका जो खाने का तरीका है, ये कीड़े मकोड़े खाएगा, मिट्टी खाएगा, हरी पत्ती खाएगा, ऐसे ऐसे चीज खाएगा जिससे कि इसमें लोह तत्व ज्यादा बढ़े।
1: जी।
0: तो लोह तत्व बढ़ने के कारण तथा मेलानिन पिगमेंट बढ़ने के कारण ये काला रंग होता है।
1: जी।
0: अब अगर दोनों में अंतर करते हैं कि देसी तथा कड़कनाथ की विशेषताएं तथा इसमें अंतर क्या है,
1: जी,
0: तो हम देखते हैं कि इसमें जो प्रोटीन का प्रतिशत रहता है वो करीब 25-26% रहता है, जबकि दूसरे पक्षी जो देसी रहते हैं उनमें करीब 18-20% रहता है। तो हम अंतर देखते हैं 5-6% ज्यादा ही रहता है।
1: जी सर।
0: अब देखें कि कोलेस्ट्रॉल,
1: जी,
0: जो कि कोलेस्ट्रॉल और फैट ना के बराबर रहता है।
1: जी।
0: आजकल का समय है कि कोलेस्ट्रॉल और फैट फ्री चीजों का उपयोग खाने में करें,
1: जी,
0: तो बीमार पेशेंटों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: और लेनोइक एसिड एक तत्व और होता है, वो भी इसमें मात्र 0.1% होता है। अगर ये चीजें दूसरे पक्षी में ज्यादा रहेंगी तो वो कहीं ना कहीं शरीर के लिए नुकसानदायक रहती हैं, लेकिन कड़कनाथ एक जैविक औषधि है
1: जी,
0: इसलिए ये जैविक औषधि के रूप में इसका उपयोग करते हैं।
1: जी सर। इसको अधिकतर इसको देखा गया कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस जो होते हैं, जैसे विटामिन B1 रहता है, B2 रहता है, तो सर ये हमारे रोगों के उपचार के लिए भी काफी फायदेमंद होता है।
0: देखिए सर, कड़कनाथ एक तरह से, सबसे पहले तो बता दूं, मिनरल इसमें,
1: जी जी,
0: आयरन, लोहा,
1: जी,
0: लोह तत्व से भरपूर है।
1: जी जी।
0: अब ऐसा कोई व्यक्ति या महिला या बच्चे जिनमें खून की कमी है,
1: जी जी,
0: अरक्तता बोलते हैं खून की कमी को, हम क्या बोलते हैं, एनीमिया, हिंदी में अरक्तता,
1: अरक्त,
0: खून की कमी से होने वाली बीमारी।
1: जी सर।
0: तो ऐसे समय में अगर हम कड़कनाथ के मास का सेवन हफ्ते में 2 बार भी करते हैं,
1: जी,
0: तो निश्चित है उसकी खून की कमी की दूरी पूर्ति हो जाएगी।
1: जी सर।
0: दूसरी विटामिन्स की बात आती है तो इसमें बी कॉम्प्लेक्स भरपूर मात्रा में, B1, B2, B12, फोलिक एसिड, ये पूरा बी कॉम्प्लेक्स का एक ग्रुप है, भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इससे क्या होता है कि ये जैसे किसी में लकवा की बीमारी हो उससे वो भी इसको ठीक कर देगा, किसी में अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है वो भी ठीक कर देगा, किसी में माइग्रेन की है वो भी ठीक कर देगा, तथा साथ में अगर इसके अंडे का उपयोग करते हैं तो अगर किसी की किडनी खराब होती है तो वो हम अंडे खाने से किडनी भी ठीक हो जाती है, किसी में अगर शुगर पेशेंट है, अंडे खाने से शुगर पेशेंट भी धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाता है।
1: जी सर अधिकतर देखा गया है कि जो फार्मों में किसान भाइयों के यहाँ कड़कनाथ अगर किसान भाई पालना चाहे तो उसे किस तरह से उसको पालने के लिए उसे कहाँ से इसका चूजे मिलेंगे सर?
0: किसान भाइयों बहुत अच्छे प्रश्न किया। हमारा जो मध्य प्रदेश शासन है किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं समय समय पर लाता रहता है
1: जी।
0: वो कड़कनाथ के लिए विशेष योजना कड़कनाथ के नाम से ही बनाई है, 80% अनुदान पर कड़कनाथ कुक्कुट पालन योजना
1: जी सर।
0: ये है योजना करीब 4400 रुपए की है
1: जी सर।
0: इसमें हम किसान भाइयों से 1100 रुपए लेते हैं
1: जी सर।
0: और बाकी का जो 75% जो रहता है राशि 3300 वो सब्सिडी रहती है
1: जी सर,
0: अनुदान रहता है। हम इसके बदले किसान भाइयों को 40 बच्चे 28 दिवसीय उपलब्ध कराते हैं
1: जी।
0: साथ में 1390 रुपए का उनको खिलाने के लिए दाना उपलब्ध कराते हैं, साथ में 200 रुपए के आसपास की उनको औषधि उपलब्ध कराते हैं
1: जी।
0: और ये सब योजना के अंतर्गत होता है। इसके अलावा अगर योजना से लोगों की हमारे किसान भाइयों की पूर्ति नहीं होती है
1: जी।
0: अगर वो बड़े मात्रा में पालना चाहते हैं
1: जी, जी।
0: तो बड़ा मात्रा में अगर पालना है तो प्राइवेट भी आकर चूजे कड़कनाथ मुर्गी फार्म से प्राप्त कर सकते हैं
1: जी।
0: तो अभी वर्तमान में जो तथा साथ में अगर कोई अच्छी संख्या में कड़कनाथ का बिजनेस करना चाहता है और ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि हमारे कड़कनाथ फार्म में आके वो प्रशिक्षण ले सकते हैं
1: जी जी।
0: प्रशिक्षण ले उपरांत ही अगर वो कड़कनाथ चीजों की देखभाल करेंगे बड़े करेंगे तो उनको ज्यादा फायदा मिलेगा
1: जी जी सर। सर जी ये बताइए कि जैसे अपन जो यहाँ से जो किसान भाई चूजे ले जाता है और वो पालता है तो उसमें सर वैक्सीन या टीकाकरण का किस तरह से क्या होता है?
0: देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। किसान भाइयों आज का समय बड़ा ही बलवान है, बड़ा ही वैसा हो गया है कि बगैर टीकाकरण के आप किसी चीज का पालन कर नहीं सकते हैं। तो टीकाकरण तो बहुत जरूरी है। टीकाकरण होने से जो विषाणु जनक बैक्टीरिया जनक जो जितनी बीमारी है उसके खिलाफ उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है
1: जी सर।
0: तो हम कोशिश करें हमारे फार्म पे हम जैसे ही बच्चा मशीन से निकलता है उसको पहले दिन ही टीका लगा दिया जाता है
1: जी जी सर।
0: उसके उपरांत फिर 6वें-7वें दिन रानीखेत का टीका लगाया जाता है
1: जी सर।
0: उसके पश्चात करीब जब वो 12 से 14 दिन का होता है तो बुम्बारो बीमारी का टीका लगाया जाता है
1: जी जी।
0: उसके पश्चात जब वो 21 दिन का होता है तो उसे रानीखेत लासोटा का टीका लगाया जाता है
1: जी जी।
0: जब वो 28 दिन का होता है तो बुम्बारो का बूस्टर डोज कराया जाता है
1: जी।
0: और अगर हम जैसे पालन करना चाहते हैं तो टीकाकरण के बगैर मुर्गी पालन संभव नहीं है
1: जी सर।
0: तो ये टीके तो यहाँ होते हैं, इसके अलावा हम 35 से 40 दिन की उम्र में चिकन पॉक्स फाउल पॉक्स बीमारी आती है जो हमारे ट्राइबल एरिया में काफी देखने को मिलती है
1: जी जी।
0: जिसमें पक्षियों की शक्ल सूरत खराब हो जाती है, दाने दाने निकल आते हैं, उस बीमारी का भी टीका लगवाना चाहिए
1: जी जी।
0: इसके पश्चात फिर 2 महीने की उम्र में रानीखेत का भी RTB का भी टीका लगता है
1: जी।
0: तो टीकाकरण तो बहुत जरूरी है
1: जी।
0: टीकाकरण कैसे किया जाता है, कब कब किया जाता है, इसका हम ट्रेनिंग के जरिए किसान भाइयों को जानकारी दे सकते
1: हैं। सर जी बताइए कि हमारे किसान भाई अगर यहाँ से चूजे ले जाएंगे और जिनको पालेंगे तो उनको पोल्ट्री फार्म में किस प्रकार की देखरेख करना पड़ती है, जिनके लिए ज्यादातर सावधानियां रखना है?
0: देखिए किसान भाई के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम कोई भी प्लानिंग करने से पहले फार्मिंग करने से पहले उसकी ट्रेनिंग प्रशिक्षण जरूर ले लें
1: जी जी सर।
0: अगर हम प्रशिक्षण ले लेते हैं तो हमको कुछ उसकी जानकारी उसकी मैनेजमेंट के संबंध में प्राप्त हो जाती है
1: जी जी।
0: तो फिर हमको क्या परेशानी नहीं आती, हमको परेशान नहीं होना पड़ेगा
1: जी सर।
0: तो सबसे पहले कोशिश करें शासन द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध बड़े आसान तरीके से कराया जाता है
1: जी जी।
0: और उसके पश्चात हम अगर ट्रेनिंग अच्छी प्राप्त कर लेते हैं
1: जी जी,
0: उसके बाद हम प्लानिंग करें कि हमको कड़कनाथ का पालन किस प्रकार का करना है, छोटी संख्या में करना है कि बड़ी संख्या में करना है, हमारी क्षमता कैसी है, उस क्षमता के ऊपर हम किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट पैसा लगा सकते हैं, कैसे उसमें, क्योंकि जब उसका पालन करेंगे तो निश्चित उसमें पैसा बहुत खर्च होता है
1: जी जी।
0: और हम उस पैसे को 3 गुना 4 गुना कैसे करें।
1: जी सर, तो
0: एक अच्छे प्रशिक्षण उपरांत ही हम उनका अच्छा पालन कर सकते हैं और अच्छा हम पैसा कमा सकते हैं।
1: हाँ सर, देखा गया है कि अधिकतर कड़कनाथ जैसे छोटे चूजे होते हैं जिसमें प्रकाश की जरूरत होती है और इसको पानी भी समय समय पर देना पड़ता है और बड़े चूजों को भी अलग रखना पड़ता है, तो ऐसा क्यों किया जाता है सर?
0: हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया किसान भाइयों के लिए। देखिए साहब, जब भी किसी चूजे का जन्म होता है, अंडे से बाहर निकलता है, चूजा करीब 21 दिन में बाहर निकलता है।
1: जी जी।
0: तो बच्चों के विकास के लिए, चूजों के विकास के लिए गर्मी की जरूरत पड़ती है।
1: जी जी सर।
0: और वो गर्मी हम कैसे देते हैं? सबसे पहले उन चूजों को हम एक कमरे में रखते हैं, उस कमरे को बोलते हैं ब्रूडर हाउस।
1: जी सर।
0: मुर्गी पालन में हर उम्र के लिए अलग अलग कमरे होते हैं।
1: जी जी।
0: और सबसे पहले बच्चों का कमरा, जो उसको ब्रूडर हाउस बोलते हैं, जब वो 2 महीने के हो जाते हैं, दूसरा उसको शिफ्ट कर देते हैं, उसको ग्रोवर हाउस बोलते हैं, हिंदी में हम उसको पठोर बोलते हैं।
1: जी।
0: जब वो अंडे देने लगे हो जाती हैं, तो हम उनको लेयर हाउस में शिफ्ट कर देते हैं, तो लेयर हाउस कहलाता है।
1: जी जी।
0: तो ब्रूडर हाउस जो फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें हम चूजों का पालन पोषण करते हैं, तो सबसे पहले हम उसमें क्या है निर्भर ये करता है कि वो पैदावारी किस समय हो रही है चूजों की, क्या गर्मी के मौसम में हो रही है, क्या बारिश के मौसम में हो रही है, क्या सर्दी के मौसम में हो रही है।
1: जी।
0: तीनों मौसम में चूजों की देखभाल करने के तरीके अलग अलग हैं।
1: जी जी।
0: अगर गर्मी का मौसम है, जैसे मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, यहाँ देखेंगे कि पहले से ही गर्मी बहुत होती है।
1: जी जी।
0: नॉर्मली चूजे के विकास के लिए 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता
1: होती है तापमान,
0: तो इसमें तो काफी पर्याप्त मात्रा में बाहर का टेम्परेचर रहता है, करीब 42-45 तक पहुंच जाता है, और कमरे का टेम्परेचर आराम से 37-38 के आसपास रहता है। तो मेरे ख्याल से ये गर्मी के मौसम में अगर हम चूजा पालते हैं तो ब्रूडिंग प्रकृति के द्वारा ही हो जाती है, प्रकृति की लाइट गर्मी से ही हो जाती है।
1: जी जी।
0: उसमें देखभाल कम करनी पड़ती है।
1: जी जी।
0: लेकिन अगर यही हम बारिश के मौसम में करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि बरसात हो रही है, तो निश्चित है टेम्परेचर गिरेगा।
1: जी जी।
0: तो सर्दी पैदा होगी और मालूम पड़ा कि 8 घंटे की सर्दी हो गई, अगले 8 घंटे में थोड़ी सी गर्मी पड़ गई, तो ये वेरिएशन चलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हमको थोड़ा देखभाल ज्यादा करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या है, उसमें लाइट जो रहती है बिजली,
1: जी जी,
0: तो 200 वाट का बल्ब यूज करते हैं। अगर हम जैसे 100 बच्चे पालते हैं,
1: जी,
0: तो कम से कम 200 वाट के 2 बल्ब उसके ऊपर लगाए जाते हैं, जिससे क्या है उजाला तो मिलता ही है उसे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको एक गर्मी भी पैदा करते हैं। और अगर यही हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी में अगर चूजों का पालन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कभी कभार बहुत ज्यादा सर्दी गिरती है, शीत लहर चलती है, तो उस समय चूजों का नुकसान होने की संभावना रहती है।
1: जी जी।
0: तो लेकिन हमको क्या, गर्मी 35-37 डिग्री मेंटेन करना है, तो उसमें आजकल हीटर आते हैं और हम हीटर लगा देते हैं।
1: जी जी।
0: तो आजकल हीटर क्या बड़ा ही
1: एक संतुलित मात्रा में जो उसके
0: अच्छे तकनीकी के बनाए जा रहे हैं, जो ऑटोमेटिक रहते हैं, वो 37 डिग्री तक जाएंगे, कट हो जाएंगे।
1: जी जी।
0: और नीचे जब वो वापस आएगा 32-33, फिर चालू हो जाएगा,
1: फिर चालू ऑटोमेटिक
0: कट ऑफ होते हैं, तो कमरे का तापमान मेंटेन रखते हैं, जिसके कारण क्या है चूजों में कोई समस्या नहीं होती और उनका गर्मी से विकास होता रहता है।
1: जी जी।
0: तो सर्दियों में थोड़ा अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती है।
1: जी जी जी जी। सर, हमारे किसान भाई क्या है कि कम मात्रा में अगर पालते हैं, तो किसान भाइयों को अधिकतर देखा गया है कि जो पोल्ट्री हाउस में प्रवेश के लिए किसी एक व्यक्ति को जाना पड़ता है, तो इसका क्या कारण है?
0: हाँ जी, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये फर्स्ट स्टेप है पोल्ट्री फार्म को अच्छा चलाने के लिए। अगर हमारी ये शुरुआत अच्छी रहती है, हमारा ये देखभाल अच्छा रहता है, तो इसमें शुरुआत का मतलब ये हो गया बायो सिक्योरिटी।
1: जी जी।
0: तो बायो सिक्योरिटी जो मेजर रहते हैं,
1: जी,
0: बगैर उसके मुर्गी फार्म चलाना बड़ा ही मुश्किल है, अन्यथा कोई ना कोई बीमारी बाहर से आएगी।
1: जी जी।
0: और वो हमको परेशान करेगी और नुकसान करेगी।
1: जी जी।
0: तो बायो सिक्योरिटी मेजर अपनाना बहुत जरूरी है। अगर हम छोटा पोल्ट्री फार्म हो या बड़ा पोल्ट्री फार्म हो, किसी भी व्यक्ति को प्रवेश ना करने दें।
1: जी जी।
0: उसको बाहर ही रखें।
1: हाँ।
0: मुर्गी के कमरे में अंदर तो कभी भी प्रवेश ना करने दें।
1: जी जी।
0: हम अगर वो आप भी खुद पालन करते हैं,
1: जी जी,
0: आपके भी जूते चप्पल अलग होना चाहिए।
1: जी जी।
0: आप बाहर से आते हैं तो बाहर के जूते चप्पल बाहर रखें।
1: जी।
0: मुर्गी पालन करने वाले कमरे के जूते 40 डिग्री के कमरे में ही रखें।
1: जी जी।
0: जब उसको अंदर काम करेंगे तो आप उसमें उसका उपयोग कर रहे हैं।
1: जी जी।
0: और कपड़े भी हम समय समय पर बदलते रहें।
1: जी जी।
0: हम हर 2 दिन में

0: 40 बच्चे की स्कीम है
1: जी जी,
0: तो वो तो बहुत छोटी यूनिट है।
1: हाँ सर,
0: लेकिन हम अगर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं
1: जी जी,
0: तो हम स्वयं का पैसा खर्च करके 200-500 हजार बच्चे हम प्राइवेट लेके उनको पाल सकते हैं।
1: पाल सकते हैं।
0: और वो पालने से पहले मैंने आपको पहले ही बताया था प्रशिक्षण रूल है
1: जी जी,
0: कि मुर्गी का शेड कैसे बनना है
1: जी,
0: मुर्गी का दाना कैसे खिलाना है, मुर्गी का वैक्सीनेशन कैसे करना है, मुर्गी का सभी प्रकार का जो मैनेजमेंट देखभाल स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं वो हम सब सिखाते हैं
1: जी जी।
0: तो अगर आप तरीके से काम करेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी।
1: सर जी, अधिकतर देखा गया है कि मीनार है और देसी मुर्गे पालते हैं, इसके अलावा कड़कनाथ जो बिकता है 3 गुनी कीमत में बिकता है, तो किसान भाइयों को इसके लिए और आप क्या कहना चाहते हैं?
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि कड़कनाथ एक यूनिक नस्ल है
1: जी जी,
0: उसके अलग ही लक्षण है, काले रंग का होता है, तो एक जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है
1: जी जी,
0: आपके झाबुआ जिले में कोई व्यक्ति इंदौर से आ रहा है, गुजरात से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, महाराष्ट्र से, तो जिनके रिश्तेदार है, मित्र हैं, वो सीधा यही बोलता है कि भाई कड़कनाथ खाऊंगा मैं
1: जी,
0: जी, जी। तो एक अलग ही उसकी मांग रहती है मेहमानों की
1: जी,
0: तो प्राइवेट लोग उसको अच्छा कीमत पर बेचते हैं, करीब मेरे ख्याल से देसी मुर्गा 500 का बिकता होगा, तो करीब 1000-1200 रुपए के आसपास तो इसकी दाम रखता है प्राइवेट मार्केट में। और अगर हमारे शासन के कड़कनाथ फार्म से लेना चाहते हो तो 540 रुपए के जी हमारे यहाँ उपलब्ध रहता है
1: जी जी,
0: 80 रुपए उपलब्ध है हमारे यहाँ
1: जी जी।
0: मैं अनुरोध करूंगा कि शासन की रेट पे लें तो ज्यादा फायदा मिलेगा किसान भाइयों को
1: जी जी। तो किसान भाइयों, हमारे सर जी दिवाकर साहब ने बहुत ही अच्छी अहम जानकारी दी, और कड़कनाथ के बारे में किसान भाइयों को और अधिक जानकारी लेना हो सर जी तो आपसे कहाँ संपर्क करेंगे?
0: किसान भाइयों, मैं अपना मोबाइल नंबर आपको नोट करा देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 8319050715
1: जी,
0: मेरा नंबर है
1: जी सर।
0: आपको कभी भी मुर्गी पालन के संबंध में प्रशिक्षण लेना हो, पालन करना हो, और किसी प्रकार की कोई मुर्गी पालन के क्षेत्र में कोई समस्या आती है
1: जी जी,
0: कहीं कोई बीमारी आती है, तो मैं जरूर मेरे से सुझाव लें, मैं मदद करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपका मुर्गी पालन में किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो
1: जी जी,
0: सफलता प्राप्त करें
1: जी। तो किसान भाइयों, अभी हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर एस दिवाकर साहब, जो कि प्रबंधक है कड़कनाथ फार्म झाबुआ में, और इन्होंने बहुत अहम जानकारी दी। और किसान भाइयों, हमें लगता है कि आप इन कड़कनाथ की जानकारी सुनकर अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, सर जी जाते जाते हमारे किसान भाइयों को और क्या सलाह देना चाहते हैं?
0: मेरी सलाह यही है कि क्योंकि अपना जो कड़कनाथ है, मैं मुख्य बात तो बताना ही भूल गया आपको।

0: जो कड़कनाथ है एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चयन किया गया।
1: जी जी सर।
0: तो हम एक जिला एक उत्पाद से अगर जुड़ते हैं और हम 1500 बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो शासन ने इसकी एक वेबसाइट भी खोल रखी है।
1: जी जी सर।
0: झाबुआ कड़कनाथ .com।
1: जी सर।
0: आप अपना पर्सनल पालन करें, मुर्गों को तैयार करें।
1: जी जी।
0: और इसमें रजिस्टर्ड पंजीयन करवा लें इसमें।
1: जी जी सर।
0: और आप ऑनलाइन बिक्री भी कर सकते हैं आजकल। आपके पास जितने ऑर्डर आएंगे आप अपना सामान वहाँ भिजवाएं, आप अच्छी आमदनी प्राप्त करेंगे।
1: जी जी। धन्यवाद किसान भाइयों, हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। और सर जी और हमारे मैं कमता डामोर और हमारे सर जी AS दिवाकर साहब जी को लेते हैं विदा। नमस्कार,
0: धन्यवाद।
2: हूँ से RJ राकेश
3: अने हूँ से RJ कमता डामोर
2: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती बाड़ी आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। તો ચાલો કિસાન ભાઈઓ હાવલી એક નાનો બ્રેક અને હામલી લઈએ આપણા ઝાબવા જિલ્લામાં ભીલ સમુદાયમાં જબ લાડો પૈણે અને જાન જાય તીનમાં જો ગાવે ત્યું ઘણું મજાનું અને અસલ ગીત હામલીને પાછા ભેળા થા હું કાર્યક્રમ ખેતીવાડીમાં જાજો મતી કહી થા હામલતા રેજો ઝાબવાની આવાજ સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ પર।

0: કડકનાથ મુરગી પાલન ની વાત્યો. કાર્યક્રમને આગળ વધાવી અને હા મળી કડકનાથ મુરગી પાલનના બારામાં વિસ્તારપૂર્વક વાત્યો. કૃષિથા જોડાયેલા વિશેષજ્ઞ અને અનુભવી લોકો દેખી. ભારત મેં કડકનાથ મુરગા મુખ્ય રૂપે મધ્ય પ્રદેશ રાજ્ય કે ઝાબુઆ જિલ્લે મેં હી મિલતા હૈ, કિંતુ કડકનાથ કી ઇસ બ્રીડ કો અબ તમિલનાડુ, મહારાષ્ટ્ર, છત્તીસગઢ ઓર આંધ્ર પ્રદેશ મેં ભી પાયા જાને લગા હૈ. કડકનાથ મુરગે કી તાસીર ગર્મ હોતી હૈ તથા દેશ સે તકરીબન સભી હિસ્સો મેં ઇસ મુરગે કી કાફી માંગ રહેતી હૈ. યહ તીન પ્રજાતિઓ મેં પાયા જાતા હૈ, જિસમે પેન્સિલ્ડ, ગોલ્ડન ઓર ઝેડ બ્લેક શામિલ હોતે હૈ. ઝેડ બ્લેક મુરગે કે પંખ પૂરે કાલે હોતે હૈ તથા પેન્સિલ્ડ પ્રજાતિ કે મુરગે કા આકાર પેન્સિલ કી તરહ હોતા હૈ. વહી ગોલ્ડન પ્રજાતિ કે મુરગે કે પંખો પર ગોલ્ડન છીટે પડે હોતે હૈ.
1: તો યે જો ફાર્મ હૈ આપકા, કોણ સા બર્ડ હૈ અભી યહાં પર?
2: યે સારા કડકનાથ હૈ.
1: કડકનાથ હૈ. કિતના બર્ડ હૈ અભી?
2: અભી 2200 બર્ડ હૈ.
1: 2200 બર્ડ હૈ. છોટા બર્ડ શુરુ કર કિયા થા આપને?
2: છોટા બર્ડ ભી સ્ટાર્ટ કિયા થા, કુછ લેંગ બર્ડ ભી પરચેસ કિયા થા.
1: જી. અચ્છા, જો યે દેખ રહા હું કઈ સેક્શન હૈ ઇસમે બને હુએ?
2: જી.
1: કિતને સેક્શન હૈ
2: ઇસમે? ચાર સેક્શન હૈ.
1: ચાર સેક્શન હૈ. જો આપકે યે ચાર સેક્શન હૈ, પહેલા સેક્શન મેં ઇસમે બહોત સારે બર્ડ હૈ ઓર બડે હેલ્ધી બર્ડ હૈ, તો યે બર્ડ કિસ તરહ કા બર્ડ હૈ?
2: યે બચ્ચા લાયે થે હમ
1: જી
2: એક દિન કા.
1: જી.
2: તો યે વો બર્ડ તૈયાર હો રહા હૈ ઓર યે અગલે 10 દિન પે લેંગ પે આ જાયેગા.
1: અચ્છા, અંડે પે આ જાયેગા?
2: અગલે 10 દિન મેં યે અંડે પે આ જાયેગા.
1: જી
2: જી.
1: તો કિતના બર્ડ હૈ યે વાલા?
2: યે 1600 બર્ડ હૈ.
1: 1600 બર્ડ યે?
2: હા.
1: કિસ સાઇઝ કા શેડ હૈ યે?
2: ये 30x150 का साइज है
1: जो ये वाला है.
2: ये वाला जो साइज
1: जो इनके लिए जो तैयार
2: जो तैयार बर्ड के लिए है.
1: जी. टैंक लगाया हुआ ऊपर?
2: नहीं, ग्राउंड वाटर चलता है. हाँ, टैंक लगा हुआ ऊपर.
1: टैंक से आता है ना?
2: टैंक से आता है पानी.
1: और जो फीड देते हैं, फीड कौन सा चल रहा है?
2: फीड चल रहा है इनका लेंग फीड. अब
1: लेंग फीड चल रहा है. तो अमूमन एक बर्ड कितना फीड ले लेता है ये?
2: एक 70 ग्राम के आसपास एक बर्ड, जो एडल्ट बर्ड होता है, 70 ग्राम के आसपास फीड लेता है एक दिन में.
1: अच्छा भाई सर, ये बताइए आपने कड़कनाथ से ही शुरुआत क्यों की और क्या विशेषता है इस बर्ड की?
2: जी, बेसिकली कड़कनाथ हमने इसलिए स्टार्ट किया था कि इसमें ना बीमारियां बहुत कम होती हैं.
1: अच्छा.
2: तो जो नया मतलब जो नया काम स्टार्ट कर रहा होता है, मेन नुकसान है पोल्ट्री में वो मोर्टेलिटी की है.
1: जी.
2: आप ये सोच नहीं पाते कि जब तक किसान, मतलब किसान ही समझ पाता है कि मैं किस वेस्ट पे काम कर रहा हूँ, तब तक काफी मोर्टेलिटी हो चुकी होती है और फिर किसान थक जाता है.
1: कड़कनाथ एक टब ब्रीड है,
2: टब ब्रीड है, बीमारी कम आती है, झेल जाता है. हाँ, छोटी मोटी बीमारी हुई तो ये झेल जाता है.
1: यही वजह थी कड़कनाथ,
2: यही वजह थी कड़कनाथ स्टार्ट करने की.
1: जी. और अभी अंडे आ रहे हैं?
2: हाँ, लेंग चल रही है. आगे लेंग बर्ड है.
1: दिखाइए.
2: हाँ.
1: अच्छा, जो लेंग वाला बर्ड है, अभी कितना बर्ड है आपके पास में?
2: अभी 400 बर्ड है.
1: 400 बर्ड है.
2: हाँ.
1: अंडे कितने आ रहे हैं उनसे?
2: 200 अंडे के आसपास डेली की
1: 200 के आसपास प्रोडक्शन है. अंडे रोज आ रहे हैं.
2: हाँ.
1: तो जो अंडे हैं वो कहाँ सेल कर रहे हैं आप?
2: सोसाइटीज में जाते हैं. तो मैंने मार्केटिंग भी सोसाइटी में स्टार्ट की थी और चिकन भी जा रहा है पैक होके. यहाँ से ऑनलाइन डिलीवरी है चिकन की भी.
1: आप चिकन भी जो है
2: डिलीवर कर देते हैं,
1: ऑनलाइन भेजते हैं.
2: और एग भी ऑनलाइन डिलीवर कर देते
1: हैं. एग क्या रेट जाता है आपका?
2: एग अगर हम ऑनलाइन डिलीवरी की बात करें तो 800 रुपए की ट्रे जाती है.
1: 800 रुपए की.
2: और कोई फार्म से लेके जाता है तो 600 रुपए की ट्रे है.
1: 600 रुपए. सोशल मीडिया मार्केटिंग का बड़ा अच्छा फायदा उठा रहे हैं. बेशक इनका फार्म गांव में है, लेकिन ये ऑनलाइन या सोशल मीडिया के थ्रू अपना चिकन और एग सेल करते हैं. कितने कितने बड़े सेक्शन बनाए हैं और लंबाई चौड़ाई क्या है इस फार्म की?
2: इसकी जो चौड़ाई है पूरे फार्म की और लंबाई 30 फुट चौड़ा है ये.
1: जी.
2: और 300 फीट लंबा है ये.
1: जी.
2: 30x300 का साइज है ये.
1: बाहर भी ओपन के लिए, आप फ्री रेंज के लिए भी?
2: फ्री रेंज के लिए.
1: और मुर्गियां चर भी रही हैं?
2: जी जी, फ्री रेंज में भी खोलते हैं इनको.
1: जी.
2: सुबह मॉर्निंग टाइम का फ्री रेंज का होता है और इवनिंग टाइम फ्री रेंज का होता है.
1: ये खर्चा कितना है आपका? लीज का है या अपना?
2: नहीं, ये अपना लीज का है.
1: लीज का है.
2: हाँ जी.
1: क्या लीज जाती है?
2: 20,000 रुपए रेंट जाता है इसका.
1: 20,000 रुपए जाता है. और यहाँ पे वर्कर कितने रखे हुए हैं?
2: दो वर्कर हैं
1: और संभाल लेते हैं.
2: बिल्कुल.
1: आप इसके अलावा क्या करते हैं? एजुकेशन बैकग्राउंड क्या?
2: जी जी,
1: इस बारे में बताइए.
2: मैं MBA हूँ.
1: जी.
2: ऑपरेशन से मेन काम मेरा प्रॉपर्टी का है.
1: प्रॉपर्टी में डील करते हैं. और उसके बाद ये आपने?
2: ये मैंने अभी स्टार्टअप किया 8-9 महीने पहले.
1: 8-9 महीने से किया.
2: हाँ जी.
1: आप इतने अच्छे धंधे में, आप क्यों आए मुर्गी पालन में?
2: एक्चुअली है क्या सर, धंधा आदमी हर कोई चाहता है एक्सपेंड करना अपना.
1: जी.
2: तो वो तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है.
1: अच्छा.
2: ये साइड बिजनेस के लिए एक बिजनेस और स्टार्ट
1: किया. मतलब समथिंग मोर.
2: हाँ जी, समथिंग मोर.
1: जी, मतलब कुछ और कर ले.
2: बिल्कुल.
1: प्रेरणा कैसे मिली?
2: एक्चुअली है क्या, आप अगर मेरा बैकग्राउंड पीछे से देखेंगे तो मैं किसान हूँ.
1: अच्छा, कहाँ से हैं?
2: मैं अमरोहा से बिलोंग करता हूँ.
1: अमरोहा से?
2: हाँ जी. तो बाप दादा किसानी की है सबने, तो किसान से थोड़ा जुड़ाव भी है, लगाव भी है, और हमने गाय भैंस पाली है, मतलब बचपन से ये देखा है चीजों करते हुए, तो एक मन भी था कि कुछ ऐसा स्टार्ट किया जाए। अभी तो ये स्टार्ट फेस है, इसके अलावा गोट फार्मिंग और अदर बर्ड भी रखने का प्लान है इसमें।
1: मतलब अभी आपने कड़कनाथ से शुरुआत की है, आगे आपने गोट फार्मिंग करनी है और पोल्ट्री की दूसरी ब्रीड भी आप रखने का इरादा है।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: जी
2: जी।
1: इतने शानदार बर्ड है आपके
2: जी,
1: जो चिकन है,
2: एडल्ट चिकन है। हाँ जी,
1: चिकन पर्पस से आपने ये
2: चिकन पर्पस से अलग रखे।
1: बेसिकली जो सर्दियां चल रही हैं
2: जी जी,
1: सर्दियों के लिए कोई खास इंतजाम किया?
2: वैसे तो जो एडल्ट बर्ड होता है सर्दी में इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच्छा। मैंने पिछली सर्दी में भी देखा हुआ है इसको,
1: क्योंकि अच्छे खासे
2: बर्ड है। मेन जो दिक्कत रहती है वो बच्चों को रहती है, तो बच्चों के लिए हमने भट्टियां रखी हुई है। अगर हम बच्चे पालते हैं तो हम ये जो स्टार्ट होगा कि लेइंग पे जब आ जाएगा तो वो वाला सेक्शन खाली हो जाएगा,
1: मतलब ब्रूडिंग का भी आपने ऑप्शन रखा।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आप इतने दिन से कर रहे हैं, 8 महीने 9 महीने हो गए आप
2: जी,
1: कैसा लगा आपको ये काम?
2: बहुत बढ़िया काम है जी। बस मेन काम है मार्केटिंग।
1: अच्छा,
2: अगर आपकी मार्केट नहीं है
1: जी,
2: तो आप कुछ भी नहीं है, फिर तो आपको इसको बंद करना पड़ेगा। तो
1: यहाँ पे खाली छोड़ा हुआ आपने
2: ये एक्चुअली है क्या? खाली इसने छोड़ा हुआ है कि जैसे ही वो लेइंग बर्ड स्टार्ट होगा ये सेक्शन बढ़ेगा,
1: इसमें आ जाएगा,
2: तो इसमें आ जाएगा उतर, फिर बच्चे स्टार्ट हो जाएंगे।
1: स्पेस ज्यादा चाहिए
2: होगा। हाँ जी,
1: यहाँ पे आपने अंडे की ट्री रखी हुई है
2: जी,
1: मतलब स्टोर आपने यहाँ
2: स्टोर यहाँ पे क्या हुआ है? रोज 2 दिन में 4 दिन का माल स्टॉक होता है, क्योंकि दूर जाता है प्रोडक्शन ये।
1: हाँ।
2: जो मार्केटिंग ऑनलाइन होती है वो अलग, यहीं से डिलीवरी जाती है। जो बड़ा स्टॉक होता है वो एक साथ होकर जाता है।
1: मैं देख रहा हूँ आपने ट्रे बांधी हुई है
2: जी,
1: मतलब
2: पैकिंग में जाता है,
1: रेडी
2: टू मूव है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
1: कड़कनाथ बहुत अच्छी ब्रीड है, और लेकिन लोग बीच में तैयार करने के बाद बेच नहीं पाए
2: जी,
1: आपने कड़कनाथ ही क्यों चुना?
2: बेसिकली है क्या, सारा गेम मार्केटिंग का था
1: जी,
2: और जिस जगह ये कड़कनाथ स्टार्ट किया वो विलेज स्टाइल में था।
1: अच्छा,
2: और विलेज में इसकी मार्केट नहीं है क्योंकि महंगा बर्ड है
1: जी,
2: अंडा भी महंगा है और चिकन भी महंगा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता
1: जी।
2: इसलिए मैंने नोएडा और दिल्ली के जो पॉश एरिया है उनको मार्केटिंग चुनी है,
1: उनको टारगेट किया
2: और फ्लैट वाले क्लाइंट को टारगेट किया, कोठी वाले क्लाइंट को टारगेट किया है, जो अच्छी चीज खाना पसंद करते हैं उनके लिए फिर रेट मायने नहीं रखता, वो 1000 हो 2000 हो कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए।
1: तो तैयार चिकन आप किस रेट बेचते हैं?
2: तैयार चिकन अगर यहाँ से जाता है ड्रेसिंग होके तो 1200 रुपए का जाता है।
1: डिमांड कैसी है और जो रेवेन्यू आपको आ रहा है वो कैसे आ रहा है?
2: देखिए डिमांड ठीक आने लगी है क्योंकि सर्दी बढ़ने लगी है, तो अब डिमांड और बढ़ रही है, मतलब रोज अब ऑर्डर आ रहे हैं। पहले शुरू में दिक्कत हुई मार्केटिंग, मतलब उस लेवल तक स्टार्ट नहीं हुई थी, लोगों तक हम नहीं पहुंच पा रहे थे, अब धीरे धीरे काफी लोगों तक हम पहुंच लगे हैं, माउथ टू माउथ पहुंच लगे हैं, लोगों को हम माल दे चुके हैं, उनकी भी दोबारा रिपीट ऑर्डर आने लगे हैं
1: जी,
2: तो अब जाके बेस तैयार होने लगा है माल का।
1: मैंने देखा है जिन लोगों को जरूरत है उनको मिलते नहीं है
2: जी,
1: और जिन्हें देना है वो वहां पहुंच नहीं पाते, कहीं ना कहीं ये मार्केट का ही खेल है।
2: बिल्कुल,
1: रिक्वायरमेंट पूरी भी नहीं हो पा रही है और जहाँ तैयार हो रहा है
2: वहाँ माल बिक नहीं रहा है,
1: पहुँच नहीं पा रहे हैं।
2: बिल्कुल,
1: ये एक बहुत बड़ा गैप है इसमें।
2: जी जी जी जी
1: जी। और आपने अपना ये सोशल मीडिया के थ्रू आपने अपनी मार्केटिंग को एनरिच किया।
2: बिल्कुल
1: जी,
2: सोशल मीडिया से क्या होता है कि आप कम टाइम में ज्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं।
0: हूँ से आरजे राकेश,
3: अने हूँ से आरजे कमता डामोर,
0: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती बाड़ी, आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। कड़कनाथ मुर्गों की प्रजाति में आने वाला सबसे महंगा मुर्गा है। इसका रंग, खून, पंजे और आंखें आदि सब कुछ काले रंग के ही हैं। इसलिए इसे काले चिकन या काले मांस के नाम से भी जाना जाता है। बाजार में इस मुर्गे की कीमत लगभग 1200 रुपये प्रति किलो से 1800 रुपये प्रति किलो तक है। अन्य मुर्गों के मुकाबले यह केवल 5 से 6 महीने के भीतर ही तैयार हो जाता है। कड़कनाथ मुर्गे चारे में बरसीम और चरी आदि खाते हैं, अतः इन्हें पालने में लागत कम लगती है और मुनाफा काफी ज्यादा होता है। अपनी कई खूबियों के कारण इस मुर्गे की सबसे अधिक मांग है। इसकी एक खास बात यह भी है कि यह अन्य मुर्गों की तुलना में इनमें वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, जिसे खाने से शरीर को नुकसान नहीं होता। कड़कनाथ मुर्गा मूल रूप से मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मिलता है और इसकी कीमत सामान्य मुर्गों के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा भी बेहद ही ज्यादा पाई जाती है। साथ ही इसकी हड्डियाँ और मांस का कलर भी काला होता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। हूँ से आरजे राकेश,
3: अने हूँ से आरजे कमता डामोर,
0: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती बाड़ी, आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। તો કિસાન ભાઈઓ એક વખત હજુ લઈ બ્રેક અને હામળી લઈ આપણા ઝાબવા જિલ્લામાં ભીલ સમુદાયમાં જબ લાડ લાડિયા પૈણે અને તીન વાંજો ગાવે ત્યુ ઘણું મજાનું અને અસલ ગીત હામળીને પાછા ભેળા થા હું કાર્યક્રમ ખેતીવાડીમાં જાજોમતી કિસાન ભાઈઓ હામલતા રેજો ઝાબવાની આવાજ સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ પર.

0: માં ઈહુની માંગ કાફી તેજ રહેશે અને કાફી ઊંચી દર ઉપર ઇનામ જ્યાદા કિંમતમાં વેચાઈ જશે। કડકનાથની તીન પ્રજાતિઓ રહેશે। પહેલી પ્રજાતિ છે જેટ અને બીજી છે બ્લેક અને આગલી પ્રજાતિ પેન્સિલ્ડ ગોલ્ડન પાઈ જશે। ઇનમાંથી જેટ બ્લેક પ્રજાતિ સૌથી જ્યાદા માત્રામાં અને ગોલ્ડન પ્રજાતિ સૌથી કમ માત્રામાં પાઈ જાય છે। નર કડકનાથનો ઓસ્તન વજન 180 થી લગાડીને 2.5 કિલો વજન તકનું રહેશે। માદા કડકનાથનો ઓસ્તન વજનના અને ઓસ્તન વજન 180 થી 2.5 કિલો તકની લગભગ રહેશે અને એનો ઓસ્તન વજન 125 થી 1.5 કિલો તક લગભગ રહેશે। માદા કડકનાથ હર વરે 110 થી 120 ઈંડા મેલે છે અને એના ઈંડા નાના મધ્યમ આકારના હલકા ભૂરા ગુલાબી રંગના અને વજનમાં 30 થી 35 ગ્રામ વજનવાળા રહે છે। આર્થિક અને સામાજિક પ્રભાવ। તો કિસાન ભાઈઓ, મુરગી પાલનમાં કુક્કુટ પ્રબંધનનો મહત્વ પૂરો યોગદાન રહેશે। કડકનાથ વ્યવસાયમાં લગભગ 80% સમસ્યાઓ કુક્કુટ પ્રબંધનમાં કરીગી લાપરવાહીને કારણ પેદા થાય છે। કડકનાથ મુરગી પાલનવાળાને ઘણી એવી સાવધાનીઓને ધ્યાન રાખીને આગાડી વળવાની સલાહ આલી જાય છે કે કઈની બી કડકનાથ ફાર્મને એવા વિકટ સમસ્યાનો સામનો નહીં કરવો પડે એના હારું વ્યવસાયમાં કદમ રાખવાથી પહેલું પૂરો વિશ્વાસની હાથે જાણકારી પ્રાપ્ત કરી લેવી જોઈએ અને એની ટ્રેનિંગ બી કરી લેવી જોઈએ। બ્રૂડિંગ વ્યવસ્થાની જાણકારી, કેમ કે બ્રૂડિંગમાંથી પક્ષીનો ભવિષ્ય ઉત્પાદન અને લાભ હાનિ નિર્ધારિત થાય છે। કડકનાથ ચૂજામાં સહી સમય પર ટીકાકરણ કાર્યક્રમ અને કડકનાથ પક્ષીઓમાં સહી સમય પર કૃમિનાશક દવાઈઓનો પ્રયોગ કરવાનું યુ સૌથી પહેલું પ્રમુખ કામ રહેશે। કડકનાથ માસ સેવનથી લાભ। તુક્ષણ સાથીઓ, ઓરિજિનલ કડકનાથ માસમાં ભરપૂર પ્રોટીન રહેશે અને વસા ઇનમાં નાની બરાબર રહેશે। એની હારું ઇનાને હગળા ખેલાડીઓને ખાવાની સલાહ આલી જાય છે। કડકનાથ માહના સેવનથી કેવળ શરીરની બળોતરી બલકી રોગ પ્રતિરોધકતા ક્ષમતા ભી ઇનથી બઢે છે અને અનેક બીમારીઓથી ઇનાને ખાવાથી વસી શકે। કિસાન સાથીઓ, કડકનાથ માહની માંગ દેહને અલાવા વિદેશોમાં ઘણો જ્યાદા રહેવાને કારણ એક અસલ વ્યવસાય અને વેપાર યુવાઓ હારું ઉપલબ્ધ થાય છે। કડકનાથ હોમિયોપેથી ચિકિત્સા અને તંત્રિકા વિકારમાં વિશેષ ઔષધિનું કામ કરે છે અને આદિવાસી લોકો ઇનાને ખૂનથી પુરાતન અને ચિરકાલીન ગંભીર રોગોના ઇલાજ બી ઇનમાં કરે છે। મનુષ્ય ઇનમાં ઇનથી માહનો ઉપયોગ કામ ઉત્તેજકના રૂપમાં લૈંગિક તાકાત બઢાવવા હારું ભી પ્રયોગ કરે છે। આર્થિક અને સામાજિક પ્રભાવ। તો કિસાન સાથીઓ, કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ઝાબવાને દ્વારા ગામોમાં કિસાનોની હાથે વાતચીતના ટાઈમ પર જો જાણકારી કેન્દ્રના વિશેષજ્ઞોની ભેળી કરી કે એમાં કડકનાથની જ્યાદા માંગ અને કમ વૃદ્ધિ પર જ્યાદાતર મૃત્યુદર મુખ્ય રૂપથી હામી આવી છે, એની પ્રજાતિની વિકાસ અને ગતિ અવરોધ કર્યા જાય છે કે વૈજ્ઞાનિકને દ્વારા કિસાનોની હાથે વિચાર વિમર્શની બાદમાં એક સમાન વિચારધારા અને મુરગી પાલનના ઈચ્છુક કિસાનોનો એક સમૂહ શ્રી કડકનાથ સમૂહ બનાયો છે અને કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રના સહયોગથી કડકનાથ પ્રજાતિના વિકાસ હારું વૈજ્ઞાનિકને દ્વારા કડકનાથ પાલકોને આહાર પ્રબંધન, જળ પ્રબંધન, ટીકાકરણ, રોગ પ્રબંધન અને વિપણન આદિની પૂરી જાણકારી પ્રશિક્ષણ સૈદ્ધાંતિક રૂપથો વધાર્યો ગયો છે। કડકનાથ પાલનની પૂરી તકનીકી જાણકારી હામજી કરીને કિસાન સ્વેચ્છાથી હાવ એનો પાલન કરી રહેશે અને કમ લાગતની મુરગી આહારનો પ્રયોગ બી કરવા લાગ્યા છે। आदिवासी किसान भाई इन्हीं समूह थी काफी प्रभावित से अने कड़कनाथ पालन करीने आत्मनिर्भर बनी रहा से तीन थी तीना फल स्वरूप इना गांवों थी आदिवासी भाइयों नो पलायन कम थाई रहा से अने एवी तरह थी व्यापार मा भी इन्हीं रुचि बढ़ी रही से वर्ष 2019-20 मा कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआनी तरफ थी कड़कनाथ ने अजोला खवाड़ी ने इहुनो प्रभाव वैज्ञानिक ने द्वारा देखे जाई रोसे तिहुनो सकारात्मक प्रभाव देखवा मळी रोसे कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ ने द्वारा आर्या परियोजना निकरा परियोजना अने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ना अंतर्गत ग्रामीण युवाओं ने प्रशिक्षण आलीने तिहुन स्वावलंबी बनावानो काम भी करी जाई रोसे हमने परिस्थितियों अने बाजार आकलन ना आधार पर आवाला समय में कड़कनाथ नी बाजार में मांग ज्यादातर बढ़वानी संभावना से अने शिक्षित बेरोजगार युवाओं हारू कड़कनाथ पालन में रोजगार ने भी अपार संभावना नियो बनी रही से तो किसान साथियों कड़कनाथ प्रजाति ना माहनी खास खास विशेषताएं तो माहनी रचना नमी नमी इनमें 17.5 थी लगाड़ी ने 73.5% तक रहे से अने प्रोटीन ने जो मात्रा 21 थी लगाड़ी 24% रहे से अने वसा 1.94% तक रहे से अने राख 1.1 थी लगाड़ी ने 2.6% तक रहे से ब्रायलर अने अन्य देसी मुर्गियों ने तुलना तो किसान साथियों विशेषताओं रहे से इनमें प्रोटीन कड़कनाथ में 24% अने बीजी अन्य कुकड़ियों में 18 थी लगाड़ी 20% अने कड़कनाथ में वसा की मात्रा 1.94 थी लगाड़ी ने 2.6% अने अन्य बीजी मुर्गियों में 13 थी लगाड़ी ने 25% लिनोलिक एसिड तो किसान साथियों ये कड़कनाथ में 24% अने अन्य बीजा कुकड़ियों में 21% कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कड़कनाथ में 59 थी लगाड़ी ने 60 मिलीग्राम अने 100 ग्राम अने अन्य बीजी कुकड़ियों में 218 थी लगाड़ी ने 12 mg अने 100 ग्राम तक रहे तो किसान साथियों कड़कनाथ थी रोजगार नो अवसर कड़कनाथ पालन में कम निवेश की जरूरत पड़े से अने कई राष्ट्रीय बैंक आपड़ा देश में पोल्ट्री ना व्यवसाय हारू लोगों ने प्रोत्साहित करवानो काम करी रहा से अने कम ब्याज नी दर पर लोन भी इनाने उपलब्ध करावी रहा से जहां पर कड़कनाथ चिकन नी मांग ज्यादा होए तां पर प्रमोशन भी करे जाई रहा से अने कड़कनाथ में क्रॉस ब्रीडिंग करी ने कम समय में ज्यादा लाभ कमावाना तरीका थी वसूल रही तीन थी ना केवल इन्हीं प्रजाति ने खतरों से बल्कि आवाला दनों में इन्हीं मांग भी काफी कम थाई जाए तो किसान साथियों देह ना अनेक राज्यों थी युवक अने केवल कड़कनाथ थी आपड़ी आजीविका सलाड़ी रहा से बल्कि कड़कनाथ मांस ने विदेशों में भी सप्लाई करी रहा से अरे किसान भाइयों कड़कनाथ कुक्कुट इकाई नो वितरण भी कृषि विज्ञान केंद्र थी तलाश करीने किसान भाई इन्हें जानकारी प्राप्त करी सके तो किसान साथियों कुकड़ा कुकड़ियों ने बीमारियों थी वसाड़वा हर कुछ उपाय इहमा सत्तु पहलू किसान भाई ने साफ सफाई पर पूरो ध्यान देवो जोई अने सच ओहे पक्षी तो सुरक्षित इंसान वीरे सके तो किसान साथियों पक्षियों ना बर्ड फ्लू अने अन्य बीमारियों थी वसाड़ी सके ये बीमारियों एक पक्षी थी बीजा पक्षी में दूषित पानी थी अने तिहोना खान पान थी अने तिहोना मूत्र पाखड़ा इने जरिए थी झाड़ू थी तेजी थी प्रभावित थाय से इना वसाड़वा हारू उपाय तो किसान साथियों दूरी बनाई रखवानी एक पक्षी ने बीमार पक्षियों थी अने पक्षियों ना वाड़ा में बंद रखवानो केवल पोल्ट्री फार्म ने देखभाल करवा वाला ने एक ही व्यक्ति ने तिहुं कन जाव जोई अने तिहुं ने एक ड्रेस भी रहे से अने तिने ड्रेस ने केवल वाड़ा में मई जाए तेतरा घड़ी पहरवी पड़े से अने तिहुं नो भोजन अने तीहुनु पानी अने तीहुनी दवाई आदि नो इंतजाम करवा वाला व्यक्ति ही तीना ने तीनी ड्रेस ने पहरीन में भरावानु अने तीन्थो भरावाती पहलो तीहुना हाथ पाँव अने पूरा शरीर ने असली साफ कर लेवु जोईए अने नकल्या बाद में भी पूरी तरह से तीनी ड्रेस ने पाछी ता मेली ने पूरी तरह से साफ सफाई करीने मेलवी जोईए। साफ सफाई नो ध्यान राखवो तो किसान साथियों वाड़ा मां अने तीहुनी आसपास साफ सफाई राखवी घणी जरूरी छे। इना प्रकार थी जीवाणु अने विषाणु थी बचाड़ी जाई सके छे। पक्षीओना वाड़ा ने साफ सुथरा राखवानो अने पक्षीओनो भोजन अने पाणी रोज बदलवानो। पोल्ट्री फार्म वाड़ा ने नियमित रूप तो संक्रमण तो मुक्त राखवो जोईए अने पोल्ट्री फार्म मां बीमारीओ ने प्रवेश करवाथी रोकवो जोईए। आपने बजार ना अने अन्य फार्मो थी अन्य पक्षियों ने आपनु संपर्क मा लावाली चीजों अने तीहुना औजार में भी पूरी तरह थी साफ सफाई करवाना अने नवा पक्षी ने कम थी कम 30 दिन तक स्वच्छ पक्षियों थो सेटी राखवानो। तो किसान साथियों बीमारी ने फैलवाथी रोकवानो अने वसाड़वाना हारू पोल्ट्री फार्म ना संपर्क मा आवाथी पहलू अने बाद मा आपड़ा हाथ सीतरा अने खाहणा थी खाहणा धोवा जोईए। संक्रमण मुक्त भी नान करवा जोई अने बीमारी आपड़ बीजी उधार नी लेवानी। अगर आप बीजा फार्मो थी उपकरण औजार अने पोल्ट्री फार्म जो उधार पर लाया है जेवी रीते आपड़ी कन पानी ना बर्तन अने खावाड़वाना बर्तन एवी कई प्रकार नी चीजो आपड़ी कन अगर कम पड़ती है तो किसान भाई तीना ने संक्रमण मुक्त कर लेवानी। संकेतों थी जानवानों की पक्षियों पर नजर राखवानी। अगर ज्यादा पक्षी मरता है तो तीहुनी आँखियों गणु अने जो सिर ने आसपास हुजन रहे से अने रिसाव थाय रहे से। पाखड़ा कलंगी अने पोग नो रंग बदली रहो है अने पक्षी ना अंडा कम आलवा लागे तो इना खतरा न यो एक बड़ो संकेत से। तो किसान भाइयों ने यह ध्यान रखी जाए कि पक्षियों में अचानक कमजोरी पाखड़ा करवानो एवी हरकत कम थावा पर नजर राखवानी। बीमारी नी सूचना तो किसान साथियों पक्षियों में सामान्यतः बीमारी अने मौत नी सूचना तुरंत नजदीकी पशु उपचार केंद्र ने मोकलवानी आपड़ी रक्षा में ही आपड़ी सुरक्षा से। तो किसान साथियों ये बड़ाओ आलवाहारू हमारा कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ ना माध्यम थी आज इन्हीं वातियों ने हमें प्रसारित करी रहा से। तो किसान साथियों एवी खेतीवाड़ी नी अने पशुपालन नी अने पक्षी पशु पक्षी पालन नी एवी कई प्रकार नी जानकारियों हामलवाहारू तमो हामलता रहेजो रेडियो टंटा भी 90.8 FM झाबुआ नी आवाज। तो किसान साथियों हाँ आर जे कमता डामोर ने इजाजत आलजो अने रेडियो पर हामला वाला हागला किसान भाइयों ने नमस्कार।
1: तो किसान भाइयों यो हतो आज नो कार्यक्रम खेतीवाड़ी। आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम मा आपनी वात हामली कड़कनाथ मुर्गी पालन नी बड़ी वातियों आपुन वताड़ियो कृषि था जोड़ायेला विशेषज्ञ अने अनुभवी लोगोई अने हाथे हाथ एवा किसान भाई नी वातियों पण हामलियो त्या कड़कनाथ मुर्गी पालन करीने असल अने मोटो मुनाफो कमाई रह्या छे। किसान भाइयों आपड़ा हावना सोरा खेतीवाड़ी पर ध्यान कम दिन बीजू काम करवा लागी गया से अने जो भण्या लिख्या लोग से त्या हाव धीरा धीरा खेतीवाड़ी नी तरफ आगाड़ी बढ़ी रह्या छे अने असल मोटो मुनाफो पण कमाई रह्या छे। खेतीवाड़ी में स्टार्टअप करवानो हमने सुनहरो मौको से अने आपड़ा जो धारेला जो सपना से त्या इना क्षेत्र में आपू पूरा करी सकिए। किसान भाइयों ने हमू प्रेरित करवा हारू रोज एवा असल थी असल खेतीवाड़ी ना कार्यक्रम लेनावी से अने आशा पण करी से कि हमारा झाबुआ जिला ना किसान भाई ये बधी वातियों हांभळे अने आपड़ी खेतीवाड़ी मा अने कृषि स्टार्टअप मा आगाड़ी बढ़े अने असल मोटो मुनाफो कमाई सके अने आपड़ा झाबुआ जिला नु नाम पण रोशन करी सके। आ सारू बस एतरी वात किसान भाइयों केम की हाव समय थाई गयो से बीजा कार्यक्रमो नो हूँ आरजे राकेश सेल्लू से तमारी देखी इजाजत पण तमु जाजु मती कहता हामलता रहेजो झाबुआनी आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील पर तमारा ज रेडियो हथवार आरजे राकेश नी हाथे।

0: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। आज के कलाकार में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है और जैसा कि हम सब जानते हैं आज के कलाकार मंच है नए गायकों का, नए गायिकाओं का, नए टैलेंट का। और आज हमारे साथ जो टैलेंट हैं उनका नाम है रविका जी। बाकी की बातचीत हम रविका जी से करेंगे। रविका जी अपने बारे में बताएंगी और उनके गीत हम सुनेंगे। रविका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। वेलकम टू आवर प्रोग्राम।
1: थैंक यू सो मच। मैं रविका एक गायिका और संगीत प्रेमी हूँ और मैं अपनी सभी संगीत के जरिए लोगों को, दिलों को जुड़ने की कोशिश करती हूँ और अपने शो जज्बात के जरिए भावनाओं को सुरों में पिरोने का प्रयास करती हूँ।
0: अमेजिंग, ब्यूटीफुल, बहुत खूब। तो रविका जी हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दें, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं?
1: बेसिकली आई एम फ्रॉम मुंबई, बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई से ही हूँ मैं और बचपन में संगीत सीखा नहीं, शौक रहा हमेशा से
0: जी।
1: लेकिन तब थोड़ा बहुत गाया, शादी जल्दी हो गई, फैमिली जल्दी हो गई, लेकिन ड्यूरिंग कोविड मैंने फिर से शुरुआत करी एंड उसके बाद मैंने अपने कुछ पंजाबी एल्बम्स लॉन्च किए हैं और एवरी वेनेसडे आई हैव अ शो कॉल्ड जज्बात ऑन माय फेसबुक पेज, जहां पर मैं 3 घंटे लोगों की पसंद के गाने गाती हूँ। साथ ही साथ मैं अभी कुछ और एल्बम्स में काम कर रही हूँ। सो दिस इज माय लाइफ अबाउट म्यूजिक।
0: वाओ, अमेजिंग। दोस्तों आपने सुना रविका जी फेसबुक पेज पर, उनके ही फेसबुक पेज पर 3 घंटे के लिए रियाज करती हैं, लोगों के जो फरमाइशें होती हैं वो सॉन्ग्स प्ले करती हैं, गाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को रविका जी के ही गाए हुए इस प्यारे से गीत से।

0: बहुत खूब। चलिए रविका जी, आपके बचपन में चलते हैं। आप बचपन में क्या बनना चाहती थी?
1: बचपन में बहुत से सपने थे। शुरुआत से गाने का बहुत शौक था, एक्टिंग का बहुत शौक था, और सबसे ज्यादा डांसिंग का बहुत शौक था। ये सभी कुछ करना चाहती थी, बहुत कुछ सपने लेकर जिंदगी में, स्कूल में, और परफॉर्मेंस करी, बहुत सारे अवार्ड स्कूल में भी जीते। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन के सपने शादी तक आकर फिर कहीं ना कहीं थम जाते हैं।
0: ओके, एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम रविका जी, लेकिन मैं इस बात को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि बचपन के जो सपने थे वो आपने हमेशा अपने जहन में संजो के रखे, और जिस वक्त भी आपको मौका मिला आपने अपनी प्रतिभा को एंजॉय करना शुरू किया, आपने गाना शुरू किया। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया बात। चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत रविका जी के आवाज में।

0: रविका जी, जैसे हम लोग अभी बचपन में ही हैं, आपके फेवरेट फेवरेट टीचर कौन थे और क्यों?
1: मेरी फेवरेट टीचर मेरी केमिस्ट्री टीचर थी, मिसेस मेनन। वो इसलिए फेवरेट थी कि मुझे उनके बात करने का तरीका, सबसे ज्यादा उनका साड़ी पहनने का तरीका, शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, और मैं हमेशा सोचती थी कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। तो ना ही सिर्फ उनकी पढ़ाई, पर सिर्फ उनको देख देख कर आई गॉट सो इंस्पायर्ड बाय सारीज कि आज तक सारी मेरा पहला ही प्यार है। और कभी भी अगर मुझसे कोई फेवरेट आउटफिट पूछे तो अभी भी मैं वही टीचर को याद करके सारी ही बोलती हूँ।
0: क्या बात है, दैट्स सो क्यूट दैट यू प्रैक्टिकली लाइक्ड वन एस्पेक्ट ऑफ योर टीचर।
1: यस या।
0: तो दोस्तों चलिए अगला गीत हम प्ले करते हैं रविका जी की ही आवाज में, जो मैं उन्हीं के टीचर को डेडिकेट करना चाहूंगा।
1: थैंक यू।

0: बहुत खूब रविका जी, आपको और थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू, आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसे कौन से तीन शब्द हैं, वर्ड्स हैं, जो आपको सबसे अच्छी तरह से बयान करते हैं, परिभाषित करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं?
1: वाओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. सबसे ज्यादा वर्ड जो मुझे डिस्क्राइब करेगा वो है संगीत, म्यूजिक, गाना सबसे ज्यादा, क्योंकि आई ड्रिंक, स्लीप, ईट ओनली म्यूजिक.
0: वाओ,
1: हर वक्त मुझे मतलब मैं गाने से ही रिलेटेड अपनी जिंदगी में किसी भी सिचुएशन में संगीत मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है. उससे भी कहीं गुना ज्यादा है भावनाएं, इमोशंस,
0: ओके,
1: लॉट्स ऑफ इमोशंस. इसलिए जो मैंने अपना ऑनलाइन शो भी रखा है उसका नाम भी जज्बात रखा है. एंड आई डू 30 मिनट्स टॉक एवरी डे ऑन फेसबुक, उसका नाम मैंने दिल से रखा है. तो दिस इटसेल्फ शोज की आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन एंड एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू इमोशंस, भावनाएं, जहां पर हम अपने इमोशंस को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ सामने वाले का भी सुन सकते हैं, मीन्स अ लॉट टू मी. एंड द थर्ड यू कैन से इज समर्पण. गेट समर्पित टू वॉट एवर यू आर डूइंग, बी यू, आप 100% हर उस चीज में समर्पित रहो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो आपकी जिंदगी हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपका पैशन क्यों ना हो, समर्पित होना बहुत जरूरी है. नेवर बी कि आई एम द बेस्ट और बस इसके आगे कुछ नहीं. अपने आप को समर्पित कर दीजिए खुद ब खुद जिंदगी में सब कुछ, एवरीथिंग. सो संगीत, भावनाएं और समर्पण, ये तीन चीजें बहुत जरूरी है.
0: वाह, क्या कहा है साहब, क्या कहा है, बहुत खूब. संगीत,
1: थैंक यू,
0: समर्पण और भावनाएं. जाहिर से बात है, भावनाएं हमें, हम इंसानों को जानवरों से इसीलिए अलग करती हैं कि हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. भावनाएं बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं हमारी जिंदगी के लिए. आपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा.
1: थैंक यू.
0: तो चलिए दोस्तों, एक और बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं रविका जी की ही आवाज में.

0: आपने अपनी जिंदगी में सबसे पहली बार खाना बनाने की कोई भी चीज क्या बनाई थी और वो कैसी बनी थी?
1: ओके, द फर्स्ट वाज ऑब्वियसली दाल चावल, बिकॉज उससे ज्यादा इजी कोई चीज होती नहीं है. एंड इमीडिएटली उसी दिन मैंने मैगी भी बनाई थी.
0: ओके.
1: तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैंने मैगी को इतना ज्यादा क्यों पका दिया, या पानी ज्यादा डाल दिया, या वो 2 मिनट्स के बदले में पता नहीं कितने मिनट उसको पका दिया. एंड द दाल वॉज प्रिटी गुड, क्योंकि मम्मा ने तड़का लगाना अच्छे से सिखाया था. दैट वॉज प्रिटी सिंपल. सो जितना मुझे याद है आई थिंक यही था.
0: सिंपल इज ऑलवेज ऑलवेज ब्यूटिफुल. दाल चावल वैसे भी बहुत बहुत सारे लोगों की, रादर मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन की पसंद है. लेकिन yes. पहली बार फिर भी उसे सक्सेसफुली बना लेना अपने आप में एक अकॉम्प्लिशमेंट होता ही है.
1: बिकॉज डर लगता है ना कि पता नहीं ज्यादा पड़ रहा है या पानी ज्यादा पड़ रहा है.
0: करेक्ट करेक्ट. और जहां तक मैगी की बात करें तो मैगी तो हमारे देश का सबसे फेवरेट फूड काइंड ऑफ फूड है. मतलब खास करके जो हॉस्टल्स में रहते हैं बच्चे, उनके लिए तो वो कहते हैं ना, वो जन्म बूटी है, जीवन बूटी है, कि उनके लिए तो एक वरदान की तरह है वो.
1: एंड इट इज टेस्टी.
0: यस श्योर. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. तो दोस्तों आपने सुना, आइए फिर एक गीत भी हो जाए रविका जी की आवाज में.

0: बहुत बहुत ही प्यारी गायकी। रविका जी, थोड़ा सा और बेहतर जानने के लिए आपको आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी हॉबीज क्या हैं? गाना गाने के अलावा बताइएगा।
1: ओके, गाने के अलावा मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है। आई लव टू ड्राइव और मैं घंटों तक ड्राइव कर सकती हूँ बिना थके, बिकॉज सचमुच मुझे बहुत मजा आता है। ऑब्वियसली उसमें म्यूजिक साथ में लगी होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आई लाइक टू ट्रैवल, मुझे ट्रैवल करना बहुत बहुत पसंद है। मतलब आप जितना चाहे मुझे घुमा लीजिए, मैं कभी भी बोर नहीं होती। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई लव टू मेक गुड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जो मेरी वेवलेंथ के साथ मैच हो सके, फ्रेंड्स जिनके साथ में, मतलब मैं बहुत जल्दी जल्दी जल्दी दोस्त बना लेती हूँ जिंदगी में। सो आई थिंक दीज आर माई हॉबीज।
0: ऑलराइट, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी ड्राइविंग हॉबी आपके ट्रैवल की हॉबी के साथ मैच करती है, तो इट्स अ सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट विच एक्चुअली टेक्स यू टू प्लेसेस, और बहुत बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी होती है, तो थर्ड ऑटोमेटिकली आपका हो जाता है हॉबी की आपको बहुत बहुत सारे लोगों से मिलना पसंद है।
1: yes,
0: दोस्ती करना पसंद है। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत खूब। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पर हो जाए एक और प्यारा सा गीत रविका जी की ही आवाज में।

0: बहुत खूब। रविका जी, कई बार ऐसा होता है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में चलते चलाते कुछ ऐसे लोगों से इंटरेक्शन हो जाता है जो जिनके मैनरिज्म में, जिनके व्यवहार में कुछ ऐसी बात होती है जिससे कि हमारा मूड खराब हो जाता है, हमारा सारा का सारा दिन भी खराब होने की कगार पे आ जाता है। तो लोगों के मैनरिज्म में ऐसी क्या चीज मिलती है आपको जो आपको डिस्टर्ब कर देती हो?
1: सबसे ज्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा होती है हमसे कि हमारे बेस्ट करने के बावजूद भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते। ऐसे बहुत से रिश्ते होते हैं और उस वक्त जो उनका बिहेवियर या उनके बात करने का तरीका, दैट इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। और हम लोग हमेशा जिंदगी में परफेक्ट नहीं हो सकते, सो जो लोग हमेशा हमारे में परफेक्ट एटीट्यूड ढूंढते हैं वहां पर बहुत परेशानी आ जाती है। बिकॉज लाइफ इज सिंपल, नॉट एवरीबडी इज परफेक्ट, लेकिन लोगों को मैच करने में काफी वक्त चला जाता है। दैट इज विच इज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट मी।
0: वैसे भी रविका जी ये बात कही गई है, यू कैनॉट मेक एवरीबडी हैप्पी ऑन दिस अर्थ, सबको तो आप खुश कर भी नहीं सकते।
1: जी जी बिल्कुल।
0: दूसरी बात ये भी है कि उम्मीदें इस दुनिया की, मेरा पर्सनल मानना यह है कि उम्मीदें इस दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ है। जब हम उम्मीद करना शुरू करते हैं तो हम पाने और खोने में लग जाते हैं और फिर फिर दुख आना शुरू हो जाता है।
1: बस यही एक परेशानी है कि उम्मीदें कभी कभी बहुत ज्यादा लोग लगा लेते हैं,
0: बस,
1: और जरूरी नहीं है कि हम पूरी कर पाए तो रिश्ते खराब हो जाते हैं।
0: सही कहा आपने, बहुत खूब। चलिए दोस्तों, फिर एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं रविका जी की आवाज में।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारा गीत। रविका जी, आपकी जिंदगी में, आज तक की जिंदगी में सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि, अकॉम्प्लिशमेंट क्या रहा है?
1: देखिए, कहने के लिए मैंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते, चाहे वो सिंगिंग के लिए हो। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा तो जब हम लोग अपने बच्चे को जन्म देते हैं, दैट इज द मोस्ट प्राउड मोमेंट, बट दैट इज अ नेचुरल फैक्ट ऑफ लाइफ। बट अगर हम बात कर रहे हैं एज माय करियर, अदर देन हैविंग सो मेनी अवार्ड्स, एक चीज जो मुझे आज की तारीख में सबसे ज्यादा उपलब्धि देती है, दैट इज माय जज्बात शो व्हिच आई एम डूइंग ऑन फेसबुक। कहने के लिए बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हर बुधवार मैं 5,000 से 10,000, कभी कभी 50,000 लोगों को एक साथ में 3 घंटे उनकी पसंद के गाने गाते हो, और उसके बावजूद भी रात के 12:30 बजे तक लोग मेरा पूरी तरह से साथ देते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं उन्हें थोड़ी सी खुशी दे पा रही हूँ उनकी पसंद के गीत गाकर, या उन्हें उस दुनिया में ले जाकर जो शायद वो भूल चुके हैं। आई लव टू टेक वेरी ओल्ड सॉन्ग्स जो काफी बुजुर्ग सुनते हैं, ऑल्सो आई गो टू ओल्ड एज होम्स जहां पर मैं उनके लिए गाती हूँ। तो ये चीजें मुझे बहुत बहुत खुशी देती हैं, अदर देन ऑल द यू नो जो अवार्ड्स वगैरह, तो ऑफ कोर्स वो प्राउड मोमेंट्स हैं, बट इससे ज्यादा बड़ा अवार्ड नहीं है जब लोग आपको ब्लेसिंग्स देते हैं।
0: आपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमाया मैम, बिल्कुल ठीक फरमाया। जब आप सेल्फलेसली किसी के लिए कुछ करते हैं, जैसे आपने कहा आप ओल्ड एज होम में जाकर उन लोगों के लिए जब गाती हैं, तो जाहिर से बात है उनके जो जज्बात आपके लिए उमड़ते होंगे, उनके आशीर्वाद आपके लिए आते होंगे, या जो खुशी उन्हें मिलती होगी, वो सबसे बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट है। यूं कहने को तो उसकी कोई कीमत नहीं है आज की इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में, कोई कीमत नहीं है उनकी, लेकिन
1: एग्जैक्टली ये जो मटेरियलिस्टिक दुनिया में जब इमोशंस जुड़ते हैं, जिसको मैं जज्बात बोलती हूँ, मुझे लगता है इससे बड़ी उपलब्धि किसी के लिए कुछ नहीं हो सकती इन टुडेज वर्ल्ड।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये महसूस करने वाली बात है मैम।
1: जी जी जी
0: दोस्तों, महसूस कीजिए इस चीज को और सुनिए एक प्यारा सा गीत रविका जी की ही आवाज में।

0: बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं रविका जी। क्या आप सपनों में विश्वास रखती हैं, रात को देखने वाले सपने?
1: बिल्कुल बिल्कुल, अगर सपने ना हो, उम्मीदें ना हो, तो हम मुकाम पाने की कोशिश नहीं करते। और अगर दिल से मेहनत की जाए तो सपने भी सच होते हैं। मैं आज भी अपने हर सपने में सपने भी देखती हूँ और उन सपनों पर मेहनत भी करती हूँ, बिकॉज सपने देखेंगे तो कुछ आगे जिंदगी में पाने की कोशिश करेंगे।
0: आपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कहा। हमारे देश के ही पूर्व प्रेसिडेंट माननीय राष्ट्रपति जी डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद भी कह गए कि सपने देखते रहिए, सपने देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम सपने देखेंगे नहीं, हम पूरे कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे।
1: जी बिल्कुल,
0: बहुत खूब। चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत रविका जी की ही आवाज में।

0: खूब। रविका जी, आपके जीवन में जैसे मैंने ऊपर पूछा था लेकिन उससे थोड़ा सा अलग ये है कि आपके जीवन में सबसे अच्छा तोहफा गिफ्ट आज तक क्या मिला है और किसने दिया है?
1: कि अगर आप मटेरियलिस्टिक चीजें बोलेंगे तो वैसे तो बहुत बहुत ज्यादा मिली है, बिकॉज दैट इज लाइफ राइट। बट ऑफ कोर्स जो फर्स्ट नाइट पे मुझे मेरे हस्बैंड ने मुझे रिंग दी थी, उसकी वैल्यू मेरी जिंदगी में बहुत बहुत ज्यादा है। नॉट बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ द रिंग, बिकॉज वो मोमेंट जिंदगी का सबसे प्यारा मोमेंट था। एंड अगर आप नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों की बातें करेंगे तो जो इतना प्यारा सा मेरा परिवार है, उनका सेल्फलेस लव, और आज की तारीख में फेसबुक या संगीत की दुनिया में या जहां पर मैं गाने गा रही हूँ, उनका जो सेल्फलेस ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो और चाहे वो नॉन मटेरियलिस्टिक।
0: बहुत खूब, बहुत बहुत क्यूट, बड़ी ही प्यारी बात। दोनों ही चीजें आपने मुझे बताई कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का तोहफा और जज्बातों के जिंदगी में, जज्बातों के दुनिया का तोहफा क्या क्या है वो आपने हमें बताया। अमेजिंग। तो दोस्तों, एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत रविका जी की ही आवाज में

0: रविका जी, अब हम अपने प्रोग्राम के उस जगह आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सुनने वालों के लिए और नए सिंगर्स के लिए, आप कुछ मैसेज दीजिए, कुछ बात कीजिए उनसे।
1: सबसे ज्यादा तो फर्स्ट आई विल से थैंक्स टू यू, टू द होल टीम फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सेकेंडली, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मेरे लिए कि सभी का प्यार, सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, मेरे साथ जुड़े रहना, मेरे संगीत को सुनना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं बात करूंगी बाकी लोगों के लिए कि हमेशा जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो किसी भी फील्ड का क्यों ना हो। अपने आप को खुश रखिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए एंड ट्राई टू फॉलो योर पैशन, बिकॉज अगर आपने कहीं हिम्मत हार दी, आपका पैशन बीच में ही दम तोड़ देगा। ऑलवेज बी बोल्ड टू टेक स्टेप्स जहां पर बिना किसी का दिल दुखाए, बिना अपने मान मर्यादा और डिग्निटी को खराब किए अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कीजिए और जहां तक हो सके किसी का दिल ना दुखाए। दैट्स ऑल।
0: अमेजिंग, बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही सीधा साधा और भावनात्मक मैसेज। दोस्तों, रविका जी के साथ हमने बातचीत की, उनके विचार हमने सुने, उनकी बातें हमने सुनी, उनको बहुत अच्छे तरीके से जाना और उनके बहुत खूबसूरत गीत भी हमने सुने। रविका जी, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए।
1: शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, मीन्स अ लॉट एंड सभी को बहुत सारा प्यार।
0: तो कैसा लगा दोस्तों आज के टैलेंट से मिलकर? हमें अपने फीडबैक जरूर दें और आप भी अगर किसी टैलेंट को जानते हैं तो हमें संपर्क करें। हम समीर और नितिन आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है, तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना, मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। आज के कलाकार का एक और नया एपिसोड, और आज हमारे मेहमान हैं, गायक हैं, प्रतिभा हैं, टैलेंट हैं, वो हैं इमरान भाई। बाकी मैं इमरान साहब से ही गुजारिश करूंगा, उनका आभार प्रकट करते हुए, उनका वेलकम करते हुए, कि इमरान भाई हमें बताइए ना, हम सभी सुनने वालों को जो आज के कलाकार फैमिली के आज इकट्ठा हुए हैं आपको सुनने के लिए, बताइए हमें कि आप कहाँ हैं, क्या करते हैं आप?
1: सबसे पहले तो काफी धन्यवाद आपको, आपने मुझे एक मौका दिया अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। मैं बेसिकली हूँ मुंबई से और बैंगलोर में मैं जॉब करता हूँ। तो अब जब हम ये चीज कर रहे हैं, मैं अभी इस वक्त बैंगलोर में हूँ।
0: ऑलराइट, दैट्स वेरी नाइस। ओके, और आप कहाँ पर जॉब करते हैं, मतलब व्हाट डू यू डू, क्या करते हैं आप?
1: मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ, कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट।
0: ओके,
1: और वहाँ पे मैं एज ए टेक्निकल एडवाइजर काम करता हूँ। तो मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल है पूरा, सो कंप्यूटर आईटी उसी फील्ड में।

That's nice. बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। तो दोस्तों, बेंगलोर जो कि प्रोमिनेंटली गीत संगीत से लबरेज हमें सुनाई दे रहा है, ढेर के ढेर टैलेंट्स, अमेजिंग सिंगर्स हमें रोज सुनाई दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें। तो इमरान भाई भी उसी शहर से हैं और बहुत बहुत प्यारे से गीत हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करें इस प्यारे से प्रोग्राम को इमरान भाई के ही गाए हुए इन गीतों के साथ।

0: बहुत खूब, अमेजिंग। चलिए इमरान भाई, अभी आपके संगीत के बारे में तो हम बात करेंगे ही, आपके गीत सुन रहे हैं तो 80% तो हमें पता चल ही रहा है कि संगीत आपके लिए क्या मायने रखता है और आप किस तरीके के संगीत में हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि हम आपको भी जानना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा सा बताइए आप किस तरीके के इंसान हैं। एक्सट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट हैं? एक्सट्रोवर्ट हैं तो जाहिर से बात है कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड होते होंगे, और अगर इंट्रोवर्ट हैं तो हो सकता है बुक्स में या म्यूजिक में तो आप हैं ही। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट?
1: मैं बेसिकली इंट्रोवर्ट हूँ। पर्सनैलिटी थोड़ा शाय टाइप है, तो पब्लिक परफॉर्मेंसेस या पब्लिक इवेंट्स जो बड़े बड़े होते हैं जिसमें मैं कभी ऐसा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहा हूँ, अपने आप को पीछे ही रखा है, ना ही सिर्फ संगीत के बारे में बट जैसे ऑफिशियल इवेंट भी होते हैं तो मैं थोड़ा सा पीछे ही रहता हूँ इन सब चीज़ों में।
0: ओके, तो जो इंट्रोवर्ट इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो बहुत अच्छे फिलोसोफर्स होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो कुछ ना कुछ कला में चुपचाप अपने साथ मस्त रहते हुए बिजी रहते हैं। तो आपको क्या पसंद है संगीत के अलावा, बताइएगा इमरान भाई। वो तो मुझे पता है कि संगीत आपका पैशन है, दैट इज फाइन, उसके अलावा इंट्रोवर्ट होने के नाते आप और क्या क्या एक्टिविटी करते हो आपके साथ?
1: संगीत के अलावा मैं लिखता भी हूँ, तो मैंने अब तक कुल 10-12 नॉवेल्स पब्लिश किए हैं, और बीइंग एन इंट्रोवर्ट मैं उसे कोई और नाम से पब्लिश करता हूँ, ओमेगा एमजी नाम से मेरे नॉवेल्स पब्लिश होते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल है अमेजोन वगैरह जगहों पर। तो मैं जैसे कि मेरे जो कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं या जो मुझे जानते हैं ऑफिस में वगैरह, उन्हें ये दोनों चीज़ें नहीं पता है। खैर, गाता तो मैं कुछ खास नहीं और लिखता भी कुछ उसी तरीके से हूँ, बट शौक है और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लिखना चाहिए। इंट्रोवर्ट का एक ये है कैरेक्टरिस्टिक कि वो छुप के ही रहते हैं।
0: नहीं, आई एग्री, आई फुली एग्री। तो लेकिन जो आपने अपनी लेखनी की बात की, अपने लिखने की बात की, है ना, सो किस तरीके की आप नॉवेल्स में, आपने शायद बताया नॉवेल्स लिखते हैं आप, करेक्ट?
1: जी सर।
0: तो कोई नॉवल आपने अभी तक पब्लिश किया?
1: जी हाँ, 10-12 नॉवेल्स पब्लिश कर दिए।
0: ओह माय गॉड, आप फिर इंट्रोवर्ट कहाँ से रह गए यार?
1: सर, तो लोगों को नहीं पता है कि वो मैं हूँ। मैंने एक पेन नेम यूज किया है ओमेगा एमजी नाम से।
0: That's nice. तो कौन कौन से आपके जो फेवरेट नॉवल होंगे, 2-3 हमें बताइए, और ये सब अमेजोन पर अवेलेबल है क्या, हम वहां पर उनको देख सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, सारे अमेजोन पे अवेलेबल है। देखिए, अब मैंने लिखे हुए नॉवेल तो कैसे होता है कि जैसे कि समंदर की लहरें कुछ ऊंची कुछ नीची, बट लहरें हैं, तो उसी तरह से सारी नॉवेल जब मैं लिखता हूँ तो वो मेरी फेवरेट होती है। जब वो पूरी हो जाती है और जब मैं दूसरा लिखने जाता हूँ तो वो फेवरेट हो जाती है। बट इनमें सबसे एक मैंने लिखी है माया, वो माया मुझे काफी क्लोज लगती है, क्योंकि जब मैं बैंगलोर आया था एक इंट्रोवर्ट सा इंसान अकेला आके, लैंग्वेज प्रॉब्लम था और लोगों ने काफी हेल्प की, सपोर्ट की, तो मैं काफी कंफ्यूज हुआ करता था, कभी मुंबई से बाहर नहीं आया था, फर्स्ट टाइम बैंगलोर आया था, तो वो जो मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत मैंने वो भी उसमें डालने की कोशिश की है। सो वो मेरी एक फेवरेट है जिसका नाम है माया। वैसे प्रोटैगनिस्ट तो एक फीमेल है उसमें, क्योंकि मैं ज्यादातर फीमेल जेंडर के हिसाब से ही लिखता हूँ, बिकॉज मैं काफी इज्जत करता हूँ उनकी, तो मैं सोचता हूँ कि भाई उनको भी लोग समझे, उनके बारे में भी कुछ जाने, तो ऐसे माया इज माय फेवरेट।
0: ओके, मैं अगर इसको गूगल करूँ तो कैसे मिलेगा मुझे? मैंने लिखा है बुक माया, आगे क्या लिखूं?
1: हाँ, सो माया जो है मैंने किंडल पे किए हैं पहले 4, तो अब आप ऐसे लिख सकते हैं माया बाय इमरान मुकरी, तो आपको आ जाएगा। अमेज़न पे डाल देंगे तो आ जाएगा।
0: जी मैं वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मिला है मुझे, किंडल एडिशन है इसका। ओके
1: जी,
0: तो दोस्तों जाहिर से बात है इमरान भाई की लिखी हुई ये बुक आई कैन सी, आप भी देख सकते हैं कि इनकी बुक अवेलेबल है, और इसी तरह की अगर हम इनको ढूंढने निकलेंगे, इमरान भाई को ढूंढने निकलेंगे, तो बड़ी सारी बुक्स हमें दिख जाएंगी यहाँ पर। बहुत चलिए, तो आगे बढ़ते हुए प्यारे से गीतों का आनंद उठाएं जो इमरान भाई ने हमारे लिए तैयार किए। संगीत के साथ साथ किताब का भी उन्हें शौक है, पर अभी तो हम लोग इनके संगीत का आनंद उठाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: तो इमरान भाई, जैसे आपने इंट्रोवर्ट होने की बात की, चलिए किताबें हो गई जो कि बहुत बहुत बढ़िया है, मैं समझ सकता हूँ बिकॉज मैं खुद एक ऑथर हूँ, तो आई कैन सर्टनली अंडरस्टैंड जो एक लेखक के दिमाग में चलता है वो मैं समझ सकता हूँ उसको बहुत अच्छी तरीके से, और हर लेखक का अपना एक जॉनर होता है, वो किस किस चीज़ के बारे में लिखता है वो चीज़ बढ़िया है। लेखनी के अलावा और क्या चीज़ आपको पसंद आती है? कहीं घूमने जाना, कुछ लोगों से बातचीत करना, मे बी कुकिंग, मे बी कुछ और? सो कुछ और है तो बताइए सर।
1: सारी चीज़ों में अगर हम कंपेयर किए तो घूमने जाना तो है ही, बट थोड़ा सा आनंद में कुकिंग से भी ले लेता हूँ।
0: वेरी नाइस।
1: वो भी मेरे जैसे मैं बैंगलोर शिफ्ट हुआ तो अकेला रहता था, फिर दो फ्रेंड्स साथ में आ गए तो प्रॉब्लम था कुकिंग का, तो सीख लिए, तो धीरे धीरे उसमें भी आनंद आने लग गया, तो फिर वो कुकिंग में भी इंटरेस्ट हो गया, तो अभी मैं खुद ही कुक करता हूँ अपना खाना।
0: नहीं, तो कोई स्पेसिफिक डिश जो आपको लगता है और आपके कुछ जानकार लोग जो नज़दीकी होंगे उन्होंने टेस्ट किया होगा और कहा होगा कि हाँ ये डिश आप शानदार बनाते हो, कोई ऐसी पर्टिकुलर डिश?
1: जी पुलाव अच्छा बनाता हूँ मैं।
0: ऑलराइट,
1: ओके। वेज में, क्योंकि मैंने सबसे पहले राइस ही चुना और उसमें ही थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया करता था पुलाव बनाते हुए, तिरंगा पुलाव या कुछ अलग अलग नाम देते थे हम मस्ती मजाक करते हुए, तो पुलाव मैं अच्छे से बना लेता हूँ।
0: That is so very nice. That is so very nice. जाहिर सी बात है अगर बहुत डेलिकेटली पुलाव को बनाया जाए तो बहुत ही बड़ी प्यारी सी खुशबू के साथ बहुत ही लजीज एक डिश बन के बाहर निकलती है। बहुत cool.
1: जी सर।
0: चलो दोस्तों, आपके मुंह में 100% पानी आ ही गया होगा, पर जरा उस पानी को रोकिए, अपने कानों को जरा ट्रीट कीजिए। एक जश्न मना रहे हैं आज के आपके कान, आइए सुनते हैं इन दो प्यारे प्यारे गीतों को जो इमरान भाई ने हमारे लिए तैयार किए।

0: बहुत खूब। चलिए, आपकी पर्सनालिटी की बात हो गई, आप इंट्रोवर्ट हैं, आप बुक्स लिखते हैं, आपको खाना बनाने का भी बहुत शौक है, बहुत सुंदर। अब बात कर लेते हैं आपके म्यूजिक की। तो पर्टिकुलरली देखिए, मैं आपके गाने की बात नहीं करूंगा, आपकी गायकी तो हम सुन ही रहे हैं। आपको सुनने में, मतलब आप सुनते भी होंगे तभी आप गाते हैं, तो सुनने में आपको गाने में यानी संगीत में आई मीन टू से क्या चीज सुनना सबसे ज्यादा पसंद है? प्लीज ऐसा मत बोलिएगा कि मुझे सब कुछ सुनना पसंद है, ऐसा मत बोलिएगा। आई नो सब लोगों को सब कुछ बनना पसंद है, लेकिन फिर भी हम लोग जब किसी बफे में जाते हैं तो कोई ना कोई चीज हमारी पसंद की होती है जिसको हम चूज करते हैं। तो आप चूज करके बताओ मुझे, गजल, भजन, सूफी, क्लासिकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल, क्या चीज, व्हाट डू यू लाइक टू लिसन?
1: सबसे पहले तो मेरे संगीत का शौक मुझे कब से हुआ, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये चीजें उसमें निर्भर करती है।
0: okay.
1: तो मैं जब काफी छोटा था, मुझे पता नहीं, शायद मैं 6 महीने का हूँगा या 1 साल, पता नहीं, मुझे याद नहीं। तो रेडियो पर एक म्यूजिक चल रहा था, वो हीरो का एक सॉन्ग चल रहा था, नींदिया से जागी बाहर।
0: okay.
1: तो वो जब मैंने सुना तो मुझे ऐसे लगा कि भाई ये कुछ तो है, पता नहीं क्या मेरे आत्मा किससे से गुजर के जा रहा है। तो उस दिन से जो लता दीदी तो है मेरे माई हो गए, मेरे घर में भी मैं उनकी पूजा करता हूँ फोटो रख के।
0: okay.
1: तो मुझे सबसे एक तो स्लो सॉन्ग, मैं संगीत कहीं पे सीखा नहीं हूँ तो मुझे माफ कीजिएगा, मुझे संगीत के अलग अलग चीजों के बारे में नहीं पता, तो राग तो बिल्कुल नहीं पता मुझे क्या होते हैं। बट मुझे सबसे अच्छी चीज जो पसंद है संगीत में, जिस गाने में सबसे ज्यादा भाव होता है, तो स्लो सॉन्ग्स मुझे अच्छे लगते हैं, एक फर्स्ट प्रेफरेंस है। जो स्लो मीडियम मुझे, जो शाम का जिस तरह के सूरज डूब रहा है, अंधेरा हो, अंधेरा भी नहीं हुआ है, सवेरा भी नहीं है, तो वो माहौल जो होता है और जो म्यूजिक उस समय सूट होता है, स्लो मेलोडी, स्मॉल नॉट लाउड, जैसे नींदिया से जाएगी बाहर सुबह सुबह आप सुनते हैं, उस तरीके का संगीत मुझे बस। तो आप बोल सकते हैं, अब ऐसे कह सकते हैं कि एक स्लो, मैं माफ कीजिएगा मैं राग या इस बारे में तो नहीं बता पाऊंगा,
0: कोई बात नहीं,
1: स्लो टाइप है, तो जिसमें बॉलीवुड म्यूजिक भी आ जाते हैं, जिसमें सेमी क्लासिकल्स भी आ जाते हैं, और जिसमें ऑफ कोर्स गजल्स भी आ जाते हैं। तो स्लो ये एक मैं वर्ड यूज कर सकता हूं शायद से।
0: ऑलराइट, आई गेट इट। तो जाहिर सी बात है हमारे सभी सुनने वाले जो संगीत प्रेमी हैं, वो आपकी भावनाओं को, आपके जज्बातों को बिल्कुल ठीक से समझ पा रहे हैं। आप अगर कहेंगे तो बिल्कुल दिल से दिल तक आवाज आएगी और हमें पता चलेगा कि आपको किस तरीके का संगीत दरअसल पसंद है। एब्सोल्युटली अमेजिंग। चलो फिर दोस्तों, इसी तरन्नुम में डूबे हुए ये दो प्यारे से गीत मैं पेश करता हूं जो इमरान भाई ने हमारे लिए तैयार किए।